मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। श्रोताओं, आज बुधवार का दिन शक संवत 1948 के वैसाख मास की 30वीं तिथि तदनुसार 20 मई 2026 सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। इस वक्त सुबह के 6 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में इटली पहुंच गए हैं। राजधानी रोम में हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। श्री मोदी की ये 2 दिन की यात्रा भारत और इटली के बीच व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगी। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा के आदान प्रदान तथा नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में आरक्षण के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की 66 श्रेणियों को अधिसूचित किया है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग ए का 10% और अन्य पिछड़ा वर्ग बी का 7% आरक्षण रद्द कर दिया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर कल सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय

0: न्यायालय भी याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शनिवार से भारत की 4 दिन की यात्रा पर रहेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने बताया कि श्री रूबियो कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली की यात्रा करेंगे। नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने बताया कि श्री रूबियो 26 मई को क्वाड समूह की बैठक में शामिल होंगे। क्वाड समूह में ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका शामिल हैं। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया गया है। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। संग्रहालय का ये तीसरा AI संचालित इंटरैक्टिव होलो बॉक्स होगा। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना बनी हुई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जायंट्स ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 220 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम के प्रारंभ में भूदेवी भगवती भारती का वंदन समूह स्वर में सुनते हैं। धर्मपाल अकीरन का लिखा देशगान।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम का अगला भक्ति गीत अनूप जलोटा के ही गायन स्वर में।

अनूप जलोटा के स्वर में आपने सुना रैदास का लिखा भक्ति गीत। कार्यक्रम में अब सुनते हैं भक्त कवि सूरदास का लिखा भक्ति गीत अशोक गांगुली के स्वर में।

0: भाई गुरमेज सिंह रागी और साथियों के स्वर में शबद कीर्तन के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। रैना गुप्ता के वाचन स्वर में सुनते हैं संवेदनशीलता विषय का लेख।
1: ये अच्छी बात है कि हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस प्रगति का सही मतलब जानें, क्योंकि अगर गति अधिक हो और दिशा गलत हो तो हम लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। जीवन का सही मूल्यांकन इससे नहीं होता कि हमने कितना पाया, बल्कि इससे होता है कि हम कितना दे पाए। कामनाओं को पूरा करने की होड़ में किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही। स्व की दुनिया में जीने वाला हृदय दूसरे की भावनाओं के प्रति सजग है। व्यस्त जिंदगी में थोड़ा ठहर कर किसी को समय देना संभव है। ये तमाम प्रश्न हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं। संवेदनशीलता ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक अमूल्य उपहार है, जो हमारे अस्तित्व को करुणा, दया, प्रेम, आशा, उत्साह, सहानुभूति, सेवा, समर्पण जैसे अनेक गुणों से भर देता है, जो जीवन को जीवंत बनाए रखता है। संवेदनशीलता केवल भावना नहीं है, ये चेतना का वो द्वार है जिसे होकर संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। हम सांसारिक चीज़ों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। जब कोई पत्थर गिरता है तो वो केवल गिरता है, पर इस पत्थर के गिरने की घटना जब मनुष्य देखता है तो वो डर जाता है, सजग हो जाता है। यही संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता को 3 स्तरों पर समझा जा सकता है। इंद्रिय संवेदना, जब हमारा शरीर बाहरी चीज़ों को ग्रहण करता है, आँख प्रकाश को, कान ध्वनि को, त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है। ये संवेदना पशुओं में भी होती है, पर अव्यक्त रहती है, हम व्यक्त कर सकते हैं। भाव संवेदना, जो सिर्फ मनुष्यों में होती है, जहाँ दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगता है, किसी अपरिचित की पीड़ा देखकर आंखें भर आना, ये मनुष्यता की पहचान है। नैतिक संवेदना, जहाँ व्यक्ति न केवल दूसरे की पीड़ा अनुभव करता है बल्कि उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी अनुभव करता है, यहाँ करुणा कर्म बन जाती है। भारतीय परंपरा में संवेदनशीलता को करुणा और अहिंसा के रूप में देखा गया है। दूसरे के दुख को अनुभव करना, दूसरे में स्वयं को देखना ही सर्वोच्च संवेदनशीलता है। मैं और तू का भेद मिट जाता है, एकाकार हो जाता है। किंतु जब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, मर जाती है, यानी मनुष्यता खत्म हो जाती है। संवेदनशीलता हमें स्व से बाहर झांकने का अवसर देती है। ये हमें निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने की शक्ति प्रदान करती है, जो व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। हमारे आसपास हर दिन ऐसी कई घटनाएं घटित होती होंगी जिनमें हम किसी न किसी तरह से मदद कर सकते हैं। हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आज के समय में एक विरोधाभास भी है, हम सूचना के महासागर में डूबे हैं फिर भी संवेदना से वंचित होते जा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों समाचार देखते हैं, युद्ध, पीड़ा, अकाल, अन्याय, किंतु मन में कोई लहर नहीं उठती। क्या अति सूचना संवेदनशीलता को कुंद कर देती है? किंतु ये भी कहा जाता है कि संवेदनशील होना साहस का काम है। इसका अर्थ है कि आप घाव खाने और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
0: संवेदनशीलता विषय का लेख आपने सुना रैना गुप्ता के वाचन स्वर में। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस का गायन महेंद्र कपूर और साथियों के गायन स्वर।

महाबली रावण ने अपने भुजबल से सारे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। बढ़ते अनाचार और धर्म के प्रति अनास्था देखकर पृथ्वी भयभीत और व्याकुल हो गई। अंत में और कोई उपाय न देख पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और वहां पहुंची जहां रावण से त्रस्त और उत्पीड़ित देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रो रो कर उन्हें अपना हाल सुनाया। ब्रह्मा जी ने धरती को धीरज धारण करके श्रीहरि के चरणों का स्मरण करने का उपदेश दिया।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात।
1: सब्जियों में खरपतवार की समस्या अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि सब्जी की फसल को अन्य फसलों की अपेक्षा प्रारंभ में अधिक दूरी पर लगाते हैं, जिससे खरपतवार की बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है और वे अधिक वृद्धि करते हैं। जैसे धान 10 से 15 सेंटीमीटर, खीरा 1 से 2 मीटर, गेहूँ 10 से 20 सेंटीमीटर, करेला 5 से 7 मीटर। सब्जी की फसल को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जो खरपतवार की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। सब्जी में कम मात्रा में परंतु थोड़े समय बाद ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे खरपतवारों के बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। सब्जी के पौधों की बढ़वार धीरे होने से खरपतवारों को उगने में सहायता मिलती है। सब्जी में किसान सामान्यतः अधिक मात्रा में सड़े गोबर का खाद प्रयोग करते हैं, ये अंततः खरपतवार की वृद्धि में सहायक होते हैं। अधिकांश सब्जियां प्रारंभ में धीमी गति से वृद्धि करने वाली होती हैं, अतः वे खरपतवारों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। जब खरपतवारों की संख्या अधिक हो जाती है तो सब्जियां उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाती। प्राकृतिक रूप से स्थायी प्रवृत्ति वाले जो खरपतवार हैं उनमें एक दो तथा बहुवर्षीय होते हैं। इनमें स्व पुनर्जीवित होने की क्षमता अधिक होती है। इनमें विषम परिस्थितियों में उतर जीवित रहने की वंशागत क्षमता पाई जाती है। इनमें फूल, फल तथा बीज जल्दी तथा अधिक संख्या में बनते हैं। इनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है। इनके बीज अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं प्राप्त करते हैं तब भी काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ तथा योग्य अवस्था में भूमि पर पड़े रहते हैं। इन फसलों की अपेक्षा प्रति पौधा लाखों की तादाद में बीज पैदा करते हैं। खरपतवार बीजों के अतिरिक्त अपने अन्य कायिक भागों से भी वंश वृद्धि करते हैं, जैसे दूब, पास तने से, हिरणखुरी जड़ों से, कांस प्रकंदों से तथा पत्तियों द्वारा तथा अन्य पत्तियों द्वारा भी कई खरपतवार उगाते हैं। कुछ की जड़ें काफ़ी गहरी हो जाती हैं और वे अपनी राइजोम में काफ़ी समय तक के लिए भोजन एकत्रित कर लेती हैं। इनके बीजों की बनावट, रंग, आकार सहचर फसलों के समान होता है, जैसे प्याज व जंगली प्याज, सरसों तथा सत्यानाशी के बीज आकार प्रकार में काफ़ी मिलते जुलते हैं। प्रतिकूल दशाओं में भी, जैसे कम नमी में, बंजर जमीन में, कीटों व रोगों के आक्रमण के बावजूद सब्जी की फसल में अपेक्षा अधिक वृद्धि करते हैं। इनके बीज विषम परिस्थितियों में भी अंकुरण क्षमता रखते हैं। इनको नियंत्रित करने के लिए अधिक मजदूर, विशेष उपकरण व रसायन की आवश्यकता होती है, जो उत्पादन लागत को कम करती हैं। सब्जियों की फसल को खरपतवार से होने वाली हानि में प्रमुख रूप से खरपतवार, जलवायु, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए फसल के पौधों से प्रतियोगिता करते हैं तथा बढ़वार को प्रभावित करते हैं। भूमि में उपस्थित पोषक तत्व तथा भूमि में प्रयोग किए गए उर्वरक को खरपतवार ग्रहण करते हैं, जिससे फसल पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अधिक मजदूर, नए यंत्र तथा रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। ये न केवल उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं बल्कि उत्पादन को भी प्रदूषित करते हैं। रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से उत्पादन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
0: सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण पर आपने सुनी सामयिक जानकारी। आप सुन रहे थे कृषि विषयक सामयिक सुझाव का कार्यक्रम खेती की बात। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 6:50 हुए हैं। साथियों, आइए जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे गांव की परंपरा एवं रिवाज और विलुप्त होते वन्य जीवों का संरक्षण विषयक चर्चा, कुछ चुनिंदा लोकगीत, पत्रों व मेलों पर आधारित गोष्ठीवाद कार्यक्रम। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे मधुमक्खियों के संरक्षण से कृषि उत्पादन और जैव विविधता का संतुलन, विश्व मधुमक्खी दिवस और महिला सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा, वन स्टॉप सेंटर योजना विषयक सामयिक चर्चाएं, चारा उत्पादन, शंकर नेपियर और हरे चारे की रणनीति, गोबरधन योजना अपशिष्ट से ऊर्जा व रोजगार विषयक जानकारी। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श।

सुबह 9 बजे आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। वीर वंदन, शहीदों की गाथा और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर।

एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आप सुन सकेंगे रात्रि में 9:30 पर। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 और रात्रि में 10:00। कार्यक्रम मन भवन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन में 11:05 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है 7:05 और 9:15। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन।

कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण समय है शाम 5:05। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। 6:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः डाक्टर् गणेश हेगडे. अथ वार्ताः. भारतं तथा नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड इत्येते देशाः मिलित्वा स्वद्विपक्षीय संबंधं, हरित प्रौद्योगिकीं, नवाचार रणनीतिक सहयोगं च सुदृढीकर्तुं विचार विमर्शान् कृतवन्तः. प्रधानमंत्री श्री मोदी ह्यः नॉर्वे देशस्य राजधान्यां ओस्लो नगरे तृतीय भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीत्वा नॉर्डिक देशानां नेतृभिः सह संयुक्त पत्रकार सम्मेलनं संबोधयन् घोषणामेतां कृतवान्.
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है. इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे.
0: प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रोक्तं यत् विगत दशवर्षेषु भारतस्य नॉर्डिक देशानां च द्विपक्षीय व्यापारः प्रायः चतुर्गुणं वर्धितः वर्तते.
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है. नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं. पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है. तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं.
0: प्रधानमंत्री पुष्टिं कृतवान् यत् भारतस्य नॉर्डिक देशानां च सम्बन्धाः व्यापार आर्थिक सहयोगेन अथ भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सन्धिभिः सह सद्यः एव सम्पन्न व्यापार सन्धिभिः नूतन स्वर्णयुगे प्रविष्टाः सन्ति. अस्मिन् अवसरे वदन्तः नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क इत्यादि देशानां प्रधानमन्त्रिणः लोकतन्त्रस्य मूल्यानां नियमाधारित वैश्विकव्यवस्थायाः अद्यतन परिवर्तमान विश्वस्य बहुपक्षीय संस्थासु तत्कालीन परिष्कारस्य च प्रतिबद्धतां पुनरुक्तवन्तः. प्रधानमन्त्री मोदी पञ्चराष्ट्रयात्रायाः पञ्चमे अन्तिमे च चरणे इटली देशस्य राजधानीं रोम नगरम् आगतवान्. भारतस्य समृद्धकला परम्परायाः उत्सवे, भव्य सांस्कृतिक सन्ध्यायाः कार्यक्रमे सम्पूर्ण यूरोप्तः भारतीय शास्त्रीय संगीतकाराः, नर्तकाः च भागं गृहीत्वा प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः स्वागत सत्कारस्य साक्षिणः अभवन्. लोकसभायाः अध्यक्ष ओम बिरला निगम विधि संशोधन विधेयक 20-26 इत्यस्य कृते संयुक्त समितिं घटितवान्. लोकसभा सांसद सुधीर गुप्ता समितेः अध्यक्षरूपेण नियुक्तः वर्तते. समितौ लोकसभायाः 21 सदस्याः विनोद श्रीधर तावडे, सुजीत कुमारः, उज्ज्वल निकाम इत्येतैः सह राज्यसभायाः 9 सदस्याः कमलजीत सहरावत, बैजयंत पांडा, डॉक्टर निशिकांत दुबे इत्येतैः सह निम्न सदनस्य सदस्याः च सन्ति. भारतीय रेलवे विद्युतीकरणस्य दिशि महत्वपूर्ण कार्यं कुर्वन् 99.6% विद्युत् सम्पर्कं प्राप्नोति, यद्धि 73.8 लाख 79,000 किलोमीटर तः अधिकं यावत् प्राप्तम् अस्ति. अस्मिन् वर्षे मार्च मासपर्यन्तं भारतेन व्यावहारिकरूपेण स्वस्य ब्राड्गेज जालस्य पूर्णविद्युत्करणं प्राप्य यूरोपीय संघस्य, युनाइटेड किंग्स, अमेरिका संयुक्त राज्यस्य च प्रमुख रेल व्यवस्थाभ्यः अग्रस्थितं वर्तते. मणिपुरस्य अपर प्रमुख वस्त्र वाणिज्य उद्योग सचिवः अनुराग वाजपेयी इत्यनेन उक्तं यत् राज्यसर्वकारः राज्यस्य समृद्धानि वस्त्र हस्तकरघ परम्पराणि प्रवर्तयितुम् अन्ताराष्ट्रिय विपणिषु निर्यातं कर्तुं च कार्यं कुर्वन् अस्ति. IPL इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं 7:30 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं कोलकाता नगरे मुंबई इंडियंस दलं सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः.

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुमंत पटेल और साथियों के स्वर में भोजपुरी लोकगीत के साथ।

ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम में आप सुनते हैं छत्तीसगढ़ी ददरिया गीत, गायक कलाकार विजय सिरदार और साथियों के स्वर में।

स्वर में बायर गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत रविंद्र रावल के कलाम से, आवाजें भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में आप सुनते हैं हसरत जयपुरी की लिखी गजल, उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में।

0: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
1: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम।
2: नमस्कार सरगुजा।
3: नमस्कार सरगुजा।
4: कार्यक्रम के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम FM रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव के किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का सबसे भरोसेमंद माध्यम है हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहाँ हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म अलबेला का गीत। गीत राजेंद्र कृष्ण का, स्वर और संगीत निर्देशन C. रामचंद्र का।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। सरगुजा 30 कोचिंग हेतु चयन परीक्षा 23 मई को मेधावी विद्यार्थियों से आवेदन में शामिल होने की अपील। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर द्वारा सरगुजा 30 कोचिंग वर्ष 2026-27 हेतु कक्षा 9वीं, 10वीं एवं 12वीं जीव विज्ञान एवं गणित संकाय में अध्ययनरत मेधावी छात्र छात्राओं के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा 23 मई 2026 को प्रातः 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबिकापुर में आयोजित होगी। जारी निर्देश के अनुसार सरगुजा जिले में शासकीय हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत वे विद्यार्थी चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने पूर्ववर्ती कक्षा में 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। कक्षा 9वीं हेतु कक्षा 8वीं, कक्षा 10वीं हेतु कक्षा 9वीं तथा कक्षा 12वीं जीव विज्ञान एवं गणित संकाय हेतु कक्षा 11वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। विद्यार्थियों को संबंधित अंक सूची की छाया प्रति एवं पालक की सहमति पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। समाचार और भी हैं, उससे पहले सुनते हैं फिल्म पूर्णिमा का गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में। गीत लिखा है गुलजार ने, संगीत निर्देशन कल्याण जी आनंद जी का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। नीट परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को मिलेगा निःशुल्क विषय आधारित मार्गदर्शन। 21 मई से शुरू होंगी कक्षाएं। अंबिकापुर जिला शिक्षा अधिकारी अंबिकापुर द्वारा जिले के ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षाओं का संचालन प्रारंभ किया जा रहा है जो नीट 2026 परीक्षा में सम्मिलित हो चुके हैं तथा परीक्षा स्थगित होने के कारण आगामी 21 जून 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा में शामिल होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार विषय आधारित निःशुल्क मार्गदर्शन कक्षाएं 21 मई 2026 से मल्टीपर्पज़ परिसर स्थित S30 कैंपस में प्रारंभ की जाएंगी। इसके लिए इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीयन 20 मई 2026 को प्रातः 7:30 से S30 कैंपस मल्टीपर्पज़ स्कूल अंबिकापुर में किया जाएगा। वहीं कक्षाओं का संचालन 21 मई 2026 से प्रतिदिन प्रातः 7:30 से किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जिले के इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं और प्रारंभ होने वाली कक्षाओं में सम्मिलित हो सकते हैं। समाचारों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म नागमणि का गीत। स्वर और गीत कवि प्रदीप का, संगीत निर्देशन अविनाश व्यास का।

कवि प्रदीप की आवाज़ में आपने सुना फिल्म नागमणि का गीत। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। समाचार जनसंपर्क अंबिकापुर से। एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला सह स्वच्छता संवाद कार्यक्रम 25 मई को जिला पंचायत सरगुजा द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जन प्रतिनिधियों के लिए एक दिवसीय उन्मुखीकरण कार्यशाला एवं स्वच्छता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 25 मई 2026 को दोपहर 12 बजे जिला पंचायत सभाकक्ष अंबिकापुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के परिपालन में जारी निर्देशों की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सर्व संबंधितों को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होने आग्रह किया है। 20 मई को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी केमिस्ट हड़ताल के संबंध में आमजन हेतु आवश्यक सूचना। ऑनलाइन औषधियों की बिक्री के विरोध स्वरूप जिला औषधि विक्रेता संघ सरगुजा द्वारा दिनांक 20 मई 2026 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में आम नागरिकों को आवश्यक औषधियों एवं स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इस हेतु जिले में संचालित समस्त जन औषधि केंद्रों PMBJA के धनवंतरी मेडिकल स्टोर शासकीय चिकित्सालयों नर्सिंग होम्स अपोलो फार्मेसी यूनिट एवं अन्य औषधि वितरण केंद्रों के माध्यम से आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जन एवं मरीजों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्यक्रम में बने रहिए साथियों। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म श्री 420 से मन्ना डे और साथियों के स्वर में, गीत शैलेंद्र का, संगीत निर्देशन शंकर जयकिशन का।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। अगली खबर जनसंपर्क अंबिकापुर से। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के अंतर्गत कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 26 जुलाई को होगी आयोजित। 20 जून तक कर सकते हैं आवेदन। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति उत्कर्ष योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष की भांति शिक्षण सत्र 2026-27 में सरगुजा जिले के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा छठवीं में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा का आयोजन 26 जुलाई 2026 को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि पात्र विद्यार्थी 20 जून 2026 तक अध्ययनरत विद्यालय के प्रधान पाठक से आवेदन पत्र अग्रेषण कराकर संबंधित विकासखंड अधिकारी

कार्यालय मंडल संयोजक के पास जमा कर सकते हैं। अपूर्ण आवेदन एवं दस्तावेज के अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आवेदन पत्र का नमूना प्रत्येक विकासखंड कार्यालय मंडल संयोजक एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर में उपलब्ध है। योजना के संबंध में विस्तृत विवरण विभाग के वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in एवं कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास अंबिकापुर के सूचना पटल पर अवलोकन कर सकते हैं। कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आखिरी गीत फिल्म बेटी बेटे से सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, हजरत जयपुरी का लिखा नगमा, शंकर जयकिशन का संगीत निर्देशन।

0: बेटी बेटी फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा समाप्त हुआ। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।
5: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.6% की वृद्धि होगी। नागर विमानन महानिदेशालय ने इस वर्ष के शुरू में तकनीकी गड़बड़ी के बाद एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की आगे की जांच के आदेश दिए। और आईपीएल क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इटली से हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
2: प्रधानमंत्री मोदी इटली की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर कल रात रोम पहुंचे। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। अनंतारा प्लाजो नायदी होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी गर्मजोशी से समुदाय के सदस्यों से हाथ मिलाया। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के संयुक्त लेख में दोनों नेताओं ने कहा है कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय लिया गया है।
4: इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
2: नॉर्वे की 2 दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: ओस्लो दौरे में हुए बहुपक्षीय और द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरित परिवर्तन, नीली अर्थव्यवस्था, जहाज निर्माण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए नॉर्डिक देशों को आमंत्रित किया। नेताओं ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले सहित सभी प्रकार के आतंकवाद की स्पष्ट और कड़ी निंदा की। सारे प्रधानमंत्रियों ने भारत नॉर्डिक देशों के सहयोग को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अगला शिखर सम्मेलन फिनलैंड में हेलसिंकी में आयोजित किया जाएगा। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज़, ओस्लो, नॉर्वे।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य

0: मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने जिनेवा में 19वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण, डिजिटल स्वास्थ्य नवाचार और वैश्विक स्वास्थ्य एकजुटता के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वैश्विक स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण एक साझा दायित्व विषय पर आयोजित सभा में श्री नड्डा ने संपूर्ण सरकार और संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण पर आधारित सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में भारत की प्रगति का उल्लेख किया।
1: India is accelerating towards universal health coverage.
2: भारत गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का विस्तार करके सभी के लिए स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हमने 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए हैं। इसके अलावा हम महामारी की तैयारियों और आपातकालीन राहत के लिए मजबूत और सुदृढ़ सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध
1: है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की ये योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
2: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी।
5: मैं जो इनपुट मिला है उसमें हमने और कहा इसको और इम्प्रूव करो और एक रोल मॉडल के रूप में हम पूरे देश में सारे सरकार को हम भेजेंगे, भाई इस रूप में आप हमें अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके दो। जैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट करे, इंडस्ट्रीज में क्या लॉस होता है, प्रोडक्शन का कितना लॉस होता है, लेबर एक तरह से दूसरे तरह माइग्रेट करती है, सबको कहा अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करें और उसका संकलन करके आगे दे सके।
0: नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान का संचालन इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद रोक दिया गया था। एक रिपोर्ट।
6: यह कार्रवाई पायलट डिफेक्ट रिपोर्ट में दर्ज एक प्रविष्टि के बाद की गई थी। इसमें कहा गया था कि बायां ईंधन नियंत्रण स्विच थोड़ा सा दबाने पर रन से कट ऑफ स्थिति में फिसल जाता है और चयनित स्थिति में ठीक से लॉक नहीं होता है। महानिदेशालय ने कहा कि एयर इंडिया ने मूल उपकरण निर्माता की निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार और महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में ईंधन नियंत्रण स्विच का निरीक्षण और कार्यात्मक परीक्षण किया। निरीक्षण परिणामों और उपलब्ध साक्ष्यों की समीक्षा के बाद निष्कर्ष निकाला गया कि ईंधन नियंत्रण स्विच यांत्रिक रूप से डिजाइन के अनुसार कार्य कर रहा था और इकाई को सेवा योग्य घोषित किया। हालांकि महानिदेशालय ने निगरानी के अंतर्गत निर्देश दिया है कि ईंधन नियंत्रण स्विचों का भविष्य में निरीक्षण किया जाए। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: भारतीय रेल ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का 99.6% विद्युतीकरण पूरा कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इस वर्ष मार्च तक ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का 69,873 किलोमीटर से अधिक मार्ग विद्युतीकृत हो चुका था। इस उपलब्धि के साथ भारत ने यूरोपीय संघ, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों को पीछे छोड़ दिया है। नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज से महात्मा गांधी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित 3D अवतार आगंतुकों के लिए खोल दिया जाएगा। आगंतुक महात्मा गांधी के 3D अवतार के साथ संवाद कर सकेंगे और अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत कर सकेंगे। और अब खेल समाचारों के साथ हैं आनंद पाठक।
7: IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने कल रात लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान की प्लेऑफ में पहुंचने की संभावना भी बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स ने 221 रन का लक्ष्य 7 विकेट के नुकसान पर 5 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। वरिष्ठ भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर की सराहना करते हुए इसे खेल के लिए समर्पण की पहचान बताया है। कोहली ने कहा कि क्रिकेटरों की फिटनेस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की फिटनेस के 15% के बराबर भी नहीं है। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के लिए भारतीय दल की पहली सूची की घोषणा कर दी गई है। यह प्रतियोगिता इस महीने की 25 तारीख से 6 जून तक गोवा में आयोजित की जा रही है। उधर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के अंकित और रेलवे के जयेश पाटिल पर 3 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। दोनों खिलाड़ियों का डोपिंग टेस्ट पॉजिटिव आया था। अंकित ने राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में 3रा स्थान जबकि पाटिल ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। दोनों खिलाड़ियों ने आरोपों को स्वीकार कर लिया जिसके परिणाम स्वरूप उनकी अयोग्यता अवधि में 1 वर्ष की कमी हुई है।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में बढ़ता तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। एक रिपोर्ट।
8: राज्य के बुंदेलखंड इलाके का बांदा जिला लगातार 3रे दिन भी देश का सबसे गर्म क्षेत्र बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। राज्य के अन्य हिस्सों में भी भीषण गर्मी से राहत नहीं मिली है और कई स्थानों पर दिन का अधिकतम तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है और रात के समय भी तापमान 30 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। पारा बढ़ने से आम जनजीवन पर तो असर पड़ा ही है, पशु पक्षी भी सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए राज्य में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: मध्य प्रदेश भी भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य में पहली बार पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
9: धन्यवाद विशाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे यात्रा लोकसत्य सहित कई अखबारों में है। भारत नॉर्वे के बीच अंतरिक्ष हेल्थ डिजिटल क्षेत्रों सहित 12 समझौते। भारत नॉर्डिक समिट में पीएम मोदी के शब्द नवभारत टाइम्स में है। आतंकवाद पर हो एक रुख, कोई समझौता नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इटली यात्रा पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों का साझा लेख दैनिक जागरण में है। रणनीतिक साझेदारी के युग में भारत और इटली शीर्षक से छपे लेख के अनुसार भारत का तेजी से बढ़ता नवाचार तंत्र और कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या तथा इटली की उन्नत औद्योगिक क्षमता दोनों देशों के सहयोग को स्वाभाविक और रणनीतिक सहयोगी बनाती है। आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय का आदेश सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, खूंखार कुत्तों को सजाए मौत। शीर्ष न्यायालय ने कहा, बच्चों और बुजुर्गों के जीवन को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। राजस्थान पत्रिका ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को दिया है, भयमुक्त जीवन लोगों का अधिकार। नक्सलवाद की तरह 3 वर्ष में हर केस खत्म करने का लक्ष्य, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान दैनिक भास्कर में है।
0: धन्यवाद आकर्षिता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार 25 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए प्रतिमाह 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता वाली अन्नपूर्णा योजना 1 जून से शुरू करेगी। एक राष्ट्र एक चुनाव की संयुक्त संसदीय समिति ने कहा, लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने से लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
10: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. Two leaders to discuss ways to boost cooperation on India-Middle East-Europe economic corridor and review joint strategic action plan 2025-2029. West Bengal government to roll out Annapurna scheme providing 3,000 rupees per month to women aged 25 to 60 years from June 1st. Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election says simultaneous Lok Sabha and Assembly elections can save nearly 7 lakh crore rupees and increase India's GDP growth by 1.6%. DGCA orders further inspection of fuel control switch of an Air India Boeing 787-8 aircraft following technical snag earlier this year. And in IPL cricket, Rajasthan Royals beat Lucknow Super Giants by 7 wickets in Jaipur. Prime Minister Narendra Modi arrived in Rome last night on an official visit to Italy. Mr. Modi was received at the airport by Italy's Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and International Cooperation, Antonio Tajani. Later, Italian Prime Minister Giorgia Meloni hosted a dinner in honour of Mr. Modi. After the dinner, PM Modi reached Anantara Palazzo Nayadi Hotel, where a jubilant and cheering Indian diaspora welcomed him. Mr. Modi will hold talks with his Italian counterpart, Giorgia Meloni, President Sergio Mattarella, and discuss with them ways to boost India-Italy cooperation. PM Modi's visit will focus on how to boost India-Italy cooperation, especially focusing on the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC. The Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will also be reviewed. Mr. Modi will also be visiting the headquarters of the Food and Agriculture Organization, FAO, and strengthening India's commitment to multilateralism as well as global food security. A correspondent covering the Prime Minister's visit has filed this report.
11: Prime Minister Narendra Modi will call on the President of Italy, Sergio Mattarella, at the Quirinal Palace today, where he will be accorded a guard of honour. The day's engagements include delegation-level talks, press statements, exchange of memoranda of understanding, bilateral meetings, and a visit to the Food and Agriculture Organization. Prime Minister Modi will also plant a Morus nigra black mulberry tree, a species that symbolically connects India and Italy through its culinary, medicinal, and agricultural significance. This is
10: Suparna
11: Bhatia from Rome.
10: Earlier yesterday, Indian Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland elevated the bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in the Norwegian capital Oslo.
12: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
10: Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
12: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
10: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. A correspondent covering the Prime Minister's visit to Norway has filed this report from Oslo.
13: A joint statement released after the third India-Nordic summit outlines the areas of shared goals and vision of India and the five Nordic countries. They decided to elevate their relations to a green technology and innovation strategic partnership. This reflects their shared commitment to sustainability, innovation, and green growth. They encouraged collaboration

मई 1918 को राजस्थान की वीर भूमि झुंझुनू में जन्मे पीरू सिंह बचपन से ही साहस और स्वाभिमान के प्रतीक थे। रेगिस्तान की तपती हवाओं ने उनके भीतर ऐसा जज्बा उत्पन्न किया जो आगे चलकर युद्धभूमि में दुश्मनों के लिए तूफान बन गया। उनकी आंखों में केवल एक सपना था, भारत माता की सेवा। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने अनुशासन, पराक्रम और नेतृत्व से हर साथी का दिल जीत लिया। शब्द जब वीरों की गाथा कहने लगते हैं तो भावनाएं अपने आप सुरों में ढल जाती हैं। आइए अब एक ऐसा देशभक्ति गीत सुनते हैं जो हर भारतीय के हृदय में राष्ट्रप्रेम की लौ जला देता है।

नमस्कार वीर वंदन, केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि उन अमर वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने का पावन अवसर है जिनकी वीरता से भारत का इतिहास स्वर्णिम बना। ये वीर वंदन है जहाँ शब्दों में शौर्य, गीतों में देशभक्ति और हर हृदय अपने वीर सपूतों के सम्मान में नतमस्तक होता है। आज हम याद करेंगे उस परम वीर योद्धा को जिसने युद्धभूमि में दुश्मनों के बीच भारत का मान ऊंचा रखा। परम वीर चक्र विजेता अमर शहीद कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत। 20

अलका याग्निक और साथियों के स्वर में आपने सुना फिल्म एलओसी कारगिल का गीत, जावेद अख्तर का लिखा देशभक्ति गीत, अन्नू मलिक का संगीत निर्देशन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। साथियों, साल 1948, कश्मीर की घाटियों में युद्ध अपने चरम पर था। दुश्मन की चौकियां आग उगल रही थी और हर कदम मौत से भरा था। ऐसे समय में पीरू सिंह शेखावत अपनी टुकड़ी के साथ आगे बढ़े, साथ ही घायल होते रहे, गोलियां लगातार बरसती रहीं। लेकिन ये वीर योद्धा अकेले दुश्मनों की ओर बढ़ता रहा। उनकी रंगों में जैसे केवल एक ही संकल्प बह रहा था, देश पहले जीवन बाद में। कभी कभी इतिहास किताबों में नहीं बल्कि गीतों की धड़कनों में सुनाई देता है। अब प्रस्तुत है एक ऐसा देशभक्ति गीत जो शहीदों के बलिदान को हमारी आत्मा तक पहुँचा देता है। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म चाइना गेट से हरिहरन, सोनू निगम, विनोद राठौड़ और साथियों की आवाज़ों में समीर का लिखा देशभक्ति गीत, अनु मलिक का संगीत।

देश के दुश्मन गद्दारों को मिलकर देंगे मात। आपने सुना गीतकार समीर का लिखा देशभक्ति गीत, फिल्म थी चाइना गेट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। साथियों, गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पीयूष सिंह शेखावत नहीं रुके। उन्होंने दुश्मनों की खाई में कूदकर कई सैनिकों को समाप्त किया। उनके शरीर से लगातार रक्त बह रहा था, लेकिन उनके भीतर मातृभूमि के लिए जलती आग शांत नहीं हुई। अंतिम क्षणों तक लड़ते हुए उन्होंने राजपूताना राइफल्स की जय का उद्घोष किया और मातृभूमि पर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके अद्वितीय साहस के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कुछ बलिदान इतने महान होते हैं कि उन्हें सुनकर आंखें नम और सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आइए अब सुरों के माध्यम से उन वीर अमर वीरों को नमन करें जिनकी वजह से हम स्वतंत्र सांस ले पा रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म कर्मा से, कविता कृष्णमूर्ति, मोहम्मद अजीज और साथियों की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का लिखा देशभक्ति गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म कर्मा का गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वीर वंदन। श्रोता साथियों, कंपनी हवलदार परमवीर चक्र विजेता पीरो सिंह शेखावत केवल एक सैनिक नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अमर दीपक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्चा देश प्रेम शब्दों से नहीं बल्कि त्याग और कर्तव्य से सिद्ध होता है। जब जब भारत का तिरंगा आसमान में लहराएगा तब तब इस वीर सपूत की गाथा गर्व से सुनाई जाएगी। देशभक्ति केवल सीमा पर लड़ने वालों की नहीं बल्कि उन्हें याद रखने वालों की जिम्मेदारी भी है। कार्यक्रम का आखिरी गीत सोनू निगम, अनुराधा श्रीराम और साथियों की आवाज़ों में, जावेद अख्तर का लिखा देशभक्ति गीत, ए आर रहमान का संगीत निर्देशन, फिल्म है नेताजी सुभाष चंद्र बोस

दोस्तों, वीर वंदन में आज हमने केवल एक शहीद की कहानी नहीं सुनी, बल्कि उस साहस को महसूस किया जिसकी बदौलत भारत आज सुरक्षित और गौरवान्वित खड़ा है। पीरू सिंह जैसे वीर कभी इतिहास नहीं बनते, वे राष्ट्र की आत्मा बन जाते हैं। उनकी वीरता आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। वीर वंदन का आज का अंक समाप्त हुआ। राजीव का नमस्कार। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नृशंस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के बारे में गांधी जी के विचार।
1: आर्मी काउंसिल ने जनरल डायर को समझ की भूल का दोषी ठहराया और परामर्श दिया कि उसे सरकारी सेना में कहीं नौकरी ना मिले। मिस्टर मॉन्टेगू ने भी जनरल डायर के आचरण की कड़ी आलोचना करने में कोई बात उठा नहीं रखी। इस पर भी किसी कारणवश मुझे ये कहे बिना रहा नहीं जाता कि जनरल डायर ही सबसे बड़ा अपराधी नहीं है, उसकी बर्बरता स्पष्ट है। आर्मी काउंसिल के सामने जनरल डायर ने अपने बचाव की जो बातें कही हैं उनमें से हर एक में उसकी महानीच तथा असैनिक कायरता के चिन्ह पाए जाते हैं। निहत्थे स्त्री पुरुष और बच्चों को जो खेल तमाशा तथा छुट्टी मनाने का ही काम जानते थे उसने बागी सेना बताया है। जनरल डायर ने इसलिए अपने को पंजाब का रक्षक बताया है कि उसने घिरे हुए आदमियों को खरहों की तरह गोलियों से मार डाला। ऐसा मनुष्य योद्धा कहलाने की योग्य नहीं है, उसके कार्य में कोई वीरता नहीं पाई जाती, उसने कोई जोखिम नहीं उठाई। बिना छेड़छाड़ के और बिना सूचना दिए ही उसने गोलियां चलाई, ये समझ की भूल नहीं है, कल्पित विपद के सामने ये उसकी थरथराहट है। इससे बहुत बुरी अयोग्यता तथा कठोर हृदयता ही प्रकट होती है। किंतु जनरल डायर पर जो खर्च किया गया है वह बहुत करके बेमार्ग हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि जनरल डायर की गोलीबारी भयंकर थी। उसकी करतूत से जितने निर्दोष आदमी मरे वह घटना भी बड़ी शोकजनक थी। किंतु पीछे धीरे धीरे जो अत्याचार, जो बेइज्जती और जो धरपकड़ हुई वह बहुत बुरी और आत्मा का नाश करने वाली थी। और जिन अफसरों ने ये कार्य किया उन्हें जलियांवाला बाग में हत्याएं करने वाले जनरल डायर की अपेक्षा अधिक दोषी समझना चाहिए। जनरल डायर ने तो थोड़े से आदमियों को ही मार डाला, पर इसके बाद अत्याचार करने वाले अफसरों ने राष्ट्र के प्राण हर लिए। कर्नल फ्रैंक जॉनसन बड़ा भारी अपराधी है, पर कौन आदमी इसका नाम लेता है? इसने निर्दोष लाहौर में आतंक फैला दिया और अपनी निष्ठुर आज्ञा से फौजी कानून के समस्त अफसरों को कड़ी कार्रवाई करने को बाध्य किया। किंतु मुझे इस जॉनसन पर भी उतना कहना नहीं है। पंजाब तथा भारत के समस्त मनुष्यों का पहला कर्तव्य है कि वे जनरल ओब्रायन, मिस्टर वासमर्थ स्मिथ, रॉय श्रीराम तथा मिस्टर मलिक खां को नौकरी से निकाल बाहर कराएं। ये भी अभी तक सरकारी नौकरी में बने हैं। इनका दोष वैसा ही सिद्ध हुआ है जैसा जनरल डायर पर सिद्ध किया गया है। यदि हम संतुष्ट होकर पंजाब के शासन को अन्य अत्याचारियों से परिष्कृत करना भूल जाएं, तो हम अपने कर्तव्य में चूक जाएंगे। ये केवल मंच पर से व्याख्यान देने या प्रस्ताव पास करने से नहीं होगा। यदि हम सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालकर उन्हें ये दिखाना चाहें कि वह प्रजा के मालिक नहीं बल्कि रक्षक और नौकर हैं, जो बुरा आचरण करने पर अपने पद पर रह नहीं सकते, तो हमें खूब कड़े उपाय का अवलंबन करना चाहिए।

गांधी चर्चा में आप सुन रहे थे जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड के दोषी जनरल डायर के बारे में गांधी जी के विचार। श्रोताओं, अगले अंक में हम आपको सुनवाएंगे जोसेफ डोक के बारे में गांधी जी के विचार।

0: गांधी चर्चा। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। वाचक स्वर प्रकाश उदय और रमाशंकर के थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
1: आप सुन रहे थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित कार्यक्रम गांधी चर्चा, जो हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9:15 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

कार्यक्रम गुंजन के आज के अंक में मैं हूं राजीव। स्वीकार करें स्नेह अभिवादन, सादर नमस्कार। साथियों, गूंज रही है प्रकृति की पुकार, फूलों की मुस्कान, खेतों की हरियाली और जीवन की मिठास। सब किसी न किसी रूप में मधुमक्खियों से जुड़ी है। आज हम केवल शहद बनाने वाले जीव की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस नन्हे प्रहरी की बात कर रहे हैं जो धरती के संतुलन को बनाए रखने में दिन रात जुटा है। विश्व मधुमक्खी दिवस पर आइए हम प्रकृति के मौन कर्मियों को सम्मान दें और समझें कि यदि मधुमक्खियां सुरक्षित हैं तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। मधुमक्खियां प्रकृति की सबसे मेहनती जीवों में गिनी जाती हैं। वे केवल शहद ही नहीं बनाती बल्कि फूलों से पराग एकत्र कर पौधों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दुनिया की लगभग 75% खाद्य फसलें किसी न किसी रूप में परागण पर निर्भर हैं। यदि मधुमक्खियां ना हो तो खेतों की हरियाली, फलों की मिठास और प्रकृति की रंगत धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में, गीत संतोष आनंद का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

0: प्रेम रोग फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: श्रोता साथियों, विश्व मधुमक्खी दिवस हर वर्ष 20 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मधुमक्खियों और अन्य परागण करने वाले जीवों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन को इसलिए मान्यता दी ताकि दुनिया समझ सके कि मानव जीवन और पर्यावरण के बीच

मधुमक्खियाँ एक बहुत मजबूत कड़ी हैं। एक छोटी सी मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में केवल थोड़ी सी मात्रा में शहद बना पाती है, लेकिन उसका योगदान अनमोल होता है। हजारों मधुमक्खियाँ मिलकर एक छत्ते को जीवित रखती हैं। उनका अनुशासन, टीम वर्क और निरंतर परिश्रम हमें सिखाता है कि छोटे प्रयास मिलकर बड़े परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का, संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का, फिल्म है तेरे घर के सामने।

हमने लिया है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत हसरत जयपुरी का, संगीत निर्देशन सचिन देव बर्मन का। फिल्म है तेरे घर के सामने।

0: तेरे घर के सामने। फिल्म का गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
0: दोस्तों, वर्तमान समय में मधुमक्खियों के सामने कई खतरे हैं। बढ़ता प्रदूषण, रासायनिक कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, इन कारणों से मधुमक्खियों की संख्या तेजी से घट रही है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि यदि ये स्थिति जारी रही तो खाद्य संकट और पर्यावरणीय असंतुलन गंभीर रूप ले सकता है। मधुमक्खियां केवल खेती के लिए ही

ही बल्कि जैव विविधता के लिए भी अत्यंत आवश्यक हैं। वे फूलों और पौधों की अनेक प्रजातियों को जीवित रखने में सहायता करती हैं। जब प्रकृति का चक्र संतुलित रहता है तभी पृथ्वी पर जीवन सुंदर और सुरक्षित बना रहता है। हमें अपने आसपास ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहां मधुमक्खियां सुरक्षित रह सकें। घरों और विद्यालयों में फूलदार पौधे लगाना, रासायनिक दवाओं का कम उपयोग करना और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हो सकते हैं। प्रकृति की सुरक्षा केवल सरकारों का नहीं, हम सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में। गीत पंडित नरेंद्र शर्मा का, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

0: सत्यम शिवम सुंदरम। फिल्म का गीत आपने सुना मुकेश और साथ ही गायक कलाकारों की आवाज़ों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी अंबिकापुर से। संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
0: श्रोता साथियों, मधुमक्खियों का जीवन हमें एकता और समर्पण का अद्भुत संदेश देता है। वे बिना किसी स्वार्थ के निरंतर अपना कार्य करती रहती हैं। उनमें अनुशासन, सहयोग और सामूहिक जिम्मेदारी का अद्भुत उदाहरण देखने को मिलता है और यही मूल्य मानव समाज को और भी मजबूत बनाते हैं। आज विश्व मधुमक्खी दिवस पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम प्रकृति के नन्हे रक्षकों की रक्षा करेंगे, क्योंकि जब फूल सुरक्षित होंगे तभी खेत सुरक्षित होंगे और जब खेत सुरक्षित होंगे तभी मानव जीवन भी सुरक्षित रहेगा। मधुमक्खियों की ये गूंज केवल प्रकृति की आवाज़ नहीं बल्कि आने वाले कल की चेतावनी भी है। मधुमक्खियाँ छोटी ज़रूर हैं लेकिन उनका महत्व विशाल है। वे हमें सिखाती हैं कि मेहनत, अनुशासन और सामूहिक प्रयास से ही जीवन में मिठास आती है। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म अंकुश से, अशोक खोसला और साथियों की आवाज़ों में। गीत अभिलाष का, संगीत निर्देशन कुलदीप सिंह का।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। साथियों, मधुमक्खियां प्रकृति का संतुलन बचाती हैं, लेकिन जब इंसान लापरवाही करता है तो केवल पर्यावरण ही नहीं मानव स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ जाता है। आज ऐसा ही एक खतरा दुनिया के सामने है, AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति सूक्ष्म जीवों में प्रतिरोधक क्षमता का उत्पन्न होना। आइए इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। आज हम जिस विषय पर अब बात करने जा रहे हैं वह केवल अस्पतालों की समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता के सामने खड़ा एक अदृश्य खतरा है। जरा कल्पना कीजिए, एक छोटा सा संक्रमण, एक मामूली बुखार या साधारण खांसी और दवाइयां असर करना बंद कर दें। जब एंटीबायोटिक दवाएं बैक्टीरिया पर काम करना बंद कर देती हैं तब जन्म लेती है AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे आने वाली समय की सबसे बड़ी स्वास्थ्य चुनौतियों में गिना है। कार्यक्रम में बातों के क्रम में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म सरस्वती चंद्र का गीत। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत इंदीवर का, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।
1: चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया।
2: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
3: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
2: चलिए बनाएं एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
4: चलो चलें मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

साथियों, कभी एंटीबायोटिक दवाओं को चमत्कारी दवा कहा जाता था। इन दवाओं ने लाखों लोगों की जान बचाई, बड़ी बड़ी बीमारियों को हराया। लेकिन आज इंसान की लापरवाही ने इन्हीं दवाओं की ताकत कम कर दी है। बिना डॉक्टर की सलाह के दवा लेना, बीच में दवा छोड़ देना और हर छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक खाना, यही आते हैं बैक्टीरिया को और मजबूत बना रही हैं और एंटीबायोटिक्स को कमज़ोर। आज कई बैक्टीरिया ऐसे हो चुके हैं जिन पर सामान्य दवाइयाँ असर ही नहीं करती। AMR केवल एक मेडिकल शब्द नहीं, ये भविष्य की चेतावनी है। अगर यही स्थिति रही तो एक दिन ऐसा आ सकता है जब छोटी सी चोट भी जानलेवा बन जाएगी। कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म नगीना से अनुराधा पौंडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में, आनंद बख्शी का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

मधुमक्खियां हमें प्रकृति बचाने का संदेश देती हैं और एएमआर हमें जिम्मेदारी से जीना सिखाता है। यदि हम पर्यावरण और दवाइयां दोनों की रक्षा करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित और स्वस्थ बन पाएगा। गुंजन की यात्रा यहीं तक। स्वीकारें राजीव का नमस्कार।

आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार। हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए

श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। प्रशासन ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में सरकारी अस्पतालों, जन औषधि केंद्रों, धनवंतरी मेडिकल स्टोर्स और अन्य औषधि केंद्रों से दवाइयां प्राप्त की जा सकती हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है, वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी के बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र राजनांदगांव द्वारा आज सुबह 10 बजे से अंबागढ़ चौकी तहसील कार्यालय परिसर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10 बजे हैं। पेश है तापमान संबंधी सूचना। स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान शहर अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान सूचना के बाद साथियों जान लेते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

दोपहर 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाई। कार्यक्रम में आप सुन सकेंगे गांव की परंपरा एवं रिवाज और विलुप्त होते वन्य जीवों का संरक्षण विषयक चर्चा, कुछ चुनिंदा लोकगीत, पत्रों व मेलों पर आधारित गोएठ बात कार्यक्रम। शाम 7:21 पर आप सुनेंगे ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल। कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे मधुमक्खियों के संरक्षण से कृषि उत्पादन और जैव विविधता का संतुलन और महिला सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा वन स्टॉप सेंटर योजना विषयक सामूहिक चर्चाएं, चारा उत्पादन, शंकर नेपियर और हरे चारे की रणनीति, गोबरधन योजना, अपशिष्ट से ऊर्जा व रोजगार विषयक जानकारी। साथ ही साथ कार्यक्रम में आप जानेंगे मंडी भाव,

एनसीईआरटी और सीआईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग अब सुनेंगे मध्याह्न के ठीक 12 बजे। सरगुजा संभाग में हाथियों की अद्यतन स्थिति बताता प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ आप सुन पाएंगे शाम के 5 बजे। सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि के 8 बजे।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम चर्चा का विषय है। आप सुन सकेंगे रात्रि में 9:30 पर। ईमेल आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का प्रसारण समय है दिन में 1:40 और रात्रि में 10:00। कार्यक्रम मन भावन हम आपको सुनवाएंगे रात्रि 10:30 पर।

श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन में 11:05 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का प्रसारण समय है 7:05 और 9:15। दोपहर 12:30 पर आप सुन सकेंगे शीर्षक गीतों का कार्यक्रम चयन।

कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण समय है शाम 5:05। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज आप सुन पाएंगे क्रम युवा सोच, कविता पाठ और फिल्म संगीत। श्रोता साथियों, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। दिन के 10:05 हो रहे हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तरने।

मोहित चौहान की आवाज़ में आपने सुना फिल्म रॉकस्टार का गीत, इरशाद कामिल की शब्द रचना, एआर रहमान का संगीत निर्देशन। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।

0: दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया बिनु भैया, ए दे आगू तो ए दे बरधा मान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं हाँ। बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ये दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ
1: आए
0: हाँ
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसो हूँ बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ
1: तहाँ
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला ये दे सुन सकते हैं।
1: हाँ अब ये तो शुरू होएगी साहेब।
0: हाँ
1: तो
0: नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म बजरंगी भाईजान का गीत अदनान सामी की आवाज़ में, कौशर मुनीर की पारंपरिक शब्द रचना, प्रीतम का संगीत निर्देशन।

0: अदनान सामी और साथियों की आवाज़ों में आपने सुना फिल्म बजरंगी भाईजान का गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का एसटीडी कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
1: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
0: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म भूल भुलैया से, केके की आवाज में, सईद कादरी का गीत, प्रीतम का संगीत।

0: मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
2: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर अपना प्रसारण।
1: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
2: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
1: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर भी।
0: कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म योद्धा से। स्वर और संगीत विशाल मिश्रा का, गीत कौशल किशोर का।

कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म कड़प्पा का गीत, अनन्या वाडेकर की आवाज़ में, गिरीश नाकूड की शब्द रचना, स्टीफन देवासी का संगीत निर्देशन।

0: अनन्या वाडेकर की आवाज़ में आपने सुना फिल्म कड़प्पा का गीत। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने।
1: चल छैया छैया छैया छैया चल छैया छैया छैया छैया।
2: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
3: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
2: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
4: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी। 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
5: चलते चलते चलते चलते
0: कार्यक्रम नए तराने में आप सुनते हैं फिल्म लापता लेडीज का गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत स्वानंद किरकिरे का, राम संपत का संगीत।

मीडियम वेव और एफएम पर ये आकाशवाणी अंबिकापुर है। आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तरने। कार्यक्रम में आप सुनते हैं फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का गीत फरहान सईद और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में, गीत कुमार का, संगीत फरहान सईद का।

कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हमने लिया है फिल्म शेरशाह से, स्वर और संगीत बी प्राक का, गीत जानी का।

कार्यक्रम नए तराने के आखिर में सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य का लिखा गीत, प्रीतम का संगीत, फिल्म है तू झूठी मैं मक्कार।

तू झूठी मैं मक्कार फिल्म के गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने समाप्त हुआ। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 11 बजने वाले हैं। अगले कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। दोनों नेता भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के लिए सहयोग बढ़ाने पर चर्चा और वर्ष 2025 से 2029 तक संयुक्त रणनीतिक कार्रवाई योजना की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, परिवहन, समुद्री सुरक्षा, बंदरगाह संबंधी सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि रोम पहुंचने पर उन्हें प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ रात के खाने पर मिलने का अवसर मिला, जिसके बाद उन्होंने मशहूर कोलोसियम का दौरा किया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने कई विषयों पर अपने विचार साझा किए।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। ये समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। इससे पहले श्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 3,000 रुपए की मासिक वित्तीय सहायता की अन्नपूर्णा योजना अधिसूचित कर दी है। महिला और बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की यह योजना 1 जून से प्रभावी होगी। एक रिपोर्ट।
1: इस योजना के अंतर्गत राशि पात्र लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से भेजी जाएगी। इस योजना के लिए 25 से 60 वर्ष की महिलाएं पात्र हैं। पात्र महिलाएं आयकर का भुगतान नहीं करती हों और किसी भी स्थायी सरकारी नौकरी में कार्यरत ना हो। नए आदेश के अनुसार लक्ष्मी भंडार योजना के सभी वर्तमान लाभार्थी स्वतः ही अन्नपूर्णा योजना में स्थानांतरित हो जाएंगे। नए आवेदकों के लिए अन्नपूर्णा योजना का ऑनलाइन पोर्टल 1 जून 2026 को शुरू किया जाएगा। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने कहा है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ कराने से करीब 7,00,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इससे देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर में 1.6% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। समिति के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद पीपी चौधरी ने कल शाम गुजरात के गांधीनगर में पत्रकारों को ये जानकारी दी। नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के बोइंग 787-8 विमान के ईंधन नियंत्रण स्विच की जांच मूल उपकरण निर्माता केंद्र पर महानिदेशालय के अधिकारियों की उपस्थिति में करने का निर्देश दिया है। महानिदेशालय के अनुसार इस वर्ष 2 फरवरी को लंदन के हिथ्रो हवाई अड्डे से बंगलुरु के लिए उड़ान AIC-132 संचालित करने के बाद एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान का संचालन रोक दिया गया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत में भीषण गर्मी को देखते हुए दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, मराठवाड़ा और उड़ीसा में लू की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्स और FM 100.2 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए आपकी पसंद कार्यक्रम।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हीरो फिल्म का ये गीत। आवाजें थी मनहर और अनुराधा पौडवाल की। संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। इस गीत को सुनना चाहा था देवीगंज रोड, अंबिकापुर से राजकुमार निभवानी, संगीता निभवानी, आकाश निभवानी, पप्पू जायसवाल, सुमैया राजवाड़े, पूजा सीता, सागर आयुषी, हनी और परिवार के सभी सदस्यों ने। कन्या परिसर रोड अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा श्रीवास्तव, नितिन श्रीवास्तव, सोनू वंदना और श्रीवास्तव परिवार के सभी सदस्यों ने फरमाइश भेजी थी। आशा रेडियो श्रोता संघ मेहरनगर उमरखेर महाराष्ट्र से अभिजीत गांवकर, राही सरिता गांवकर, प्रिंस एकांश गांवकर ने गीत को पसंद किया था। बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गांवकर और प्रणीता ने गीत सुनना चाहा था। आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश गांवकर, श्वेता सुमित गांवकर, कुमारी ध्वनि गांवकर और टुक टुक ने इसी गीत की फरमाइश भेजी थी। आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से अभी आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, कार्यक्रम में अगले गीत के फरमाइश करता है गौतम नगर जिला नांदेड़ से प्रभाकर और आरती, ग्राम पंजोनिया जिला जालौन से हमारे श्रोता हैं सत्येंद्र चंसोलिया, आदर्श, सार्थक और अलौकिक। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे और गायत्री धंजे ने गीत सुनना चाहा है। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वेद, रानी वेद, महिमा वेद, नीतू वेद ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं दीवाना फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निकी, बोल समीर के, संगीत निर्देशन नदीम श्रवण का है।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं आपकी पसंद कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं नगीना फिल्म का एक गीत। आवाज़ है अनुराधा पौडवाल की, बोल है आनंद बख्शी के, संगीत निर्देशन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्रिया से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना, गणेश कार्तिक, परी संजना, मालती स्वाति, प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे। चांदूर बिस्वा तालुका जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से फरमाइश करता है गणेश और कार्तिक। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं नगीना फिल्म का ये गीत।

आधा पौडवाल की आवाज में फिल्म नगीना का ये गीत। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र भेजा है फूलसर वाया कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास शीला दीवान ओम प्रकाश रुकमणी जयप्रकाश प्रीति दीवान सिद्धांत सौर्य कुमारी सानवी और परिवार के सभी सदस्यों ने। जरुण वरुण महाराष्ट्र से गीत सुनना चाहा है बाबा साहब वाड़ोदे मीनाक्षी चरपे रजनी कानोरे। पुणे से हमारे श्रोता पंकज वाड़ोदे और आर्या प्रियंका ने गीत की फरमाइश भेजी है। बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे अंजनी त्रयंबिका लीना अंशुमाला और आशुतोष अंगारे ने पत्र भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं धड़कन फिल्म का एक गीत। बोल हैं समीर के, संगीत निर्देशन नदीम शर्मा का है, गीत को लिखा है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। माफ़ कीजिएगा, आवाज़ें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की।

अभी आप सुन रहे थे धड़कन फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी अलका याग्निक और कुमार सानू की, बोल थे समीर के, संगीत निर्देशन नदीम शर्मा का था।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगू तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं?
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं ए दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: एदे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्स पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: है। हाँ, अब ये तो शुरू है कि साहे।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाड़ी।

0: बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
1: चलते चलते चलते चलते।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें पत्र आया है वरुण से महेंद्र, विजया और मिलिंद का। चारमीनार चौक गंडई पंडरिया से दरिया नमल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक तिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक शबाब साबरी की आवाज़ों में फिल्म मुझसे शादी करोगी का ये गीत। संगीत निर्देशन अनु मलिक का है, गीतकार हैं समीर।

0: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी।
0: चलिए बनाए एक मिसाल अपने प्यारे संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
2: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी

अभी आप सुन रहे थे मुझसे शादी करोगी फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अंतिम गीत के फरमाइश करता हैं बिनसिंहपुर पाली मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, कुमारी भारती राव, विकास सिंह, राजकुमार सिंह, रुद्र तेजवती सिंह, अदिति ओम प्रकाश सिंह। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जयतेक बीरक और मिका बीरक ने गीत सुनना चाहा है। जतुका किशनपुर से हमारे श्रोता हैं आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, फिरोज आलम, नाज प्रवीण, चांदनी नाज। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत मोहब्बत फिल्म से। आवाजें हैं ईशान, श्वेता पंडित, मनोहर शेट्टी और उद्भव की। संगीत निर्देशन आनंद बख्शी का है।

मोहब्बतें फिल्म के इस गीत के साथ श्रोताओं आज आपकी पसंद कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडिया वेब और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 11:55 होने को हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया। और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी किया है। ये नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों की आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। इसके चलते छत्तीसगढ़ में करीब 18,000 मेडिकल स्टोर आज संभवतः बंद रहेंगे। इनमें थोक और फुटकर दोनों तरह की दुकानें शामिल हैं। विभिन्न जिलों में प्रशासन ने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने के लिए मेडिकल स्टोर्स की आपातकालीन संपर्क सूची जारी की है। इसके साथ ही जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों, धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर और रेडक्रॉस संचालित मेडिकल स्टोरों को भी आवश्यक सेवाओं के लिए खुला रखने की सहमति दी गई है। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना के तहत कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र विद्यार्थी 20 जून तक अपने विद्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत चयन के लिए 26 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित होगी। ये योजना अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक बनी हुई है। वहीं एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा भी विस्तारित है। इसके असर से प्रदेश में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ने मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपने दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा कर सकते हैं। और दुर्ग में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। ये आयोजन छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में लगने वाला स्थानीय शुल्क

0: बढ़ाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने, जैविक खेती की आवश्यकता पर बल दिया और मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 3 दिनों के दौरान तापमान में करीब 4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले किए गए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बज चुके हैं। लीजिए सुनिए एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं का स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। हमारा हार्दिक आभार कि आप उमंग कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं। तो आइए हमेशा की तरह करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर डोम, राधिका डोमिन और अंजलि तुषार जी ने। लिखते हैं,
2: प्रकृति की हर एक रचना में ईश्वर का अद्भुत स्पर्श छिपा होता है। पेड़, नदियाँ और पहाड़ हमें बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं, हमें भी उनसे देने की कला सीखनी चाहिए।
3: बहुत ही सुंदर विचार है। जी हाँ श्रोताओ, सच में प्रकृति हमें निस्वार्थ भाव से देना सिखाती है। इस संदर्भ में संत कबीर के एक दोहे की कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं।
2: वृक्ष कबहू न फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। भाव इस प्रकार से है, नदी स्वयं अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते। इसी प्रकार संतों का जीवन भी दूसरों के कल्याण के लिए ही होता है। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके प्यारे प्यारे संदेश।
3: तो पहला संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया जी का।
2: केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देशदीप दास जी, अभिराम साहू, पद्मलोचन मोहंती, शुभम नायक, साई प्रसाद नायक, सौम्य रंजन नायक, ओम प्रकाश नायक, साई गौतम मल्लिक, हरिश्चंद्र, सत्यजीत नायक, दिव्य ज्योति नायक, प्रमोद कुमार सेठी, रश्मि रंजन साहू, ज्ञान रंजन सेठी, प्रभास कुमार साहू, प्रज्वल दीप पाणी और ओम प्रकाश मानसिंह।
3: और गांव तेहका बजरंग चौक से लकी, ऋषि नौरंग और कौशल्या नौरंग।
2: भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू लिखते हैं,
3: नमस्कार। उमंग कार्यक्रम सुनने की उत्कंठा हमारे मन में सदैव बलवती रहती है, क्योंकि यह कार्यक्रम हमें हर सप्ताह कुछ न कुछ ऐसी मालूमात हासिल करवाता है जिनसे हम नावाकिफ होते हैं।
2: मसलन 17 मार्च के प्रोग्राम में आपने स्विट्जरलैंड के टाइम बैंक पर अत्यंत दिलचस्प और दुर्लभ जानकारी हासिल करवाई। सेवानिवृत्त लोग अपने टाइम सेविंग अकाउंट में जरूरतमंदों की सेवा करके समय के घंटों को बचत के रूप में जमा करते हैं, और जब उन्हें अपनी देखभाल के लिए सेवा की आवश्यकता पड़ती है तो बैंक को सूचित करने पर बैंक उनका उतना समय क्रेडिट कर देता है और उनकी देखभाल के लिए अपने स्वयं सेवकों को सेवा के लिए मुहैया करवा देता है। बड़ी उपयोगी जानकारी है, ये जानकारी हमारे लिए अद्भुत रही। उमंग की टीम को हृदय से धन्यवाद।
3: आप आगे लिखते हैं, 16 मार्च को महायोगी, विलक्षण ज्ञाता और मेधावी वक्ता अष्टावक्र की प्रतिभा से हमें परिचित करवाने वाला कार्यक्रम सुनने को मिला। हमारा आध्यात्मिक और वैदिक ज्ञान समृद्ध हुआ, धन्यवाद।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन, आप सभी श्रोताओं को भी हमारा हार्दिक आभार। इसी तरह से उमंग कार्यक्रम सुनते रहिए और कुछ नए श्रोताओं को भी जोड़िए।
3: श्रोताओं से हमारा विशेष अनुरोध है और वो ये है कि सिर्फ सुविचार ही न भेजें लेकिन हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं भी भेजें, क्योंकि इससे तो हमारा मनोबल बढ़ता ही है, साथ ही साथ हमें अपने कार्यक्रमों को और अधिक निखारने में मदद भी मिलती है।
2: तो अब बारी है हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
3: तो हमारा पहला प्रश्न था, महाकवि कालिदास की सबसे अधिक चर्चित काव्य रचना का नाम बताइए।
2: महाकवि कालिदास की सबसे अधिक चर्चित काव्य रचनाओं में से एक है अभिज्ञान शाकुंतलम। एक संस्कृत नाटक है जिसमें प्रकृति और मानवीय भावनाओं का अद्भुत

0: संगम दिखाई देता है।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था आपसे कि हाथ से लिखने की आदत के क्या क्या लाभ हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। हमारे हाथ और दिमाग का प्रभावी समायोजन होता है। स्पेलिंग या वर्तनी के साथ साथ हमारा शब्दकोश भी विकसित होता है और विषय वस्तु हमें अच्छी तरह से याद हो जाती है।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, पुस्तक पढ़ने की आदत को विकसित कैसे किया जा सकता है, कोई तीन उपाय बताएं।
0: पुस्तक पढ़ने की आदत को विकसित करने के उपाय हैं, रोज कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ें, पढ़ने का एक निश्चित समय निर्धारित करें, रोचक विषय का चुनाव करें और अपने स्थानीय क्षेत्र में किसी पुस्तकालय से जरूर जुड़ें।
1: जी, तो श्रोताओं अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, क्या आपको सचमुच लगता है कि हमें अपने परिजनों और मित्रों से मिलने का समय ही नहीं है, या यदि हम चाहें तो सचमुच समय निकाल सकते हैं?
0: तो इसका उत्तर है साथियों, यदि कोई चाहे तो अपने परिजनों और मित्रों से मिलने का समय जरूर निकाल सकता है। इसके लिए बस दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए।
1: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। बाहर खेलना, सैर करना, दौड़ना इत्यादि सब ऊर्जा और प्रसन्नता के स्रोत हैं, क्यों?
0: इसका उत्तर है साथियों, बाहर खेलने, सैर करने और दौड़ने से हमारी शारीरिक क्षमता का विकास होता है। स्वास्थ्य अच्छा रहने से चुस्ती स्फूर्ति बनी रहती है, जिसके कारण शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है।
1: तो श्रोताओ, ये थे पिछले सप्ताह के प्रश्नों के उत्तर। प्रतिभाग करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? श्रोताओ, आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर हमारे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी और हमारे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के लिंक भी, जिसके द्वारा आप हमारे कार्यक्रम कभी भी सुन सकते हैं।
1: जी, तो बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं हमारा पहला कार्यक्रम, शीर्षक है मातृभूमि।
0: ये कार्यक्रम हिंदी की कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता की संगीतमय प्रस्तुति है। कवि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित देशभक्ति से ओतप्रोत इस कविता में भारत भूमि की भौगोलिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता का वर्णन किया।

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत गीत जिसमें मातृभूमि की महिमा की गई है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जुर्माना।
1: ये कार्यक्रम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक कहानी का नाट्य रूपांतरण है, जिसमें श्रमिकों और किसानों के प्रति दया और करुणा का भाव रखने का संदेश दिया गया है।

ऐसा शायद ही कोई महीना आता कि अल्लाह रखी के वेतन से कुछ जुर्माना न कट जाता। कभी कभी तो उसे 6 के 5 ही मिलते, लेकिन वह सब कुछ सहकर भी सफाई के दारोगा मोहम्मद खैरात अली खां के चंगुल में कभी ना आती। खां साहब की मातहती में सैकड़ों नौकरानियां थीं, किसी की भी तलब न कटती, किसी पर जुर्माना ना होता, न डांट ही पड़ती। खां साहब नेक नाम थे, दयालु थे, मगर अल्लाह रखी उनके हाथों बराबर ताड़ना पाती रहती थी। वह कामचोर नहीं थी, बेअदब नहीं थी, फूहड़ नहीं थी, बदसूरत भी नहीं थी। पहर रात को ठंड के दिनों में वह झाड़ू लेकर निकल जाती और 9 बजे तक एक चित्त होकर सड़क पर झाड़ू लगाती रहती, फिर भी उस पर जुर्माना हो जाता। उसका पति हुसैनी भी अवसर पाकर उसका काम कर देता, लेकिन अल्लाह रखी की किस्मत में जुर्माना देना था। तलब का दिन औरों के लिए हंसने का दिन था, अल्लाह रखी के लिए रोने का। उस दिन उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहता, ना जाने कितने पैसे कट जाएंगे। वह परीक्षा वाले छात्रों की तरह बार बार जुर्माना की रकम का तखमीना करती। उस दिन वह थक कर जरा दम लेने के लिए बैठ गई थी। उसी वक्त दरोगा जी अपने इक्के पर आ रहे थे। वह कितना कहती रही, हुजूर अली मैं फिर काम करूंगी, लेकिन उन्होंने एक न सुनी थी। अपनी किताब में उसका नाम नोट कर लिया था। उसके कई दिन बाद फिर ऐसा ही हुआ। वह हलवाई से एक पैसे के सेवड़े लेकर खा रही थी। उसी वक्त दारोगा न जाने किधर से निकल पड़ा था और फिर उसका नाम लिख लिया गया था। न जाने कहां छिपा रहता है, जरा भी सुस्ताने लगे कि भूत की तरह आकर खड़ा हो जाता है। नाम तो उसने 2 ही दिन लिखा था, पर जुर्माना कितना करता है अल्लाह जाने। 8 आने से बढ़कर रुपया ना हो जाए। वह सिर झुकाए वेतन लेने जाती और अनुमान से कुछ ज्यादा ही कटा हुआ पाती। कांपते हाथों से रुपए लेकर आंखों में आंसू भरे लौट आती। किसे फरियाद करे, दारोगा के सामने उसकी सुनेगा कौन। आज फिर वही तलब का दिन था। इस महीने में उसकी दूध पीती बच्ची को खांसी और ज्वर आने लगा था। ठंड भी खूब पड़ी थी, कुछ तो ठंड के मारे और कुछ लड़की के रोने चिल्लाने के कारण उसे रात रात भर जागना पड़ता था। कई दिन काम पर जाने में देर हो गई थी। दारोगा ने उसका नाम लिख लिया था। अब की 1/2 रुपए कट जाएंगे, 1/2 भी मिल जाएं तो गनीमत है। कौन जाने कितना कटा है। उसने तड़के बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ू लेकर सड़क पर जा पहुंची, मगर वह दुष्ट गोद से उतरती ही न थी। उसने बार बार दारोगा के आने की धमकी दी, अभी आता होगा, मुझे भी मारेगा, तेरे भी नाक कान काट लेगा। लेकिन लड़की को अपने नाक कान कटवाना मंजूर था, गोद से उतरना मंजूर न था। आखिर जब वह डराने धमकाने प्यारने पुचकारने किसी उपाय से न उतरी, तो अल्लाह रखी ने उसे गोद से उतार दिया और उसे

0: रोती चिल्लाती छोड़कर झाड़ू लगाने लगी, मगर वह अभागिनी एक जगह बैठकर भर भर रोती भी न थी। अल्लाह रखी के पीछे लगी हुई बार बार उसकी साड़ी पकड़कर खींचती, उसकी टांग से लिपट जाती, फिर जमीन पर लौट जाती और एक क्षण में उठकर फिर रोने लगती। उसने झाड़ू तानकर कहा, चुप हो जा, नहीं तो झाड़ू से मारूंगी, जान निकल जाएगी, अभी दारोगा दाढ़ी जार आता होगा। पूरी धमकी मुंह से निकल भी न पाई थी कि दारोगा खैरात अली खां सामने आकर साइकिल से उतर पड़ा। अल्लाह रखी का रंग उड़ गया, कलेजा धक धक करने लगा। या मेरे अल्लाह, कहीं इसने सुन न लिया हो, मेरी आंखें फूट जाएं, सामने से आया और मैंने देखा नहीं, कौन जानता था आज बैलगाड़ी पर आ रहा है, रोज तो इक्के पर आता था। नाड़ियों में रक्त दौड़ना बंद हो गया, झाड़ू हाथ में लिए निस्तब्ध खड़ी रह गई। दारोगा ने डांट कर कहा, काम करने चलती है तो एक पुछिल्ला साथ साथ ले लेती है, इसे घर पर क्यों नहीं छोड़ाई? अल्लाह रखी ने कातर स्वर में कहा, इसका जी अच्छा नहीं है हुजूर, घर पर किसके पास छोड़ाती?
1: क्या हुआ है इसको?
0: बुखार आता है हुजूर।
1: और तो इसे यूं छोड़कर रुला रही है, मरेगी कि जिएगी?
0: गोद में लिए लिए काम कैसे करूं हुजूर?
1: छुट्टी क्यों नहीं ले लेती?
0: तलब कर जाती हुजूर, गुजारा कैसे होता?
1: इसे उठा ले और घर जा, हुसैनी लौट कर आए तो इधर झाड़ू लगाने के लिए भेज देना।
0: अल्लाह रखी ने लड़की को उठा लिया और चलने को हुई। तब दारोगा जी ने पूछा,
1: मुझे गाली क्यों दे रही थी?
0: अल्लाह रखी की रही सही जान भी निकल गई, काटो तो लहू नहीं, थर थर कांपती बोली, नहीं हुजूर, मेरी आंखें फूट जाएं जो तुमको गाली दी हो। और वह फूट फूट कर रोने लगी। संध्या समय हुसैनी और अल्लाह रखी दोनों तलब लेने चले। अल्लाह रखी बहुत उदास थी। हुसैनी ने सांत्वना दी, तू इतनी उदास क्यों है? तलब ही न कटेगी? कटने दे, अब की से तेरी जान की कसम खाता हूं, एक घूंट दारू या ताड़ी नहीं पीऊंगा। मैं डरती हूं बर्खास्त न कर दे, मेरी जीभ जल जाए, कहां से कहां बर्खास्त कर देगा? कर दे, उसका अल्लाह भला करे, कहां तक रोए, तुम मुझे नाहक लिए चलते हो, सब की सब हंसेंगी।
1: बर्खास्त करेगा तो पूछूंगा नहीं कि किस इल्जाम पर बर्खास्त करते हो, गाली देते किसने सुना? कोई अंधेर है, जिसे चाहे बर्खास्त कर दे, और जो कहीं सुनवाई ना हुई तो पंचों से फरियाद करूंगा, चौधरी के दरवाजे पर सिर पटक दूंगा।
0: ऐसे ही एकता होती तो दारोगा इतना जरीमाना करने पाता? जितना बड़ा रोग होता है उतनी बड़ी दवा होती है पगली। फिर भी अल्लाह रखी का मन शांत न हुआ, मुख पर विषाद का धुआं सा छाया हुआ था। दारोगा क्यों गाली सुनकर भी बिगड़ा नहीं? उसी वक्त उसे क्यों नहीं बर्खास्त कर दिया? यह उसकी समझ में नहीं आता था। वह कुछ दयालु भी मालूम होता था, उसका रहस्य वह न समझ पाती थी। और जो चीज हमारी समझ में नहीं आती उसी से हम डरते हैं। केवल जुर्माना करना होता तो उसने किताब पर उसका नाम लिखा होता, उसको निकाल बाहर करने का निश्चय कर चुका है, तभी दयालु हो गया था। उसने सुना था कि जिन्हें फांसी दी जाती है उन्हें अंत समय खूब पूरी मिठाई खिलाई जाती है, जिससे मिलना चाहे उससे मिलने दिया जाता है, निश्चय बर्खास्त करेगा। म्यूनिसिपैलिटी का दफ्तर आ गया, हजारों सफाई करने वाले जमा थीं, रंग बिरंगे कपड़े पहने, बनाव सिंगार किए, पान सिगरेट वाले भी आ गए थे, खोंचे वाले भी। पठानों का एक दल भी आसामियों से रुपए वसूल करने आ पहुंचा था।

वे दोनों भी जाकर खड़े हो गए थे। वेतन बटने लगा। पहले औरतों का नंबर था, जिसका नाम पुकारा जाता वह लपक कर जाती और रुपए लेकर दारोगा को मुफ्त की दुआएं देती हुई चली आती। चंपा के बाद अल्लाह रखी का नाम बराबर पुकारा जाता था। आज अल्लाह रखी का नाम उड़ गया था। चंपा के बाद जहूरन का नाम पुकारा गया, जो अल्लाह रखी के नीचे था। अल्लाह रखी ने हताश आंखों से हुसैनी को देखा। औरतें उसे देख देख कर काना फूसी करने लगीं। उसके जी में आया घर चली जाए, यह उपहास नहीं सहा जाता। जमीन फट जाती कि उसमें समा जाती। एक के बाद दूसरा नाम आता गया और अल्लाह रखी सामने के वृक्षों को देखती रही। उसे अब इसकी परवाह न थी कि किसका नाम आता है, कौन जाता है, कौन उसकी ओर ताकता है, कौन उस पर हंसता है। सहसा अपना नाम सुनकर वह चौंक पड़ी, धीरे से उठी और नवेली बहू की भांति पग उठाती हुई चली। खजांची ने पूरे 6 रुपए उसके हाथ पर रख दिए। उसे आश्चर्य हुआ, खजांची ने भूल तो नहीं की? 3 बरसों में पूरा वेतन तो कभी मिला नहीं, और अब की तो आधा भी मिले तो बहुत है। वह 1 सेकंड वहां खड़ी रही, शायद खजांची उससे रुपए वापस मांगे। जब खजांची ने कहा, अब क्यों खड़ी है, जाती क्यों नहीं, तब वह धीरे से बोली, ये तो पूरे रुपए हैं। खजांची ने चकित होकर उसकी ओर देखा, तो और क्या चाहती है, कम मिले, कुछ जरिमाना नहीं है? नहीं, अब की कुछ जरिमाना नहीं है। अल्लाह रखी चली, पर उसका मन प्रसन्न न था। वह पछता रही थी कि दारोगा जी को गाली क्यों दी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जुर्माना, और आइए अब सुनते हैं एक बड़ी जानी पहचानी खूबसूरत लोक कथा एक नए अंदाज में, ध्वनि प्रभाव और मनभावन संगीत के साथ। शीर्षक है लालची कुत्ता।

0: लालची कुत्ता। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आशा है श्रोताओं आपको हमारे आज के कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे। संपर्क बनाए रखिएगा। तो अब
1: अजीत
0: और मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए, कल फिर से मिलते हैं।
1: नमस्कार,
2: नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेब और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं।

CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मीडियम वेब और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, 12:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन। ईमेल की गूंज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा 1:40 पर। हमारी सांधिकालीन सभा में रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 9:30 पर कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन।

स्वागत है साथियों आप सभी का आज के कार्यक्रम चयन में। कार्यक्रम चयन में आज मैं हूं आपके साथ रिजवान, करता हूं आप सभी का अभिवादन। श्रोताओं कार्यक्रम में आज का शीर्षक है ताल। दोस्तों ताल शब्द सिर्फ संगीत की लय नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन और प्रेम की धड़कनों का भी प्रतीक है। अगर हम ताल को प्रेम के नज़रिए से देखें तो इसकी गहराई और बढ़ जाती है। कार्यक्रम में इस संबंध में आपसे चर्चा और करेंगे, सुनिए ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनोखी रात फिल्म का ये गीत। आवाजें थी मुकेश कुमार और साथियों की। श्रोताओं, जैसे संगीत में जब तक गायक और तबला वादक एक ही ताल पर ना हो तो राग नहीं खिलता, वैसे ही दो लोगों के बीच प्रेम तभी मुकम्मल होता है जब उनके दिलों की धड़कनें एक ही ताल पर धड़कने लगे। सच्चा प्रेम एक जुगलबंदी की तरह है, इसमें एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं बल्कि एक दूसरे की लय में अपनी लय मिलाना होता है। जब दो लोग एक दूसरे की कमियों और खूबियों को स्वीकार कर एक ही ताल पर चलते हैं तो जीवन का सफ़र आसान हो जाता है।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में फिल्म मेरे यार की शादी है का ये गीत।
1: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
2: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
1: अच्छा, वो कैसे?
2: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
1: ओ, समझ गई। यानी 230-600, पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
2: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 077774 और मिला दो 230-600।
1: अरे वाह, 077774 230-600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
2: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
1: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
2: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
1: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
2: क्या?

0: 230 600।
1: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
0: पक्का?
1: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230 600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम चयन में आज हम बातें कर रहे हैं ताल पर। दोस्तों, ताल एक सीमा है, एक दायरा है, लेकिन यह बंधन नहीं बल्कि एक अनुशासन है। जैसे नदी किनारों के बीच रहकर ही बहती है, वैसे ही जब हमारी ऊर्जा एक ताल या नियम में बंधती है तभी वह सृजन कर पाती है। बिना ताल के संगीत सिर्फ शोर है, और वैसे ही बिना तालमेल के हर रिश्ता भी व्यर्थ है।

0: ताल फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में।
1: हेल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
2: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
2: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 0777423006000। नंबर एक बार फिर 0777423006000।
2: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉकथन।
3: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे जिंदगी।
2: चलिए बनाएं एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
3: चलो चलें मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी। 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।
4: चलते चलते चलते
0: श्रोता, हमारा शरीर खुद एक ताल पर चलता है। हृदय की धड़कन दुनिया की सबसे पहली ताल है। जब तक यह ताल सही है हम स्वस्थ हैं। योग और ध्यान में भी अपनी सांसों की ताल को पकड़ना ही सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। श्रोताओं, दो लोगों के बीच जब तालमेल बैठता है तभी तालियां बजती हैं। अकेला हाथ

कभी ताली नहीं बजा सकता। ठीक उसी तरह समाज और परिवार में जब तक एक दूसरे के विचारों की ताल नहीं मिलती तब तक जीवन में सामंजस्य नहीं आता। श्रोताओं, कभी कभी प्रेम वह नहीं जो सिर्फ लफ्ज़ों में हो, प्रेम तो वो है जब दो दिलों की ताल एक हो जाए। जैसे बिना ताल के साज बेअसर है, वैसे ही बिना भरोसे के हर रिश्ता बेनूर है।

सोनू निगम अलका याग्निक के गाए फिल्म रिफ्यूजी के इस गीत के साथ श्रोताओं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन यहीं समाप्त होता है। श्रोताओं कार्यक्रम में चयन में हम आज बातें कर रहे थे ताल पर। मेरी सांसों की ताल में जब अब तेरा नाम रहता है, ये दिल भी अब तेरी धड़कनों के साथ बहता है। भटक कर भी जो वापस सम पर लौट आए, वही मुसाफिर जिंदगी की असली ताल को समझ पाए। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 1 बजने को हैं हिंदी में समाचार, कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो इटली की प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियाम पावलो टोमासिट्टी की भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा है कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की।

0: की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है, जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबुधाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के कुछ ही समय बाद हुई है। इस बैठक में उन्होंने शी चिनफिंग से क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर चर्चा की थी। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। IPL क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हिंदी समाचारों का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण।
2: सब्जियों में खरपतवार की समस्या अन्य फसलों की अपेक्षा अधिक होती है, क्योंकि सब्जी की फसल को अन्य फसलों की अपेक्षा प्रारंभ में अधिक दूरी पर लगाते हैं, जिससे खरपतवार की बढ़वार के लिए अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है और वे अधिक वृद्धि करते हैं। जैसे धान 10 से 15 सेंटीमीटर, खीरा 1 से 2 मीटर, गेहूं 10 से 20 सेंटीमीटर, करेला 5 से 7 मीटर। सब्जी की फसल को अधिक उर्वरक की आवश्यकता होती है, जो खरपतवार की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। सब्जी में कम मात्रा में परंतु थोड़े समय बाद ही सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जिससे खरपतवारों के बीज आसानी से अंकुरित हो जाते हैं। सब्जी के पौधों की बढ़वार धीरे होने से खरपतवारों को उगने में सहायता मिलती है। सब्जी में किसान सामान्यतः अधिक मात्रा में सड़े गोबर का खाद प्रयोग करते हैं, ये अंततः खरपतवार की वृद्धि में सहायक होते हैं। अधिकांश सब्जियां प्रारंभ में धीमी गति से वृद्धि करने वाली होती हैं, अतः वे खरपतवारों की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती हैं। जब खरपतवारों की संख्या अधिक हो जाती है तो सब्जियां उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर पाती। प्राकृतिक रूप से स्थायी प्रवृत्ति वाले जो खरपतवार हैं उनमें एक दो तथा बहुवर्षीय होते हैं। इनमें स्व पुनर्जीवित होने की क्षमता अधिक होती है। इनमें विषम परिस्थितियों में उतर जीवित रहने की वंशागत क्षमता पाई जाती है। इनमें फूल फल तथा बीज जल्दी तथा अधिक संख्या में बनते हैं। इनमें परिपक्वता जल्दी आ जाती है। इनके बीज अगर अनुकूल परिस्थिति नहीं प्राप्त करते हैं तब भी काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ तथा योग्य अवस्था में भूमि पर पड़े रहते हैं। इन फसलों की अपेक्षा प्रति पौधा लाखों की तादाद में बीज पैदा करते हैं। खरपतवार बीजों के अतिरिक्त अपने अन्य कायिक भागों से भी वंश वृद्धि करते हैं, जैसे दूब, पास तने से, हिरनखुरी जड़ों से, कांस प्रकंदों से तथा पत्तियों द्वारा तथा अन्य पत्तियों द्वारा भी कई खरपतवार उगाते हैं। कुछ की जड़ें काफ़ी गहरी हो जाती हैं और वे अपनी राइजोम में काफ़ी समय तक के लिए भोजन एकत्रित कर लेती हैं। इनके बीजों की बनावट, रंग, आकार सहचर फसलों के समान होता है, जैसे प्याज व जंगली प्याज, सरसों तथा सत्यानाशी के बीज आकार प्रकार में काफ़ी मिलते जुलते हैं। प्रतिकूल दशाओं में भी, जैसे कम नमी में, बंजर जमीन में, कीटों व रोगों के आक्रमण के बावजूद सब्जी की फसल में अपेक्षा अधिक वृद्धि करते हैं। इनके बीज विषम परिस्थितियों में भी अंकुरण क्षमता अंकुरण क्षमता रखते हैं।

0: इनको नियंत्रित करने के लिए अधिक मजदूर, विशेष उपकरण व रसायन की आवश्यकता होती है, जो उत्पादन लागत को कम करती हैं। सब्जियों की फसल को खरपतवार से होने वाली हानि में प्रमुख रूप से खरपतवार, जलवायु, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिए फसल के पौधों से प्रतियोगिता करते हैं तथा बढ़वार को प्रभावित करते हैं। भूमि में उपस्थित पोषक तत्व तथा भूमि में प्रयोग किए गए उर्वरक को खरपतवार ग्रहण करते हैं, जिससे फसल पोषक तत्वों का समुचित प्रयोग नहीं कर पाते। खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अधिक मजदूर, नए यंत्र तथा रासायनिक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। ये न केवल उत्पादन लागत को बढ़ाते हैं बल्कि उत्पादन को भी प्रदूषित करते हैं। रासायनिक दवाइयों के प्रयोग से उत्पादन की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात का पुनः प्रसारण। विषय था सब्जियों में खरपतवार नियंत्रण। मीडिया वेब और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने को है। लीजिए सुनिए ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन।

हमर गांव के पहचान केवल खेत खलिहान घर दुरा से नहीं होते, बल्कि हमर परंपराओं, लोकगीत, त्यौहार बार, रीति रिवाज और आपसी भाईचारा से। यही हमर संस्कृति है, यही हमर धरोहर हवे। हमर माटी से जुड़ाव ही हमर संस्कृति और परंपरा ला जीवित रखते। संगी हो, मैं हो सुमतिया बहिन, आप मन सुनता आकाशवाणी अंबिकापुर कार्यक्रम घर गोसाइन में स्वागत है, जय जोहार। संगी हो, हमर परंपरा, भाषा बोली, रीति रिवाज, हमर संस्कार सिर्फ हमर पहचान नहीं हवे, बल्कि हमर धरोहर हवे। देखी, लोकगीत, पारंपरिक व्यंजन, व्रत, तिहार बार, हमर संस्कार हर प्रमुख संरक्षण होते, जेला हमन चाही तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगु बढ़ाए सकत ही। जेला हमन देखी एक तरह से आगु बढ़ाते ही तो हमर संस्कृति हर सुरक्षित रही। आजकल देखते ही जैसे कि गांव कर परंपरा और रीति रिवाज हमर सांस्कृतिक पहचान कर जड़ होते, हमन जानती आधुनिक जीवन शैली, आधुनिक तकनीक, अनेक बदलाव सोच में देखी आधुनिकता के कारण ही हमन धीरे धीरे विलुप्त हो जाते ही, हमर भाषा बोली संस्कृति हर विलुप्त हो जाता है धीरे धीरे। अगर हमर परंपरा, संस्कृति, भाषा बोली ला अगर हमन ला देखी तिहा करना है, बचाना है, तो देखी जन जागरूकता फैलाना बहुत जरूरी है। ये कौन करी, यहर हमर ही समाज के जो मनखे मना है, इमन ला आगू आना पड़ी, चाहे वो कोनो भी भाई जाति के होए, चाहे धर्म के होए, हर मन खेला जन जागरूकता फैलाना है, अपन भाषा बोली संस्कृति परंपरा ला बचाना है, तो हर मन खेला सामने आना पड़ी। बहनी हो, हमर परंपरा रस्म नहीं है, बल्कि हमर पहचान हवे। हमर देखी इतिहास है कि हमन जानत ही आज जिला हमन बचात ही, तभी चला आए वाला पीढ़ी जो हमर जड़ जंगल जमीन से जुड़ल हवे, वो आगु पीढ़ी ला आउ बताए सकी हमर पहचान का हवे, हमर भाषा का हवे, हमर परंपरा का हवे, हमर बोली का हवे। अगर इला बचाना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगु लाना पड़ी। देखिए, गांव के पहचान ही उनकर परंपरा होते, अब परंपरा खत्म हो जाही तो हमन जानत ही कि धीरे धीरे हर चीज हर खत्म हो जाही। आजकल देखी हमन लइका मन ला भी कटिक तिहा करके अगर हमन बताते ही कि देखी हमर दाई बाबा मन कैसे तिहार बार ला मनात रहीन, या हमर भाषा बोली हर का रहीस, हमर संस्कृति हर का रहीस, हमर परंपरा कैसे रहीस, हमर देखी का का हमन ला संस्कार मिले रहीस, वो हर कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबत जाता है। एक बहुत सा कारण भी है भाई, आज

आजकल देखी हमन देखत ही कि जो हमर सियान लइका मन है एमन देखी गांव घर में अगर कुछ भी चीज़ हमन ला बढ़िया से नहीं भेटात है, कमात खात नहीं है, तो हर कोई सोचते कि हमन शहर बाँट चले जाए। और देखी शहर कर रख रखाव गाँव के रख रखाव बहुत अलग होते, अलग से पहचान बनते। तो उमें भी कहीं ना कहीं देखी हमार जो ये मिट्टी से जुड़ाव है, हमार भाषा बोली संस्कृति है, यार कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। आगू कोई भी परेशानी रहे, समस्या रहे, तो हमन गए घरे बैठ के हमन भाई गोइट बात करत रहन कि देखी ये काम ला कैसे करना है, बूता ला कैसे करना है, अपन सियान जग अपन बुजुर्ग मन जग हमन देखी गोइट बात करके ही बड़का बड़का समस्या मन ला हल करत रहन। हुआ धीरे धीरे ख़त्म होए गए भाई। आगू के लड़का मन देखी अपन भाई छोटे बड़े कर आदर सत्कार करें, बढ़िया गोइट बात भी करें, लेकिन वह हर आजकल धीरे धीरे ख़त्म हो गई है। काहे कि जो तरह से हमन सोशल मीडिया से जुड़त ही, जेकर प्रभाव हमार ऊपर पड़त है, हमार ला मोबाइल की जैसे लत लग गई है, उसमें कहीं ना कहीं देखी हमन आधुनिक हो गए हन, बढ़ गए हन, हमन बहुत सा चीज़ सीख गए हन, लेकिन इमें जो हमार पुराना चीज़ रही, हमार रीति रिवाज हर रही, हमार संस्कार हर रही, कहीं ना कहीं धीरे धीरे दबच जाता है। जो भी हमन आगू देखी बड़ा साधारण तरीके से हमन कोई भी व्रत रहे, पूजा रहे, रीति रिवाज रहे, कोनो दिखावा नहीं रहे, उमें हमन बड़ा साधारण रूप से हमन हर चीज़ ला, चाहे बड़खा बड़खा शादी बिहाव रहे, चाहे हमार तिहार बार रहे, तो जो लोक कला है इमें धीरे धीरे तो हमार जो घटत जाता है। शादी बिहाव में हमार गीत मन हर बाजे, हमार पहनावा मन हर दिखे, हमार रीति रिवाज हर रस्म मन हर दिखे, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। संयुक्त परिवार तो आज के गोट में कहता हूँ कि उतना देखी देखे ब नहीं भेटाए, बहुत ऐसा कम घर है जिमें हमन देखत ही कि संयुक्त परिवार भी एक जग दिखते, नहीं तो एकल परिवार तो बगरा हो गई सा, एकर फैशन हो गई सा बगरा कि कहीं लैका ला बहिरे कमाए खाए जाए परिस तो ओकर परिवार होते चले गईस। और पहले ऐसे रहीस कि भाई सब अगर सियान मन है, दई बाबा काका बुआ चाची चाचा ताऊ जमो जग एक जग रहे और बढ़िया खुशी खुशी रहे, कोनो प्रकार के समस्या नहीं हुआत रहीस। लेकिन आजकल तो दुगो भाड़ा घर बैठ जाही तो लग ही लागत है कि लड़त है। तो ऐसे समय हर आ गई से, तो ऐसे जैसे समय में बदलाव हुआत है, इस समय के साथ साथ देखी हमन ला आधुनिक होना है, हमन ला बढ़ना है, हमन ला पढ़ना लिखना भी है, लेकिन अपन परंपरा अपन भाषा बोली हमार जो पारंपरिक चाहे भोजन ही क्यों ना हो, हमार रीति रिवाज ही क्यों ना हो, इला अगर हमन पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ाते ही, हमन जानकारी नहीं देते ही, तो धीरे धीरे जमो जाए थोर ख़त्म हो जाही, हमार पहचान ही ख़त्म हो जाही। जो हमन जुड़े हन, जैसे हमन कथी ना कि हमन अपन जल जंगल जमीन से जुड़े हन, हमन अपन परंपरा संस्कृति भाषा बोली से जुड़े हन, हमन अपन संस्कार अपन सब चीज ला हमन देखी कहीं ना कहीं ऐसे धीरे धीरे विलुप्ति की ओर ले जाते ही ख़त्म कर देते ही। तो इला अगर हमन ला बचाना है तो हमन ला देखी अपन परंपरा अपन भाषा बोली ला अपन लैका मन ला भी हमन ला सिखाना होही, समझाना होही, और जो भी हमन निभात आती आज तक ओला ऐसे ही निभाई ताकि हमार लैका मन भी देखे और ओला आगू बढ़ाए। देखे संगी हो ढेरे चकन गोइट बात करता हूँ, आज हवे हमार गोइट बात कार्यक्रम के दिन, और संगी मन भर सुघर सुघर गीत मन ला लाने हो, संदेश मन भी लाने हो। देखी हमार जो जीमेल द्वारा चिट्ठी ऐसा है, ए नियमित श्रोता है हमार, और हमन ला देखी कुछ ही देर में झटकुन हमन ला चिट्ठी लिख के भेजी ना है कि हमार गीत के जो फरमाइश है ला पूरा कर दई हो। और देखी उनकर नाव गांव हवे रिंगनी छत्तीसगढ़ ले करुणा वर्मा, प्रियंका और दिनेश वर्मा, ए भैया हमन ला देखी हमेशा चिट्ठी लिख भेजते हैं, हमार नियमित रूप से कार्यक्रम ला सुनते हैं, एकर बार बहुत बहुत धन्यवाद है। चली सुघर अकन गीत मन ला सुनल जाए।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है,
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: निन ममता चंद्राकर कर गाल छत्तीसगढ़ी गीत।

रहीस। देखिए दूसरा चिट्ठी ऐसा है, ईमेल द्वारा ये ऐसा है, पुराना तालाब डुमरावले और भेजवैया भैया बहनीवा के नाम हवे वलीउल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी और बक्सर ले देखी सरफुद्दीन अंसारी, मोहम्मद सुल्ताना अंसारी। तो चलिए इनकर पसंद कर गीतला सुनल जाए।

हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन भोजपुरी लोकगीत सुनत रहन और हमन देखी आगे कार्यक्रम ला बढ़ा हूँ और मोर जग सुघर।

हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन भोजपुरी लोकगीत सुनत रहन और हमन देखी आगे कार्यक्रम ला बढ़ा हूँ और मोर जग सुघर अकन देखी चिट्ठी अव ऐसा है ये ऐसा है दिल्ली ले और भेजवैया भैया बहनी मन के नाम हवे फिरोज खान अहमद इकबाल और जलंधर ले संदीप और सुरेश तो चलिए इनकर पसंद कर गीत ला सुनल जाए।

हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन हमन लोकगीत ला सुनत रहन गुलाब सिंह पैकरा कर गाल छत्तीसगढ़ी गीत रहिस। संगी हो देखी एक कार्यक्रम के कुछ समय और बातचीत है जिमे मैं एक ठे ईमेल ला शामिल करूँ और इनकर पसंद कर गीत ला भी सुनवा हूँ। ए ऐसा है देखी जेल रोड जलंधर ले और भिजवैया भैया बहनी मन के नाव हवे रोशन जहाँ मन्नत जहाँ इसरत जहाँ और मक्कार जहाँ हमला कोई भी सुघर अकन गीतला सुनवाए दी हो कहीं न है तो चलिए इनकर पसंद कर गीतला सुनल जाए।

0: हाँ तो संगी हो देखी सुघर अकन भोजपुरी लोकगीत ल सुनेन मोहम्मद खलील कर गाल गीत रहीस। एक कार्यक्रम कर आखिरी गीत रहीस। हमन संदेश मन ला भी पढ़ेन संगी मन कर उनकर पसंद कर गीत मन ला भी सुनायन। संगी हो हमन ला ईमेल करे बर देखी ईमेल आईडी है ghargosain@gmail.com। एमे आप मन छठ कुन हमन ला संदेश लिख के भेज सकत है। एक घाव आउ सुन लेवा ghargosain@gmail.com। संगी हो देखी ढेरेज गर्मी बढ़ गई सह और ऐसे में अपन तिहा जतन करना और अगर घरे लड़का हैं सियान हैं तो ओमन कर तिहा जतन करना बहुत जरूरी हो गई सह। नहीं तो घर के बहनी मन के परेशानी हर बढ़ जाते। तो हमन ला देखी भरपूर मात्रा में पानी पीना है, संतुलित भोजन करना है। अपन भोजन में देखी हरा साग भाजी और देखी तेल मसाला ला एकदम किनारे कर देना है। हरा सलाद ला उपयोग में लाइन सकते ही ताकि हमन स्वस्थ रह सके। तो देखी जाए के बेरा हो गई सहे। सुमतिया बहन ला दा विदा, जय जोहार, राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घर गोसाइन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं 1:40 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज। ईमेल की गूंज सुनने वाले तमाम श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज मैं हूं आपके साथ रिजवान। कार्यक्रम में पहले गीत के लिए हमें ईमेल आया है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा इंद्रजीत कौर छाबड़ा का। जलगांव जंक्शन से हमारे श्रोता हैं दिनेश काले, वंदना काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, आदेश कुमार काले, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक ने गीत सुनना चाहा है। अकोला से रितेश मिश्रा, नीता मिश्रा, गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, दरियापुर भाबली महाराष्ट्र से इन्होंने ईमेल भेजा है। बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान ने ईमेल भेजा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं घातक फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं अलका याग्निक, शंकर महादेवन और अनु मलिक की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का है।

आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे घातक फिल्म का ये गीत। आवाजें थी शंकर महादेवन, अलका याग्निक और अनु मलिक की। संगीत निर्देशन अनु मलिक का था और गीत को लिखा था राहत इंदौरी ने। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान का। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। तिलक नगर नई दिल्ली से आर एस स्वीटी और आर के शुक्ला ने ईमेल भेजा है। स्टेट बैंक नगर पश्चिम विहार नई दिल्ली से लव शर्मा और रोशनी शर्मा ने गीत सुनना चाहा है। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी ने ईमेल भेजा है। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से फरमाइश करता है सोपान तायड़े, वसंत राव भोजने, तुषार। शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सुरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, रोशनी मनवर और प्रियांशी मनवर ने ईमेल भेजा। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं शंकर कोलाम, संतोषी कोलाम, संजय कोलाम, संध्या कोलाम और शिवम कोलाम। शास्त्री नगर बीच शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल और विशाल सपकाल ने गीत सुनना चाहा है। सिद्धेश्वर नगर यतवतमाल से हमारे श्रोता हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्राव्या रामटेके, बालाजी चौक से ईमेल आया है ओटी शिवास शेख आजाद का। कृष्णा पार्क नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा और सिटी दीवाना ने गीत सुनना चाहा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो और विलिज डिकेस्ट्रो ने ईमेल भेजा है। ग्राम बंगला मटिया बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्र्यंबिका, लीना, आशुतोष अंगारे ने फरमाइश भेजी है। दतरंगी से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं दीवाने फिल्म का ये गीत। आवाज़ें हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक की। बोल है समीर के, संगीत संजीव दर्शन का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दीवाने फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कृति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और आरती कुमारी ने गीत सुनना चाहा है। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह ने गीत सुनना चाहा है। सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह, ये हमारे श्रोता हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से। इन्होंने ईमेल के जरिए अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की फरमाइश आई है। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा और बबीता बोट ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुनते हैं अनुराधा पौडवाल और सोनू निगम का गाया फिल्म तुम बिन का ये गीत। संगीत निखिल विनय का है, अल्फाज फैज़ अनवर के हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे तुम बिन फिल्म का ये गीत। आवाजें थी सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल और साथियों की। संगीत निर्देशन निखिल विनय का था और गीत को लिखा था फैज अनवर ने। कार्यक्रम में अगले गीत के लिए हमें ईमेल आया है बौरसारा नीला छत्तीसगढ़ से। प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू का। अढ़ार नांदघाट से हमारे श्रोता हैं माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा। भटिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग ने गीत सुनना चाहा है। वैष्णव कॉलोनी सनावद से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद अलतमश खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री ने ईमेल भेजा है। धनोरी तेली वाला से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान ने अपनी फरमाइश भेजी है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं सोनू निगम और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म वीर ज़ारा का ये गीत।

अभी आपने सुना वीर ज़ारा फिल्म का ये गीत। आवाज़ें थी सोनू निगम और लता मंगेशकर की। बोल थे जावेद अख्तर के। संगीत निर्देशन मदन मोहन कोहली का था। ईमेल की गूंज कार्यक्रम आप आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में अंतिम गीत के लिए हमें ईमेल आया है ज़िला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया और अनुराग मोहन का। गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन पांड्या, वीरेन पांड्या ने गीत सुनना चाहा है। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार, कुमारी सुजाता पोहरकार ने गीत सुनना चाहा है। नांगचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, भाटापारा छतरिया से सोहन जोशी और पायल जोशी ने ईमेल भेजा है। अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर ने गीत सुनना चाहा है। तो आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत विवाह फिल्म से। आवाज़ें हैं श्रेया घोषाल और उदित नारायण की। बोल और संगीत रविंद्र जैन का है।

उदित नारायण और श्रेया घोषाल के गाए फिल्म विवाह के इस गीत के साथ ईमेल की गूंज कार्यक्रम आज यहीं समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 होने को हैं, माफ कीजिएगा, दोपहर के 2:15 होने को हैं। दोपहर समाचार का अंक कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल UL PGM MV3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी, कई स्थानों पर तापमान 44 डिग्री के पार। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ साथ मौजूदा वैश्विक परिदृश्य पर भी व्यापक बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच आज कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है। दोनों नेता कई विषयों पर अपने विचार साझा करेंगे। आज की बातचीत से भारत इटली की मित्रता को और बढ़ावा देने पर चर्चा की जाएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के महत्व को दर्शाने के लिए रोम में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्विरिनल पैलेस में इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से मुलाकात करेंगे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया जाएगा। आज के कार्यक्रमों में प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ताएं, प्रेस वक्तव्य, समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान, द्विपक्षीय बैठकें और खाद्य एवं कृषि संगठन का दौरा शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी मोरस निग्रा ब्लैक मलबरी का पौधा भी लगाएंगे। ये एक ऐसी प्रजाति है जो अपने पाक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व के कारण भारत और इटली को प्रतीकात्मक रूप से जोड़ती है। रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे इटली के प्रधानमंत्री के साथ होने वाली बैठक को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों के बीच बातचीत में मुख्य रूप से भारत इटली संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है और अब ये संबंध निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। दोनों नेताओं ने कहा कि ऐसे समय में जब वैश्विक व्यवस्था में गहन परिवर्तन हो रहे हैं, भारत इटली साझेदारी उच्चतम राजनीतिक और संस्थागत स्तरों पर नियमित आदान प्रदान से निर्देशित है। दोनों नेताओं ने कहा कि उनका सहयोग इस साझा समझ को दर्शाता है कि 21वीं सदी में समृद्धि और सुरक्षा राष्ट्रों के नवाचार करने, ऊर्जा परिवर्तन का प्रबंधन करने और कूटनीतिक संप्रभुता को मजबूत करने की क्षमता पर निर्भर करेगी। दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता दोनों दिशाओं में व्यापार और निवेश के प्रवाह को बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रसिद्ध चित्रकार जियांपावलो टोमासिट्टी की

0: भारतीय संस्कृति पर किए गए कार्यों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कलाकार ने इटली के रोम दौरे में वाराणसी पर बनी अपनी विशेष पेंटिंग प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री टोमासिट्टी का भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम 4 दशक से अधिक पुराना है। एक अन्य पोस्ट में श्री मोदी ने भारतीय नृत्य शैलियों के प्रति 5 इतालवी कलाकारों के प्रेम की भी प्रशंसा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यूबैक से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और तकनीकी सहयोग में साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने भारत दक्षिण कोरिया रक्षा, रक्षा उद्योग और रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस अत्यंत उपयोगी बैठक में दोनों देशों ने रक्षा साइबर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौतों का आदान प्रदान किया। यह समझौता ज्ञापन भारत के राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय, कोरिया राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना सहयोग के बीच हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा कि वे दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए उत्सुक हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश ने आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM-V3 के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये देश के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
1: ये परीक्षण आंध्र प्रदेश में कुरनूल के पास DRDO की टेस्ट रेंज में एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर दोनों तरह से किए गए। इस दौरान मिसाइल प्रणाली को एक एडवांस्ड इंटीग्रेटेड ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम के माध्यम से संचालित किया गया। इन परीक्षणों से विभिन्न परिस्थितियों में मिसाइल की सटीक मारक क्षमता, विश्वसनीयता और प्रभावशीलता प्रदर्शित होती है। इस मिसाइल को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के साथ मिलकर विकसित किया है। पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित ये मिसाइल आत्मनिर्भर भारत पहल की बढ़ती उपयोगिता को दर्शाती है। इससे देश के भीतर रक्षा प्रणाली को और सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी। विजयवाड़ा से अल्लू मुरली की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ULPGM-V3 मिसाइल के सफल विकास परीक्षणों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रक्षा सह उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की है। उन्होंने टैंक रोधी भूमिका के लिए हवा से जमीन मोड और ड्रोन, हेलीकॉप्टर तथा अन्य हवाई लक्ष्यों के लिए हवा से हवा मोड में इसकी प्रभावशीलता के बारे में जानकारी दी। श्री सिंह ने इसे रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के तहत जाति आधारित जनगणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका आज खारिज कर दी। अदालत ने कहा है कि यह मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। पीठ ने कहा कि इस तरह के आंकड़े एकत्र करने में कोई बुराई नहीं है और मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें सरकारी कानूनी पैनलों और विधि अधिकारियों की नियुक्तियों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक ट्रस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता उत्तर बंगाल का सर्वांगीण विकास है। उन्होंने कहा कि वो विकास परियोजनाओं की समीक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभावों की निगरानी के लिए हर महीने एक बार उत्तर बंगाल का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर बंगाल विकास मंत्री, उत्तर बंगाल सचिवालय, उत्तर कन्या सिलीगुड़ी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार का आयोजन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जनता दरबार के बाद दिन में 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक अधिकारियों के साथ प्रशासनिक समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद उसी दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक विकास मंत्री क्षेत्र के सभी सांसदों और विधायकों के साथ विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करेंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि सरकार स्मार्ट विनियमन और

0: उत्तरदायी शासन के माध्यम से बाजार में निष्पक्षता बढ़ाकर नियामक बोझ को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्व मापन दिवस 2026 के अवसर पर वर्चुअल रूप से आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये परिकल्पना की है कि भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता वैश्विक मानकों और पर्यावरण के अनुकूल होनी चाहिए। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र के महानिदेशक नवीन कुमार सिंह ने आज कहा कि देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था से वर्ष 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में लगभग 20% के योगदान देने की उम्मीद है। वे नई दिल्ली में फिक्की के साइबरकॉम के 7वें संस्करण के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मध्य प्रदेश के भोपाल में नोएडा की 33 वर्षीय महिला की संदिग्ध मौत का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर त्वरित निष्पक्ष और समयबद्ध जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। महिला आयोग ने 7 दिन में विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट भी मांगी है। पंजाब पुलिस ने दुबई स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है जो सीमावर्ती राज्य पंजाब और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए अबू धाबी से काम कर रहा था। पुलिस ने 14 किलोग्राम मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी का अंतिम संस्कार आज हरिद्वार में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को राज्य के लिए अपूर्णीय क्षति बताया।
1: मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जी का जाना पूरे राज्य के लिए और देश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है और उन्होंने सेना के अधिकारी के रूप में देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं दी, अभूतपूर्व योगदान दिया। उसके बाद भारत सरकार में मंत्री के नाते और राज्य में मुख्यमंत्री के नाते उन्होंने शुचिता, पारदर्शिता और अनुशासन और समय की पाबंदी, ऐसे बहुत सारे अनुकरणीय जो कार्य हैं अपने समय में किए, वो हम सभी के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में लू की स्थिति बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान के अधिकांश जिले भी इस समय भीषण लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के 2 जिलों में लू की स्थिति को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जबकि 14 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: प्रदेश में भीषण गर्मी और गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं। ज्यादातर जिलों में दिन का पारा भी आ गया। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने अस्पतालों में हीट वेव प्रबंधन को लेकर सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में
0: पंजाब और हरियाणा में भी भीषण गर्मी जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने दोनों राज्यों में गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
3: चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरेंद्र पाल ने आकाशवाणी को बताया कि आने वाले 3-4 दिनों में मौसम शुष्क रहेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों राज्यों के पश्चिमी जिलों में लू की स्थिति रहेगी। पंजाब में ये जिले अमृतसर, फिरोजपुर, तरनतारन, मानसा, संगरूर, बठिंडा और मुक्तसर होंगे और हरियाणा में हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, गुरुग्राम और फरीदाबाद में सबसे ज्यादा गर्मी महसूस होगी। पिछले 24 घंटों में पंजाब में फरीदकोट 47.3 डिग्री सेल्सियस और हरियाणा में रोहतक 46.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म जिले रहे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने आज बीजिंग में द्विपक्षीय संबंधों, ईरान यूक्रेन संघर्ष और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहित प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता से बीजिंग और मॉस्को के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूती मिलेगी और संयुक्त राष्ट्र, दक्षिण अफ्रीका परिषद और ब्रिक्स जैसे मंचों के माध्यम से समन्वय बढ़ेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले महीने फ्रांस में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और कई यूरोपीय सहयोगियों में बढ़ते तनाव के बीच ट्रंप इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 101 अंक गिरकर 75,100 जबकि निफ्टी 24

अंक की गिरावट के साथ 23,594 पर कारोबार कर रहा था। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच कोलकाता में शाम 7:30 शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल यू

0: से शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से वार्ता करेंगे। आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी ने एक साझा लेख में भारत इटली महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारी और आर्थिक पहलों का उल्लेख किया। डीआरडीओ ने मानव रहित ड्रोन मिसाइल ULBGM-V3 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्री ने इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सर्वोच्च न्यायालय ने जाति आधारित जनगणना करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। उत्तर और मध्य भारत में लू का प्रकोप जारी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दोपहर समाचार का अंक आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया गया। मीडियम वेव और FM बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गैर फिल्मी गीतों गज़लों का कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिए फाल्गुनी पाठक की आवाज़ में ये एल्बम गीत।

जय वालिया को अभी आपने सुना इस एल्बम गीत में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गंधा। कार्यक्रम में आप सुनिए अदनान सामी की आवाज़ में ये एल्बम गीत।

अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को इस एल्बम गीत में। कार्यक्रम में आप सुनिए यासिर देसाई और नेहा कक्कड़ की आवाज़ में ये एल्बम गीत।

यासिर देसाई और नेहा कक्कड़ को अभी आपने सुना इस एल्बम गीत में गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई इस गजल के साथ श्रोताओं आज गैर फिल्मी गीतों गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का समापन यही होता है। मीडिया में 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। श्रोताओं, सभा समाप्त करने से पहले आइए हम आपको बता दें आज के शेष मुख्य आकर्षण।

श्रोताओं, हमारी सांध्यकालीन सभा की शुरुआत होगी रोज की तरह शाम 5 बजे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोंट के साथ। गैर फिल्मी और फिल्मी भजनों का कार्यक्रम भजन संध्या का आप आनंद लेंगे 5:05 पर। युवा श्रोता अपना चहिता कार्यक्रम युवा वाणी का प्रसारण सुनेंगे 5:30 पर। 6:05 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। 6:20 पर आप सुनिएगा लोकगीतों का कार्यक्रम गोधुली। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी होगा 6:30 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा का आप लुत्फ उठाएंगे 7:05 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण करेंगे 7:20 पर। इसमें आज सामयिक चर्चा के विषय होंगे मधुमक्खियों के संरक्षण से कृषि उत्पादन और जैव विविधता का संतुलन विश्व मधुमक्खी दिवस, और बात होगी महिला सुरक्षा से सामाजिक सुरक्षा विषय पर, और कुछ बातें होंगी वन स्टॉप सेंटर योजना विषय पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सोशल मीडिया की गूंज। इंस्टा फरमाइश सोशल मीडिया आधारित श्रोताओं की पसंद का फरमाइशी कार्यक्रम। चित्रपट संगीत कार्यक्रम आप सुन सकेंगे 9:15 पर। कार्यक्रम चर्चा का विषय है, इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे 9:30 पर। ईमेल की गूंज कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात्रि 10 बजे। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। श्रोताओं, ये थे आज हमारे केंद्र से प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडिया में 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं मीडिया में, और अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल का प्रसारण जारी रहेगा। मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी ये सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आइए सभा का आगाज करते हैं, सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बोझा, मायापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 26 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक पुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पोड़िपा, घंघरी, सकालो, सरगवा, गुल्हाड़ी, पड़ौली, अमड़ी, किशुनपुर, मिर्गाडांड, मनोहरपुर, पंडरीपानी, डांडगांव, पेटला, ललितपुर, सरगा, बरवाली, बरडांड, दांतीढाप, कंडराजा, बैगहवा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 33 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, हस्तिनापुर, खड़ा माचा, पीठा आमा, राजा आमा, महेशपुर, झिमकी, कुकुर गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 133 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभयारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये पकरीत, कोठारी, गुड़ागढ़, फुरफुंदी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडईपानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारीपानी, डूमरघाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए

0: सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम के 5:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति गीतों से सजा कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं फिल्म दिल्ली 6 का ये गीत। आवाज है रेखा भारद्वाज, किशोरी एवं सुजाता मजुमदार की। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं प्रसून जोशी।

कार्यक्रम भजन संध्या में लीजिए सुनिए अगला गीत फिल्म ओ माई गॉड से। आवाज है कैलाश खेर की, संगीत निर्देशन है मीट ब्रोस का और गीतकार है कुमार।

कार्यक्रम भजन संध्या में अब लीजिए सुनिए खानदान फिल्म का ये गीत। आवाज है मोहम्मद रफी एवं साथियों की, संगीत निर्देशन है रवि का और गीतकार है राजेंद्र कृष्ण।

कार्यक्रम भजन संध्या की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं लम्हे फिल्म का ये गीत। आवाज लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है शिव हरि का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

कार्यक्रम भजन संध्या की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं इंदर के नायर की आवाज में ये गीत। संगीत निर्देशन है प्रदीप पंडित का और गीतकार हैं किशोर चंचल।

श्रोताओं, तकनीकी समस्या की वजह से हम आपको कार्यक्रम भजन संध्या का अंतिम गीत नहीं सुना पाए। शाम के 5:30 हो रहे हैं। कार्यक्रम भजन संध्या बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

का संतुलन। कभी सोचा है सुबह की ताजी हवा, पेड़ों की छांव, बारिश की खुशबू, ये सब हमें बिना मांगे मिल जाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम प्रकृति को वापस कुछ दे रहे हैं या सिर्फ लेते जा रहे हैं? धीरे धीरे बिना सोचे समझे उस संतुलन को बिगाड़ रहे हैं जिस पर पूरी दुनिया टिकी है। प्रकृति का संतुलन मतलब है हर चीज का अपने स्थान पर सही तरीके से होना। पेड़ हवा को साफ करते हैं, नदियाँ जीवन देती हैं, पशु पक्षी पर्यावरण का हिस्सा है, मिट्टी हमारी खेती की जड़ है, और ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर इस सिस्टम का एक हिस्सा भी बिगड़ जाए तो पूरा संतुलन डगमगाने लगता है, और आज यही हो रहा है। हवा प्रदूषित हो रही है, पानी गंदा हो रहा है, और जलवायु बदल रही है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे हमने खुद बनाया है। कभी इंसान

नमस्कार दोस्तों, आज के यूवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रियम और आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस विषय की जो हमारी जिंदगी से भी बड़ा है, हमारी आने वाली पीढ़ियों से भी जुड़ा है, वो है प्रकृति।

जीवन देती हैं। पशु पक्षी पर्यावरण का हिस्सा है। मिट्टी हमारी खेती की जड़ है और ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। और अगर इस सिस्टम का एक हिस्सा भी बिगड़ जाए तो पूरा संतुलन डगमगाने लगता है। और आज यही हो रहा है। हवा प्रदूषित हो रही है, पानी गंदा हो रहा है और जलवायु बदल रही है। ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे हमने खुद बनाया है। कभी इंसान प्रकृति के बहुत करीब था। गांव के लोग पेड़ों को परिवार की तरह मानते थे। नदियों को पूजा जाता था, धरती को माँ कहा जाता था। पर जैसे जैसे विकास बढ़ा, हमने दूरियां बना ली। हमने सोचा हम प्रकृति से बड़े हो गए हैं, लेकिन सच ये है हम प्रकृति के बिना एक दिन भी नहीं चल सकते। सांस लेने के लिए हवा चाहिए, हवा पेड़ों से आती है। जीने के लिए पानी चाहिए और पानी नदियों से आता है। फिर भी हम उसी हाथ को चोट पहुंचा रहे हैं जो हमें जीवन देता है। आज मौसम बदल चुका है, गर्मियां पहले से ज़्यादा तेज हो गई हैं, बारिश अब समय पर नहीं आती, कई जगह बाढ़ और कई जगह सूखा, जानवरों के घर खत्म हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और शहर बढ़ते जा रहे हैं। प्लास्टिक ने धरती को जकड़ लिया है, धुआं आसमान को ढक रहा है। ये सब अलग अलग समस्याएं नहीं हैं, ये एक ही समस्या के अलग अलग चेहरे हैं। प्रकृति का बिगड़ता संतुलन और सबसे बड़ा बात, ये धीरे धीरे हमें नुकसान पहुंचा रहा है। एक सवाल आता है, जिम्मेदार कौन है? सरकार, संस्थाएं या हम? सच ये है हर व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि प्रदूषण कोई अकेले नहीं फैलाता, हम सब मिलकर फैलाते हैं। हर एक प्लास्टिक की बोतल, हर एक कटा हुआ पेड़, हर एक फेंका गया कचरा कहीं ना कहीं हमारी आदतों का हिस्सा है। और अगर समस्या हमने शुरू की है तो समाधान भी हमसे ही शुरू होगा। दोस्तों, अब थोड़ा आगे सोचिए, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया देंगे? क्या उन्हें साफ हवा मिलेगी? क्या उन्हें पीने का पानी मिलेगा? क्या उन्हें पेड़ देखने को मिलेगा, या सिर्फ किताबों में प्रकृति पढ़नी पड़ेगी? ये सवाल डराने के लिए नहीं, ये जगाने के लिए है, क्योंकि जो हम आज करेंगे वही कल की हकीकत बनेगा। तो साथियों, आज का संदेश बहुत साफ है, प्रकृति का संतुलन कोई विकल्प नहीं है, ये हमारी जरूरत है। अगर प्रकृति सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, अगर प्रकृति टूटेगी तो हम भी टूटेंगे। धरती हमें विरासत में नहीं मिली, हमने इसे उधार लिया है अपनी अगली पीढ़ी से, और अब समय है उस उधार को बचाने का। एक छोटा कदम आज, एक बेहतर दुनिया कल। तो दोस्तों, आज की चर्चा बस यहीं तक। अब आइए सुनते हैं गीत जिसे हमने लिया है फिल्म बागी से, जिसमें आवाजें हैं मोनाली ठाकुर और मीट ब्रोस की, गीतकार हैं कुमार और संगीत से सजाया है मीट ब्रोस ने।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी।
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही।
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई।
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम इनसे मिलिए में।

0: स्वागत है दोस्तों आपका हमारे क्रम इनसे मिलिए में। और आज इसी क्रम में है हमारे साथ हमारे एक युवा साहित्यकार साथी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उनसे उन्हीं का परिचय।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित प्रेम एकेआर और मैं माँ हमाया नगरी अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ।
0: बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे क्रम इनसे मिलिए में। अमित, सबसे पहले हमें ये बताइए कि लिखने की शुरुआत कैसे हुई, कविता और कहानी तक सफर कैसे पहुंचा?
1: वैसे मेरी लिखने की शुरुआत मेरे 10वीं क्लास के बाद से ही हुई है, जब मैंने बड़े बड़े लेखकों की कुछ कविताएं और शायरियों को पढ़ा था, तब मुझे लगा कि क्या मैं भी ऐसा लिख सकता हूँ, तो इसी प्रेरणा को लेकर मैंने लिखने की शुरुआत की।
0: अमित, आपकी पहली रचना आपको याद है?
1: मेरी पहली रचना वो याद है मुझे, जो मैंने अपने फेसबुक पर पोस्ट, तो वो रचना ये थी कि कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है दुनिया, जख्मों को कुरेद कर मरहम भी लगाती है दुनिया, यहाँ किसी का भी एक रूप नहीं है, हर एक दिन नया चेहरा दिखाती है।
0: वाह वाह अमित जी, बहुत ही खूबसूरत लाइन कहा है आपने। अमित, आपको लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है?

0: मुझे लिखने की प्रेरणा तो सबसे पहले तो मैंने अपने एक दोस्त को देखा था जब वो 12वीं क्लास में वो लिख रहा था। वो सच में लेखक था, अब भी वो लिखता है। तो उसी को देखकर मैंने अपने लिखने की शुरुआत की थी।
1: ये रियल लाइफ इंसिडेंट्स होता है या फिर इमेजिनेशन से आप लिखते हैं?
0: लेखकों का कहते हैं कि लेखक तो सारे सपनों में जीते हैं, ख्यालों में जीते हैं, तो वैसा ही मेरे पर भी है। तो अपने में ख्याल तो लिखता ही हूँ, साथ साथ जो देखता हूँ, जो आसपास जो बीतता है, जो सुनकर समझकर, उसी को अपने शब्दों में उसे बनाकर मैं लिखता
1: अमित, कोई व्यक्ति या लेखक जिन्होंने प्रभावित किया हो आपको?
0: हूँ। वैसे तो मुझे सभी लेखक बहुत पसंद हैं। मैं सभी बड़े लेखकों को पढ़ता हूँ और उन सोचता हूँ कि शायद मैं कभी उन जैसा उनके जैसा 1% भी लिख सकूं। लेकिन वही है कि एक मेरा दोस्त जो 12वीं क्लास में लिखता था, सबसे पहले मैं उसी की रचनाओं को देखकर आया कि जब बड़े लेखकों के जैसा ये भी लिख सकता है तो मैं भी क्यों नहीं लिख सकता हूँ। तो वो मेरे लिए, वो मेरा दोस्त बहुत खास है, उसी को देखकर मैंने लिखा।
1: अमित, एक कविता या कहानी लिखने का आपका प्रोसेस क्या होता है?
0: कविता या कहानी लिखने का प्रोसेस तो बहुत ही आम सा ही रहता है, जो लेखकों के लिए बहुत आम ही है। जैसे किसी भी चीज को देखकर, उसे महसूस कर कर उस पर, जैसे कि अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तो मैं आपके तारीफ में ये कह सकता हूँ कि साड़ी में किसी देवी की मूरत सी लगती हो। तुम दिल्ली न बम्बई न कोलकाता, तुम तो सूरत सी लगती हो, और तुम्हें क्या जरूरत इन सब दिखावों की, तुम तो ऐसे ही बहुत खूबसूरत लगती हो। तो ऐसे ही है कि हम देखकर उसे अपने शब्दों में उतार लेते हैं, बस यही प्रोसेस।
1: अमित, पहले आइडिया आते हैं या शब्द खुद आ जाते हैं?
0: आइडिया तो किसी भी चीज को देखकर, किसी बातों को सुनकर, उसके अंदर की बात क्या हो सकती है और क्या हुई है, उसी को देखकर हमारे अंदर शब्द पैदा हो जाते हैं। बोलूं तो लिखना मेरा शौक है, लेकिन कभी बिना जुनून के नहीं लिखा। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में लिखना चाहते हैं तो अपने आप अंदर में एक जुनून पैदा हो जाता है, तो शब्द ही अपने आप बनने लगते हैं।
1: जी जी अमित जी, लिखने का फेवरेट टाइम क्या है आपका?
0: वैसे लिखता तो मैं कभी भी हूँ, कभी भी लिख लेता हूँ। जैसे रास्ते में चलते हुए, किसी को देखकर, किसी चीज को सुनकर। लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा समय है लिखने का, वो है रात, क्योंकि रात के समय सभी लोग अपने आप से मिलते हैं। तो लेखकों के लिए मुझे लगता है कि सबसे अच्छा समय रात का ही है, तो मेरा भी सबसे फेवरेट लिखने का समय रात है।
1: अमित, युवा साहित्यकार के रूप में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा?
0: युवा साहित्यकार के रूप में स्ट्रगल मेरा यही है कि लोग साथ नहीं देते, क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं लिखता हूँ, मेरी कविताएं पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पर लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे पूरे भारत में भले ही लोग मुझे जान रहे हैं, लेकिन मेरे आसपास के लोग मेरा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, पता नहीं वो कारण क्या है। तो यही मेरे लिए स्ट्रगल है।
1: अमित, कभी लगा कि लिखना छोड़ देते हैं?
0: लिखना मेरे लिए पानी पीने के जैसा है। पानी पीने के लिए हम अगर उपवास हैं तो एक दिन के लिए भले ही रोक सकते हैं पानी पीना, लेकिन पानी पीना छोड़ नहीं सकते। तो लिखना मेरे लिए वही है, अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लिखन मेरे लिए जीवन है।
1: अमित, छत्तीसगढ़ युवा रत्न अवार्ड मिलना, ये पल आपके लिए कितना खास था?
0: छत्तीसगढ़ युवा रत्न मिलना मेरे लिए उतना ही खास था जितना कि एक बाजार में कोई बच्चा है को कोई खिलौना पसंद आ जाए और उसे उसके मम्मी पापा अगर उसे दिला दें, तो जितनी खुशी उस बच्चे को होती है उतनी ही खुशी मुझे छत्तीसगढ़ युवा रत्न बनने पर हुई।
1: अमित, जब आपका नाम अनाउंस हुआ तब क्या फील हुआ था?
0: पहले तो मुझे लगा था कि मैं सपने में ही हूँ, क्योंकि मैं जब रायपुर पहुँचा तो जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी जब स्टेज पर पहुँचे तब भी मुझे लग रहा था कि मैं सपना ही देख रहा हूँ। पर जब मेरा नाम अनाउंस हुआ तो मैं सपने से बाहर आया, तब मुझे पता चला कि सच में मुझे ये अवार्ड मिल गया है, और मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था।
1: अमित, आपकी फैमिली का रिएक्शन कैसा रहा जब उन्हें इस बारे में पता चला?
0: मेरी फैमिली हमेशा से सपोर्ट

0: ओटी रही है मेरी, पर मेरे पापा कभी कभी कहते थे कि ये क्या वीडियो सभी बनाता है रहता है, क्या कविता शायरी करते रहता है। पर जब मेरा नाम मुझे पता चला कि छत्तीसगढ़ युवा रत्न में आया, रविवार का दिन था, 11 बज रहे थे जब मुझे कॉल आया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और मैंने फिर अपने पापा को बताया, तो जो पापा के चेहरे पर जो खुशी देखी मैंने, तो वो मेरे लिए उस अवार्ड से भी बहुत बड़ी थी। कि जब मेरे पापा खुश हुए उस बात को लेकर, तब मुझे लगा कि मैंने सच में अवार्ड, बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया है।
1: जी जी, फैमिली का रिएक्शन देखकर ही मन को बहुत खुशी होती है। अमित, आज के डिजिटल युग में क्या लोग साहित्य से दूर हो रहे हैं?
0: डिजिटल युग में साहित्य से दूर तो नहीं हो रहे हैं, साहित्य के करीब ही जा रहे हैं लोग। क्योंकि आजकल, जब मैं 12वीं में था उस समय की तुलना में, अभी तो साहित्य की ओर लोग बढ़ रहे हैं।
1: अमित, यंग जनरेशन को पोएट्री में कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है?
0: आज की यंग जनरेशन को, आज के हमारे लोग की युवा पीढ़ियों को अपने तरफ आकर्षित करने का, या पोएट्री की तरफ, उसका यही है सबसे, कि उन्हीं की भाषा में आसान तरीकों से उन्हें समझाया जाए, उन्हें कि सामने वाले को अपने दिल की बात वो कैसे कह सकते हैं, वो एकदम आसान सी भाषा में उनको समझाया जाए, तभी हम उनको इस साहित्य के तरफ, पोएट्री के तरफ जोड़ सकते हैं।
1: अमित, सोशल मीडिया साहित्य के लिए ब्लेसिंग है या चैलेंज?
0: सोशल मीडिया तो चैलेंज तो नहीं है, क्योंकि आज देखें तो हम 3 साल के बच्चे से लेकर 30 साल के युवा तक सभी बहुत अच्छे से सोशल मीडिया चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं। तो सोशल मीडिया तो ब्लेसिंग ही है, क्योंकि हम बहुत आसानी से और कम समय में पूरे देश दुनिया तक हम अपनी बात, अपनी पोएट्री, अपनी बहुत सारी चीज़ें पहुंचा सकते।
1: कोई थीम जो आपके दिल के सबसे करीब हो?
0: थीम तो मैं ज़्यादातर वही सिंगार रस पर लिखता हूँ, और वैसे मेरा पेन नेम भी अमित प्रेम है, तो प्रेम मेरे लिए सबसे उचित और मेरा बहुत प्रिय विषय है।
1: अमित, जब लिखने का मन ना हो या आइडिया ना आए, तब क्या करते?
0: लिखने का जब मन नहीं करता है तो मैं पढ़ने लगता हूँ। ऐसे कोई कवियों को, उनकी किताब या उनकी कोई रचना जो YouTube पर उपलब्ध हो, उसे सुनता हूँ और उनसे सीखता हूँ, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक लिखेंगे नहीं।
1: अमित, आगे साहित्य के क्षेत्र में आपका सपना क्या है?
0: मेरा साहित्य के क्षेत्र में यही सपना है कि मैं एक अच्छा साहित्यकार बनूं, जिससे लोग जुड़ाव महसूस कर सकें, अपनापन महसूस कर सकें, जो अपनी बातों को आसानी से कह सके, और मेरी बात किसी को बुरी मत लगे। मैं चाहता हूं कि लोग सब मुझसे प्यार करें, मेरी रचनाओं से प्यार करें, और मुझे मेरी रचनाओं के नाम से जानें।
1: अमित जी, बातों का सिलसिला हम आगे और भी जारी रखेंगे, पर उससे पहले आए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत। तो अमित जी, आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मुझे किशोर कुमार जी का कोई भी एक गीत सुना दीजिए।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आपका क्रम इनसे मिले में। और आज हमारे साथ हैं हमारे युवा साथी साहित्यकार अमित यादव जी। अमित, फ्यूचर में बुक पब्लिश करने का क्या प्लान है?
1: मेरी जैसे पिछली 3 किताबें आ चुकी हैं और 3 किताबें कंपाइल भी की हैं मैंने, और 25 से अधिक किताबों में सहलेखक के रूप में भी रह चुका हूं। और अभी मेरी अगली किताब पर मेरा काम चल रहा है, तो जल्द ही वो किताब आप सभी के बीच उपलब्ध होगी।
0: अमित, अब हम आपसे आपकी अचीवमेंट जानना चाहेंगे, हमें बताइए।
1: 2023 में मैं निखारटोक स्पीकर रह चुका हूँ। 2023 में मुझे छंद साधना साधक सरगुजा का अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ युवा रत्न का अवार्ड अभी 2025-26 में मिला। यही मेरे जीवन की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं। यही
0: अमित, जो युवा लिखना चाहते हैं लेकिन शुरुआत नहीं कर पा रहे, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: जो युवा अभी लिखना चाह रहे हैं उनको यही कहूँगा कि लिखने से पहले आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप जितनी ज़्यादा किताबें हो सकती हैं वो पढ़िए, बड़े लेखक हों या छोटे लेखक। आपका जो प्रिय विषय है उसे हो, वो हो या फिर कोई उसके अलावा, सभी लेखकों को आप पढ़िए, उनको सुनिए कि वो कैसे बोलते हैं। जब तक आप लोग सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका शब्दकोश नहीं भरेगा, और जब तक आपका शब्दकोश नहीं भरेगा तब तक आप लिख नहीं पाएंगे। तो मेरा सभी युवाओं से जो लेखक बनना चाहते हैं, साहित्य की ओर जाना चाहते हैं, उनसे यही है कि वो पहले अच्छे से पढ़ें तब लिखना शुरू करें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आपने हमसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें साझा की, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रियम जी मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
0: दोस्तों, आज हमारे क्रम इनसे मिलिए में हमारे साथ थे हमारे युवा साहित्यकार साथी अमित यादव जी। तो दोस्तों, आज का क्रम इनसे मिलिए बस यहीं तक। अब इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार। दोस्तों, अभी आपने सुना क्रम इनसे मिलिए में साहित्यकार अमित यादव जी से बातचीत। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले क्रम में और सुनते हैं फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत, जिसमें आवाजें हैं आशा भोसले और अभिजीत की, गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

दोस्तों वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का आज की युवाणी से। जाने से पहले मैं बता दूं आपको कल के मुख्य आकर्षण। कल आप सुनेंगे एक नए विषय पर युवा सोच और क्रम महफिल। तो दोस्तों इजाजत दीजिए मुझे यानी आपकी दोस्त प्रियम को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रोम में इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और रणनीतिक साझेदारियों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे

0: बंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को 20 बिलियन यूरो तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हमारी पार्टनरशिप का इंजन है। AI, क्वांटम, स्पेस और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी जैसे क्षेत्रों में हमारे सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानने में के मामले में एकजुट हैं। सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। हाल के वर्षों में भारत इटली संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी ने संयुक्त लेख में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण मित्रता से विकसित होकर एक विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंच गए हैं। ये संबंध स्वतंत्रता, लोकतंत्र और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण के मूल्यों पर आधारित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियोल में दक्षिण कोरिया के रक्षा अधिग्रहण कार्यक्रम प्रशासन के मंत्री ली जोंग चुल से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्ष संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और संयुक्त निर्यात के अवसर पैदा करने के लिए आपसी प्रयासों का लाभ उठाने पर सहमत हुए। दोनों देशों के नवाचार इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने वाली महत्वाकांक्षा काइंड एक्स पहल की क्षमता को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए एक रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर भी चिंता व्यक्त की गई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अनमैन्ड एरियल व्हीकल लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल के अंतिम विकास परीक्षण को सफलतापूर्वक किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के अंतर्गत स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों, रक्षा से उत्पादन भागीदारों और उद्योग जगत की सराहना की। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र को एकजुट करने का एक सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। मुंबई प्लेऑफ की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुकी है, जबकि कोलकाता प्लेऑफ में जाने के लिए अगले दोनों मैचों में जीत के साथ साथ दूसरी टीम के परिणाम पर भी निर्भर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है विचार बिंदु। विचार बिंदु में आज का विषय है संवेदनशीलता। संकलन एवं वाचन स्वर है रैना के।
3: अच्छी बात है कि हम जीवन में तेजी से आगे बढ़ें, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम उस प्रगति का सही मतलब जानें, क्योंकि अगर गति अधिक हो और दिशा गलत हो तो हम लक्ष्य से दूर होते चले जाएंगे। जीवन का सही मूल्यांकन इससे नहीं होता कि हमने कितना पाया, बल्कि इससे होता है कि हम कितना दे पाए। कामनाओं को पूरा करने की होड़ में किसी की भावनाएं तो आहत नहीं हो रही। स्व की दुनिया में जीने वाला हृदय दूसरे की भावनाओं के प्रति सजग है। व्यस्त जिंदगी में थोड़ा ठहर कर किसी को समय देना

0: संभव है। ये तमाम प्रश्न हमारे जीवन को सही दिशा देने में मदद करते हैं, हमें संवेदनशील बनाते हैं। संवेदनशीलता ईश्वर द्वारा हमें दिया गया एक अमूल्य उपहार है जो हमारे अस्तित्व को करुणा, दया, प्रेम, आशा, उत्साह, सहानुभूति, सेवा, समर्पण जैसे अनेक गुणों से भर देता है जो जीवन को जीवंत बनाए रखता है। संवेदनशीलता केवल भावना नहीं है, ये चेतना का वो द्वार है जिसे होकर संसार हमारे भीतर प्रवेश करता है। हम सांसारिक चीजों के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। जब कोई पत्थर गिरता है तो वो केवल गिरता है, पर इस पत्थर के गिरने की घटना जब मनुष्य देखता है तो वो डर जाता है, सजग हो जाता है। यही संवेदनशीलता है। संवेदनशीलता को तीन स्तरों पर समझा जा सकता है। इंद्रिय संवेदना, जब हमारा शरीर बाहरी चीजों को ग्रहण करता है, आंख प्रकाश को, कान ध्वनि को, त्वचा स्पर्श को अनुभव करती है। ये संवेदना पशुओं में भी होती है पर अव्यक्त रहती है, हम व्यक्त कर सकते हैं। भाव संवेदना, जो सिर्फ मनुष्यों में होती है, जहां दूसरे का दुख अपना दुख लगने लगता है, किसी अपरिचित की पीड़ा देखकर आंखें भर आना, ये मनुष्यता की पहचान है। नैतिक संवेदना, जहां व्यक्ति न केवल दूसरे की पीड़ा अनुभव करता है बल्कि उसे दूर करने की जिम्मेदारी भी अनुभव करता है, यहाँ करुणा कर्म बन जाती है। भारतीय परंपरा में संवेदनशीलता को करुणा और अहिंसा के रूप में देखा गया है। दूसरे के दुख को अनुभव करना, दूसरे में स्वयं को देखना ही सर्वोच्च संवेदनशीलता है। मैं और तू का भेद मिट जाता है, एकाकार हो जाता है। किंतु जब संवेदनशीलता खत्म हो जाती है, मर जाती है, यानी मनुष्यता खत्म हो जाती है। संवेदनशीलता हमें स्व से बाहर झांकने का अवसर देती है। ये हमें निस्वार्थ भाव से किसी का भला करने की शक्ति प्रदान करती है जो व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। हमारे आसपास हर दिन ऐसी कई घटनाएं घटित होती होंगी जिनमें हम किसी न किसी तरह से मदद कर सकते हैं। हम किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। आज के समय में एक विरोधाभास भी है, हम सूचना के महासागर में डूबे हैं फिर भी संवेदना से वंचित होते जा रहे हैं। प्रतिदिन हजारों समाचार देखते हैं, युद्ध, पीड़ा, अकाल, अन्याय, किंतु मन में कोई लहर नहीं उठती। क्या अति सूचना संवेदनशीलता को कुंद कर देती है? किंतु ये भी कहा जाता है कि संवेदनशील होना साहस का काम है। इसका अर्थ है कि आप घाव खाने और संघर्ष करने के लिए तैयार हैं।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग मीनल तिवारी के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करें शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग है अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवाई व्यापारी मन है दुकान राखिन बंद। अब समाचार विस्तार ले। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है आज रायपुर पुलिस परेड मैदान में डायल 112

इस टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा के शुभारंभ करीन। ये मौका मा उमन 54 थीन नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी दिखा के रवाना करीन। उमन किहिन की पहली डायल 112 सेवा सिर्फ 16 थीन जिला तक सीमित रहीस, जेखर बढ़वार अब प्रदेश के सबो 33 जिला मा कर दे गे है। उमन यहू बतेन की सबो गाड़ी मा आधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक हवे। डायल 112 मा पुलिस सहायता, फायर ब्रिगेड, मेडिकल इमरजेंसी, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, आपदा प्रबंधन और हाईवे इमरजेंसी जैसन सबो आपातकालीन सेवा ले जा सकत है। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन में स्थानीय शुल्क बढ़ाए के आदेश जारी करे है। ये नवा दर सरकारी स्कूल के संगे संग आत्मानंद स्कूल और अनुदान मिले विद्यालय मन में घलो लागू होही। जारी आदेश के मुताबिक हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थी मन के स्थानीय शुल्क 410 रुपया ले बढ़ा के 500 रुपया करे गए है। उन्हें उच्चतम माध्यमिक स्कूल के लयिका मन ला 445 रुपया के जगह 550 रुपया देवर पड़ी। विभाग के मुताबिक नवा दर अवैया शिक्षा सत्र ले लागू हो जाही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहिन है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार ले उर्वरक लेना मुश्किल हो जाते। ओमन रासायनिक उर्वरक मा निर्भरता कमती करे बर जैविक खेती मा ज्यादा जोर दीन। श्री चौहान कहिन कि वैश्विक चुनौती के बादो केंद्र सरकार किसान मन पर पर्याप्त खातु आपूर्ति सुनिश्चित करे के प्रयास करत है। ओमन छूट वाले खातु के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दीन और राज्य ले नकली और घटिया किस्म के खातु के आपूर्ति करैया मन के खिलाफ कड़ा कार्रवाई करे बर किहिन है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक के अगुवाई करीन, जेमा अवैया नीट UG के फेर ले परीक्षा के तैयारी ला देखीन। परीक्षा के आयोजन में ईमानदारी और साफगोई के जरूरत में जोर देवा श्री प्रधान निर्देश दीन कि पाछू परीक्षा में जौन कमी रहीस तेला दुरियाए जाए। बैठक के बेरा सबो राज्य के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक के संग मिलके बैठक करे के निर्देश देगीस, जेखर ले परीक्षा के व्यवस्था बने ढंग ले होवे। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंक में आधुनिक बैंकिंग सुविधा के बढ़फार करे जाही। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी संस्था महादेव कावरे रायपुर में समीक्षा बैठक करीन। बैठक में राज्य के 12 ठीन शहरी सहकारी बैंक के प्रतिनिधि संग्रीन सहकारिता आयुक्त बैंक ला मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसन सुविधा शुरू करे के निर्देश दिन है। एकर ले प्रदेश के सहकारी बैंक में डिजिटल सेवा ला बढ़ावा मिली और लोगन ला बने सुविधा मिल सकी। भारतीय सेना कोती ले अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पद पर हुई परीक्षा के परिणाम घोषित कर दे गए है। ये परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 जिन उम्मीदवार मन ला सफलता मिले है। परीक्षा के नतीजा भारतीय सेना के वेबसाइट में हवे और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड में घलो देखे जा सकत है। पास होए उम्मीदवार मल्ला काली 21 मई के बिहनिया 9 बजे सबो दस्तावेज संग नवा रायपुर के सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होए बर पढ़ी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था। अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। राज्यपाल रमन डेका आज लोकभवन में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ले भेंट करीन। ये दौरान राज्य में पर्यटन वाले जगह के बढ़वार और पर्यटक मन पर बने सुविधा लेके गोट बात हुईस। राज्यपाल चित्रकूट जलप्रपात, गंगरेल बांध और बूका जलाशय में पर्यटन सुविधा के बढ़वार में जोर दीन। उमन कहिन की ये जगह में पर्यटक मन पर जरूरी सुविधा के बढ़वार करे जाए, संगे संग वरिष्ठ नागरिक मन पर ज्यादा सुविधा दे जाए। उन्हें कोरबा जिला के बुका जलाशय में क्रूज सेवा शुरू करे के सुझाव दीन। राज्यपाल ने आज लोकभवन में प्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजनबाई के परिवार वाले मन भेंट करीन। ये दौरान राज्यपाल तीजनबाई के हाल चाल जानीन और उखर जल्दी स्वस्थ होए के कामना करीन। तीजनबाई के परिवार वाले मन बतैन कि तीजनबाई के सम्मान में अवैया 7 अगस्त के एक समारोह राखे जाते, जेमा राज्यपाल ला मुख्य माई पहुना के रूप में शामिल होए बर न्योता दीन।
दवई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध में आने आने केमिस्ट संगठन मन ह आज देश भर में हड़ताल के आह्वान में छत्तीसगढ़ समेत देश भर में दवई दुकान बंद राखीन। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता संघ के बैनर में दवई व्यापारी मन ह रैली निकालीन। व्यापारी मन ह आरोप लगेन कि बिना जांच पड़ताल के ऑनलाइन दवई बेचे जाते जेखर ले मरीज मन के सुरक्षा ला खतरा हो सके।

0: थे। उहे छोटे दवई दुकान के व्यापार में घलो असर हुआ थे। इस बीच जिला प्रशासन ने सरकारी अस्पताल, जनऔषधि केंद्र और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर में दवई के उपलब्धता सुनिश्चित करी है। आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के मौका में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र कोती ले वॉकथन राखे गीस। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, अंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक संग्रीन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल है बदलत बेरा में रेडियो के पहुंच और ओखर महत्ता के संबंध में अपन विचार साझा करीन। उन्हें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह कहिन कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र ले जुड़े है और लोगन ला सरलग जोड़ा थे। एति आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर के कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन रेडियो के महत्व और वॉकथन के संबंध में जानकारी दीन। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 ले 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव के आयोजन करे जाही। एमा आमा के 250 ले ज़्यादा किस्म दिखाए जाही। संगे संग आमा के आने आने किस्म के प्रतियोगिता होही, जेमा छत्तीसगढ़ और आने राज्य के आम उत्पादक संघरी। ये मौका में आमा ले बने कतकोन व्यंजन के प्रदर्शनी लगाई जाही। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश मुफ्त में है। ये महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन और प्रकृति की ओर सोसाइटी कोती ले जुर मिल के आयोजित करे जाते। अब थोरकुन समाचार सारमा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE है कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा के जांचे उत्तर पुस्तिका के स्कैन करेंगे। प्रति बार अर्जी दे के आखिरी तारीख ला एक दिन बढ़ा दे है। उम्मीदवार अब 23 मई तक अर्जी दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल है राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दे है। उम्मीदवार कोनो प्रश्न या ओखर आदर्श उत्तर में अपन दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकत हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रमुख अमित बघेल के जमानत याचिका खारिज कर दे है। बलौदा बाजार आगजनी कांड में गिरफ्तार होने के बाद श्री बघेल हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर करे रही। धमतरी जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिहावा चौक तीर पाछू रतिया गश्त के बेरा चौपाइया गाड़ी के चपेट में आए ले एक प्रधान आरक्षक के मौत हो गए। उन्हें एक नगर सैनिक गंभीर रूप ले घायल हो गए है। और दुर्ग में 22 मई के जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप लगाए जाही। छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में होवैया ये आयोजन में 10वीं ले लेके इंजीनियरिंग, नर्सिंग और मेडिकल योग्यता वाले उम्मीदवार मल्ला रोजगार के मौका मिलही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। उप मुख्यमंत्री है आज रायपुर में डायल 112 फेज 2 नेक्स्ट जनरेशन सेवा के करीन शुभारंभ। 54 नवा इमरजेंसी गाड़ी ला हरियर झंडी देखा के करें रवाना। स्कूल शिक्षा विभाग अवैया शिक्षा सत्र पर सरकारी स्कूल मन मा स्थानीय शुल्क बढ़ाए के करे है आदेश जारी। और दवाई के ऑनलाइन बिक्री के विरोध मा आज छत्तीसगढ़ समेत देश भर मा दवाई व्यापारी मन दुकान राखीन बंद। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन ये सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी
3: मीडियम वेव और FM बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हो रहे हैं। आइए सांझ की इस गोधुली बेला का स्वागत करते हैं कुछ लोक गीतों से। सुनते हैं कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देवी गीत के साथ। आवाज है सरगुजिया लोकगायक चोहरा राम राजवाड़े एवं साथी।

देवी गीत के बाद कार्यक्रम गोधली में अब लीजिए सुनिए बिरझिया कर्मा गीत सादरी लोक गायक बलराम राम एवं साथियों की आवाज में।

सादरी लोक गायक बलराम एवं साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे बिरजिया कर्मा गीत। इसी के साथ कार्यक्रम गोधुली समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्त्री 2 फिल्म के इस गीत के साथ। आवाज है अमिताभ भट्टाचार्य, शिल्पा राव एवं सचिन जिगर की।

कार्यक्रम माधुरी में आइए सुनते हैं अगला गीत मोहम्मद फैज की आवाज में। फिल्म का नाम है मिस्टर एंड मिसेस माही।

कार्यक्रम माधुरी की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं लुक्का छिपी फिल्म का ये गीत। आवाज है अखिल एवं ध्वनि भानुशाली की, संगीत निर्देशन है अभिजीत बघानी का और गीतकार हैं कुणाल वर्मा।

अखिल और ध्वनि भानुशाली की आवाज में लुका छिपी फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम माधुरी समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हिंदी में, जिसे आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: इसका पूरा लाभ उठा सकते।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। घर सूर्य घर।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी

0: प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
3: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
3: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
4: आकाशवाणी से।
1: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
4: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
3: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
6: यह आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के कई जिलों में आज मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने डायल 112 फेज टू नेक्स्ट जनरेशन सेवा का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने रायपुर पुलिस परेड ग्राउंड में इस सेवा का शुभारंभ करते हुए 54 नए इमरजेंसी रिस्पांस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि सभी वाहन अत्याधुनिक GPS सिस्टम, स्मार्ट कंट्रोल मॉनिटरिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन तकनीक से लैस है।
7: उस गाड़ी में GPS सिस्टम भी है, कमांड के आने पर लोकेशन साथ में आएगा और उसमें एक मोबाइल भी उस गाड़ियों के साथ है, उसमें अनेक प्रकार के कैमरे लगे हुए हैं। तो इन सारी बातों के साथ ये इक्विप्ड नई गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां निकल करके आज से ही 112 डायल करने पर रिस्पांस टाइम के समय में ही आपके पास पहुंच जाए, इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत हुई है।
6: वहीं वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने रायगढ़ के पुराना पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में 16 आधुनिक आपातकालीन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके अलावा राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने भी बलौदा बाजार स्थित रक्षित केंद्र परिसर से डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाई। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। उन्होंने रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने के लिए जैविक खेती पर अधिक जोर देने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने सब्सिडी वाले उर्वरकों के दुरुपयोग के खिलाफ चेतावनी दी और राज्यों से नकली और घटिया गुणवत्ता वाले उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। यह नई दरें सरकारी स्कूलों के साथ साथ स्वामी आत्मानंद स्कूलों और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में भी लागू होंगी। जारी आदेश के अनुसार हाई स्कूल स्तर के विद्यार्थियों का स्थानीय शुल्क अब 410 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। वहीं

0: उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को अब 445 रुपये की जगह 550 रुपये शुल्क देना होगा। विभाग के अनुसार नई शुल्क दरें आगामी शिक्षा सत्र से लागू की जाएंगी। भारतीय सेना द्वारा अग्निवीर भर्ती के तहत अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इस परीक्षा में छत्तीसगढ़ के 20 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। परीक्षा परिणाम भारतीय सेना की वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर उपलब्ध है और सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित किया गया है। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को कल 21 मई को सुबह 9 बजे सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ रायपुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय में उपस्थित होना होगा। प्रारंभिक निर्देशों के लिए उपस्थित होना होगा। गौरतलब है कि सेना भर्ती कार्यालय द्वारा अग्निवीर लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए यह परीक्षा बीते जनवरी माह में धमतरी में आयोजित की गई थी। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में विभिन्न केमिस्ट संगठनों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल के आह्वान पर छत्तीसगढ़ सहित देशभर में दवा दुकानें बंद रखीं। बिलासपुर में जिला औषधि विक्रेता के संघ के बैनर तले दवा व्यापारियों ने रैली निकाली। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि बिना जाँच पड़ताल के ऑनलाइन दवाएं बेची जा रही है, जिससे मरीजों की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है। वहीं छोटी दवा दुकानों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस बीच विभिन्न जिलों के प्रशासन ने आज सरकारी अस्पतालों, जन औषधि और धन्वंतरी मेडिकल स्टोर के माध्यम से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिक सहकारी बैंकों में आधुनिक बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में सहकारिता आयुक्त और पंजीयक सहकारी सेवाएं संस्थाएं महादेव कावरे ने रायपुर में समीक्षा बैठक ली। बैठक में राज्य के 12 शहरी सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सहकारिता आयुक्त ने बैंकों को मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान प्रणाली जैसी सुविधाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बैंकों से तकनीकी सहायता के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने को भी कहा। इस पहल से प्रदेश के सहकारी बैंकों में डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा और ग्राहकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज बिलासपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, उद्घोषक, कंपियर, श्रोता और शहर के नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बदलते समय में रेडियो की पहुँच और उसके महत्व के संबंध में अपने विचार साझा किए।
1: लोगों के दिल से किस तरह से कनेक्ट हुआ जा सकता है, ये आकाशवाणी ने हम सब लोगों को बताया है। और हम लोग पब्लिक सर्विस में है, हमारी लोगों की क्या जरूरत है, लोगों के कल्याण के लिए क्या चीज़ें बढ़िया है, लोगों के सुखी होने के लिए क्या बढ़िया है, जिसका मोटो ही इतना बढ़िया हो, भोजन सुखा है, भोजन हिताय, तो वो तो अच्छे काम करेंगे ही।
0: वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कहा कि रेडियो जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा है और लोगों को लगातार जोड़ रहा है।
2: आज 90 साल होने जा रहा है। हर श्रोता मनोरंजन के लिए सिर्फ आकाशवाणी नहीं सुनता है, बल्कि अपने समग्र विकास के लिए भी जो योगदान होता है अपने जीवन के माध्यमों का, उसी तरीके से आकाशवाणी हमारे जीवन में उपयोगी है। प्रामाणिकता, मौलिकता इस कार्यक्रमों में रहती है। इस जिले में लोगों को, कम्युनिटी को जोड़ने के लिए कि पुलिस और पब्लिक किस तरीके से समाज में अपराध को कम कर सकती है, उसका भी एक माध्यम आकाशवाणी के माध्यम से हम लोग बात करते रहे हैं।
0: वहीं आकाशवाणी केंद्र बिलासपुर की कार्यक्रम प्रमुख डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन ने रेडियो के महत्व के बारे में जानकारी दी।
3: कैसी स्थिति रही होगी देश की स्वतंत्रता के बाद, चाहे हरित क्रांति की बात हो, चाहे श्वेत क्रांति की बात हो, चाहे जन जन तक फिल्मी गीत पहुंचाने की बात हो, शास्त्रीय संगीत को सहेजने की बात हो, या जो भी हमारी कला संस्कृति और जो सामयिक चीजें, चाहे समाचारों की बात हो, रेडियो ही एक माध्यम रहा जो उस समय भारत को एक दिशा दे पाया। लेकिन आज जब आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, तो रेडियो भी आज आपके साथ न्यूज ऑन एयर ऐप के साथ आपके हाथ में है।
0: वक्तन आज सुबह आकाशवाणी परिसर से शुरू हुआ, जो नूतन चौक सीपत चौक होते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय कर वापस आकाशवाणी परिसर में संपन्न हुआ। रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर में 29 से 31 मई तक राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में आम की 250 से अधिक किस्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान आम की विभिन्न किस्मों की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी।

होंगी जिसमें छत्तीसगढ़ और विभिन्न राज्यों के आम उत्पादक शामिल होंगे। इस अवसर पर आम से बने विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। आम महोत्सव में पंजीयन और प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। यह महोत्सव इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय उद्यानिकी और प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रवाती घेरा पश्चिम बिहार और उसके आसपास बना हुआ है। वहीं एक द्रोणिका उत्तर प्रदेश से उत्तर तेलंगाना तक विस्तारित है। साथ ही प्रदेश में गर्म और शुष्क हवाएं आ रही है। इसके असर कल मध्य छत्तीसगढ़ में ग्रीष्म लहर जैसी स्थिति बने रहने और एक दो स्थानों पर ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राष्ट्रीय साधन सह प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा के आदर्श उत्तर जारी कर दिए हैं। अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उसके आदर्श उत्तर पर अपना दावा आपत्ति 25 मई तक माध्यमिक शिक्षा मंडल कार्यालय रायपुर में जमा करा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वेटलैंड संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूत बनाने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी और दुर्ग स्थित महात्मा गांधी उद्यानिकी तथा वानिकी विश्वविद्यालय के बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। धमतरी जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में सिहावा चौक के पास बीती रात गश्त के दौरान चारपहिया वाहन की चपेट में आने से एक प्रधान आरक्षक की मौत हो गई, वहीं एक नगर सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया। और दुर्ग स्थित छत्रपति शिवाजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 22 मई को जिला स्तरीय रोजगार मेला और प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के विभिन्न जिलों में आज डायल 112 सेवा का शुभारंभ किया गया। मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी शिक्षा सत्र के लिए स्थानीय शुल्क में बढ़ोतरी की। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री के विरोध में केमिस्ट संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज छत्तीसगढ़ में भी दिखा असर। और अग्निवीर भर्ती के तहत लिपिक और स्टोर कीपर टेक्निकल पदों के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बज रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पूर्व आइए आपको कल यानी गुरुवार के कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षणों से रूबरू करा दें।

कल रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम सूर्यामिनी। गायन स्वर होगा पंडित मल्लिकार्जुन मंसूर का। रात्रि 9:30 पर वक्त होगा हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज का। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। रात्रि 9:15 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश आप सुन सकेंगे रात्रि 8 बजे। शाम 7:20 पर वक्त होगा हमारे ग्रामीण श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का। शाम 7:05 पर आप सुन सकेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनी गंधा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर।

लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम गोधूली आप सुन सकेंगे शाम 6:20 पर। हमारे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमारे हाथी हमार गोट आप सुन सकेंगे शाम 5:00। कार्यक्रम भजन संध्या एवं कार्यक्रम आराधना का प्रसारण समय होगा प्रातः 6:05 एवं शाम 5:05 पर।

गैर फिल्मी गीतों व गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा आप सुन सकेंगे दोपहर 2:30 पर। हमारी महिला श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन का प्रसारण समय होगा 2:10 पर। खेती की बात एवं खेती की बात का पुनः प्रसारण आप सुन सकेंगे प्रातः 6:45 एवं 2:05 पर। शीर्षक गीतों पर आधारित कार्यक्रम चयन आप सुन सकेंगे 2:12:30 पर। एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग का प्रसारण समय होगा 12:00। हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद आप सुन सकेंगे दिन के 11:05 पर।

बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन आप सुन सकेंगे प्रातः 9 बजे। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्म संगीत का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का प्रसारण समय होगा प्रातः 7:30 पर। तो ये थे कल यानी गुरुवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण। और आज के शेष कार्यक्रमों में आपके लिए खास है रात्रि 10:30 पर हमारे श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन, रात्रि 10 बजे हमारे श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज और रात्रि 8 बजे सोशल मीडिया की गूंज कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। और शाम 7:20 पर वक्त होगा हमारे किसान श्रोताओं के पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल का। और अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा में अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में ये गजल। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल।

मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज में आपने अभी सुना ये गजल। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा बस यहीं तक। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:20 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल सुनने वाला जम किसान भैया बहनी मंडला तीजई कर जय जोहार, राम राम और स्वागत हमारे कार्यक्रम में। भैया बहनी हूँ, आज है 20 मई और आज कर दिन हर बछर हमन विश्व मधुमक्खी दिवस ला मनाथे। भैया बहनी हो, एकर उद्देश्य पारिस्थितिक तंत्र में मधुमक्खी और अन्य परागण कर महत्वपूर्ण भूमिका कर प्रति लोग मनला जागरूक करना है। देखिए चौपाल कर जो हमारे श्रोता मन है वो मन जानते हैं कि मधुमक्खी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ बात है भैया बहनी हो, जब ले कोरोना का दौर आईस ना तब ले तो भाई बगरा मनसे मन आओ मधु शहद कर प्रति एकदम मन कर जो विचार है और बहुत एकदम बदल गई। जैसे पहले भी सब मधु क्षमा करिए सब जन शहद कर प्रयोग करत रहे, लेकिन जब आयुष

मंत्रालय ये बात कर ला बताइस कि केकस शहद हमर इम्यून सिस्टम ला हमर प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते। तो सब मन से मन जानिन कि भाई कितना भाई मधु शहद कर जो हमर जीवन में कितना भाई महत्वपूर्ण विशेषता है स्थान है। और उगर अलावा लगातार मांग भी बाजार में बढ़ल गईस। अब एक देखब तो भारत कर शहद कर मांग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होते। देखिए जब संयुक्त राष्ट्र वर्ष इला घोषित करीस कि 2026 जो आज कर थीम हुई बी टुगेदर फॉर पीपल एंड द अदर प्लैनेट, माने लोग मन और ग्रह मन खातिर एक साथ आए। सीधा सा बात है भैया बहनियों कि ये प्रकृति ला हमन ला प्रेम कर दृष्टि से देखना है। अब माने हमर और हमर प्रकृति कर बीच, हमर और हमर पर्यावरण कर बीच गहरा जुड़ाव, गहरा लगाव और प्रेम कर भावना हो। मधुमक्खी का संरक्षण केवल शहद उत्पादन पर नहीं बल्कि हमर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की कृषि अर्थव्यवस्था और प्राकृतिक कर संतुलन बनाए रखे पर बहुत जरूरी है। अब जो किसान भैया बहनी मन जानते हैं कि कृषि उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में कितना एकर महत्व है। मधुमक्खी दुनिया का सबसे कुशल परागण कर, एक क्षेत्र में जहाँ देखिया कि कोई चीज कर अगर सबले बड़ा परागण कर कोई काम करता है एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र में तो वह मधुमक्खिया है। कृषि कर क्षेत्र में एमन कर योगदान में फसल पैदावार वृद्धि होते। दुनिया में लगभग 75% खाद्य फसल और 35% कृषि भूमि आंशिक और पूर्ण रूप से परागण में निर्भर करते। मधुमक्खी मन जो परागण करते उनमें फल सब्जी और बीजा कर आकार में भी सुधार होते और फसल कर गुणवत्ता भी बेहतर होते। हमार कथी देखिया तो भाई हमार कृषि अनुसंधान केंद्र में हमार जो विशेषज्ञ मना है इतना बढ़िया शहद कर उत्पादन करते हैं, रिकिम रिकिम कर शहद। अभी देखी बेराइस है, लीची कर मौसम है, लीची कर शहद कर उत्पादन हुई। आओ हमार मेन पार्ट कथी टाऊ कर खेती होते, टाऊ कर शहद कर उत्पादन होते और इतना बढ़िया उच्चतम क्वालिटी कर शहद और स्वाद एकदम बढ़िया। और ओमे जो कदी है कि गुणवत्ता है, गुण है वो भी बहुत बढ़िया किस्म कर है। कहे कि एकदम वैज्ञानिक मन अनुसंधान करके समझ के कि केकस हमन ला मधुमक्खी कर पालन करना है, केकस किसान भैया बहनी मन ला एक बात ला पहुँचाना है कि उमन भी बगरा एकर खेती कर सकें। अब देखिए पोषण सुरक्षा में भी जैसे होगी तो बादाम सेब बेरी खीरा दलहन और जैसा मन पौष्टिक फसल पूरा तरह से मधुमक्खी मन पर निर्भर करते हैं। इमें बिना मानव आहार में विटामिन और खनिज कर भारी कमी आ सकता है। अब देखिए भारत सरकार जो शुरू करी से है राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, एक तहत वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन ला बढ़ावा देके किसान मनकर आय ला दुगना करे कर प्रयास करते हैं। जैसे मैं कहें कि भाई हमर कति भी जो कृषि अनुसंधान केंद्र है चाहे कृषि महाविद्यालय है इमें विशेषज्ञ मन बगरा से बगरा सुंदर से सुंदर और एकदम गुणवत्तापूर्वक शहद कर उत्पादन करते हैं और भाई वो किसान मन ला भी प्रोत्साहित करते हैं कि केकस ओमे ओमे क्षेत्र में आए और उत्पादन करें अधिक से अधिक। मधुमक्खी पृथ्वी कर संपूर्ण फ्लोरा और माने वनस्पति और जीवला जीवंता प्रदान करते। दुनिया में लगभग 90% तक जंगली फूलदार पौध प्रजनन खातिर परागण पे निर्भर करते। परागण कर कारण जंगल में फल बीज पैदा होते और पक्षी और अन्य शाकाहार जीव एक मुख्य भोजन होते। स्वास्थ्य जंगल पेड़ पौधा कर विकास और कार्बन अवशोषण बढ़ते, मृदा माने मिट्टी कर कटाव रुकते और जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ला भी कम करे में मदद करते। अब देखिए ये तो होगी एकर माने लाभ ही लाभ होगी। लेकिन मधुमक्खी जो पालन करते किसान मन मन जानते हैं कि मधुमक्खी मन कर सामने भी कितना चुनौती आ गई है। वर्तमान में मानव मन कर अत्यधिक गतिविधि कर कारण मधुमक्खी कर आबादी तेजी से घटल जाता है। अब जो कीटनाशक का अंधाधुंध उपयोग होता है ये भी रासायनिक कीटनाशक में एग्रोकेमिकल मधुमक्खी मन के तंत्रिका तंत्र का नुकसान पहुंचाता है और एकर से बहुत अधिक मधुमक्खी मन का ह्रास होता है। आवास भी तेजी से नष्ट होता है। शहरीकरण जो होता है वन मन कर कटाई होता है कर कारण प्राकृतिक छत और भोजन जो मन कर वो फूले खत्म होता है पूरा तरह से। जलवायु परिवर्तन
होता है, तापमान बढ़ाता है और मौसम चक्र जो बदलता है लगातार।

पौधा के फूले कर समय बदलता है, मधुमक्खी बनकर भोजन मिलने में कठिनाई भी देखल जाता है। अब आज कर दिन में इमन कर संरक्षण खातिर का जरूरी कदम है, इला भी हमला जानना बेहद जरूरी है। अपन स्तर में मधुमक्खी बचाए कर योगदान तो सब मल्ला देना ही चाहिए। कहे कि देखी शहद एक अमृत तुल्य भोजन तो है ही है, एकर अलावा मधुमक्खी भी हमर जो इकोसिस्टम है, हमर प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है, एकर में मुख्य भूमिका निभाते। देसी और फूलदार पौधा लगाना चाहिए। अपन बगीचा चाहे खेत कर आसपास गेंदा, सूरजमुखी, सरसों और तुलसी जैसा पौधा लगाना चाहिए। कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो रासायनिक दवाओं के स्थान में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में कीट नियंत्रण विधि अपनाना चाहिए, ताकि जो हमर मधुमक्खी मन है उमन कर जीवन में कोई परेशानी मत आए, उमन कर जीवन प्रभावित मत होए। गर्मी के दिन में बगीचा में एक उथला बर्तन और साफ पानी में कुछ जैसे कुछ कंकड़ पत्थर मन चटिक डाल के रख देना चाहिए, जिसमें मधुमक्खी मन मत डूबे। और जो स्थानीय मधुमक्खी पालक हैं किसान मन, उमन ला हमेशा उमन कर समर्थन करना चाहिए, हमेशा उमन ला प्रोत्साहित करना चाहिए। और जितना हो सके स्थानीय कृषक से शहद होगी चाहे मोम होगी एकर खरीदी करना चाहिए। और साथ ही साथ अपन आसपास कर क्षेत्र में किसान मन ला भी प्रोत्साहित करना चाहिए। हमार कार्यक्रम कर द्वारा देखी चाहे किसान वाणी होगी, हमारे एक्सपर्ट भी आते हैं, पाछू हफ्ता रोड़ी मन सुने भी हुई है कि केकस हमार जो विशेषज्ञ मन है जिनमें मुख्य रूप से डॉक्टर भगत हैं आते हैं और इतना बढ़िया जानकारी देते हैं किसान मन ला कि सब तरह कर जानकारी कि केकस उमन ला मधुमक्खी पालन करना है, केकस सहायता सरकार को मदद देता है और केकस उमन सहयोग देकर किसान मन ला प्रोत्साहित कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन में सहयोग कर सकते हैं। तो जितना भी हमर क्षेत्र कर मधुमक्खी पालक किसान मन है उमल्ला यही प्रोत्साहन है, यही उमल्ला सहयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ जो किसान मधुमक्खी पालन नहीं करते हैं लेकिन जानते हैं सोचते हैं मधुमक्खी पालन करे खातिर ओमन बरे प्रक्रिया कर पूरा जानकारी देना चाहिए और सरकारी सब्सिडी और प्रशिक्षण का योजना कर भी जानकारी लगातार ओमला देत रहना चाहिए। हमारे माध्यम से भी मिलते रेडियो कर माध्यम से लगातार मिलते। तो किसान भैया बहनी हो आज कर दिन में यही निवेदन यही आशा कर साथ कि भाई देखी मधुमक्खी जितना शहद हमारे जीवन खातिर बढ़िया है अच्छा है और शुद्धतम रूप है शहद एक तरह से देखब तो भोजन कर, और मधुमक्खी कर भी जीवन उतना ही महत्वपूर्ण है। तो मधुमक्खी पालक किसान भैया बहनी मन आज सबला बधाई देता ही मधुमक्खी जो संरक्षण करते हैं और मधुमक्खी दिवस कर दिन वगरा किसान मन ला भी आवाहन करते ही कि शहद उत्पादन करी मधुमक्खी पालन करी। आज बुध कर दिन है, आज कर दिन हमर जो महिला कृषक बहनी मन है उमन ला समर्पित रही और कोशिश करती कि भाई बहनी मन जग गोड बात भी हमन करी। अब देखिए इधर अलावा जो आज कर जैसे मैं कहता हूँ आज हमन बुध कर दिन है तो एक चीज जो विषय हमारे बहनी मन खातिर जरूर ले जाता हूँ सखी वन स्टॉप सेंटर। देखिए वन स्टॉप सखी सेंटर हमन हमेशा सुनती लेकिन ये योजना ला कैसे समझना है इला कैसे ये योजना से हम सहयोग ले सकते इला जानना जरूरी है। योजना भारत सरकार कर महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू करल गई एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। एकर मुख्य उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिला मनला एक ही छत कर नीचे विभिन्न प्रकार कर सहायता प्रदान करल जाते। अब देखिए योजना में का विशेषता है का सुविधा प्रदान करल जाते एला भी समझना जरूरी है। एक केंद्र ओ महिला मनकर मदद कर बनाए गए से है जो सार्वजनिक चाहे निजी स्थान में परिवार कर भीतर चाहे कार्यस्थल में कोई भी प्रकार कर हिंसा जैसे घरेलू हिंसा होगी, यौन उत्पीड़न होगी, दहेज उत्पीड़न होगी एकर सामना करता है। अब देखिए एक ही छत कर नीचे मिले वाला जो सुविधा है इमें ये योजना का सबसे बड़ा खूबी ये है कि पीड़ित महिला ला अलग अलग दफ्तर का चक्कर नहीं काटना पड़ते, यहाँ ओला कई तरह का सेवा मिल जाते जैसे आपातकालीन सहायता और बचाव, संकट कर समय महिला ला सुरक्षित स्थान पहुंचाना, चिकित्सीय सहायता देना, घायल होकर स्थिति में तत्काल अस्पताल पहुंचाना चाहे प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना, इकर अलावा कानूनी सहायता FIR दर्ज कराए में मदद करना और कानूनी सलाह देना। जब बहनी मन लगातार

जिससे पीड़ित रहते हैं, तो उन्होंने कहा काउंसलिंग कर, माने वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परामर्श कर बेहद आवश्यकता होते। हिंसा कर कारण हुए वाला मानसिक तनाव से उबरे खातिर पेशेवर परामर्श जो है ओला देहल जाते और सुनिश्चित करल जाते कि महिला केकरो कसकर तनाव से उबर जाए, बाहर आ जाए। पीड़ित महिला और उनकर जो बच्चा मन है, जैसे लड़की का उम्र कर सीमा नहीं है, लेकिन लड़का खातिर माने बाबू खातिर आमतौर में 12 बच्चर तक कर लिए जो ये है 5 दिन तक रुके कर सुरक्षित व्यवस्था

0: जैसे लड़की का उम्र कर सीमा नहीं है, लेकिन लड़का खातिर माने बाबू खातिर आमतौर में 12 बछर तक कर लिए जो है 5 दिन तक रुके कर सुरक्षित व्यवस्थाएं में सखी वन स्टॉप सेंटर में करल जाते। कोई भी जाति, धर्म, शिक्षा, वैवाहिक स्थिति या क्षेत्र कर सभी महिला 18 बछर से कम उम्र की बालिका सहित यहाँ मदद ले सकते हैं। अब 18 वर्ष से कम उम्र कर बालिका मन कर मामला में इसे जो नियम है और पॉक्सो अधिनियम कर किशोर न्यायालय अधिनियम कर साथ जोड़ करे में सहायता दिया जाते। कैसे सहायता प्राप्त कर सकते हैं? सीधे केंद्र जाकर भी करल जा सकता है। कोई भी पीड़ित महिला स्वयं या ओकर प्रतिनिधि केंद्र में जा सकता है। महिला हेल्पलाइन जो है 1-8-1 हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके भी सहायता मांग सकते हैं, जो रोड बनकर नजदीकी वन स्टॉप सेंटर से ओला जोड़ देही। ये योजना महिला मनला सशक्त बनाए बर, उमनला न्याय दिलाए बर और कई तरह कर निर्भयता कर का जो निर्भय होकर जीवन यापन कर सके एकर माध्यम से ओला संचालित करल जाते। और भारत का लगभग हर जिला में कम से कम एक सखी सेंटर का स्थापना करल गई है। तो बहनियों, यही बात है कि कोई भी योजना ला हमन ला समझना जानना जरूरी है, ताकि हमन वो योजना का लाभ ले सकी और जीवन में अपन जीवन में सुरक्षित रह सकी, तनाव मुक्त रह सकी और निर्भय होकर रह सकी। देखिए, हमने एक लोकगीत सुना। अब ये लोकगीत सुनते ही स्वर देहने गुलाब सिंह पैकरा, तो ये ला सुनते ही फिर आगो कोट कर।
1: तोरी खोपा मा चंदैनी गोंदा फूल।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
2: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
3: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
4: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
3: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
4: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
3: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
5: प्रधानमंत्री किसान मानधन।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जनसेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान भैया बहनियों, देखिए संकर नेपियर घास जो नेपियर बाजरा संकर है एक बहुवर्षीय हरा चारा फसल है। दूध देने वाला पशुमन खातिर बेहद पौष्टिक अधिक उत्पादन देने वाला चारा मानल जाते है। एक बार लगाए में 3-4 बछर तक लगातार चारा प्राप्त हो सकता है। प्रमुख किस्म देखब तो CO3, CO4, CO5, DHN6 सुपर नेपियर प्रमुख है। अब गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होते, 25 से 35 डिग्री तापमान बहुत अच्छा मानल जाते, साथ ही साथ अच्छा जल निकासी वाला दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम मानल जाते। माटी का पीएच मान 5.5 से 7.5 तक उपयुक्त होते। किसान भाई बहनी मन, 2 से 3 बार खेत कर गहरा जुताई करके खेत लब भुरभुरा और समतल करके अंतिम जुताई में गोबर खाद मिलाए के और वर्षा प्रारंभ होए से समय माने जून जुलाई कर महीना में और सिंचाई सुविधा हो तो फरवरी मार्च में भी ले सकते हैं। तो फरवरी मार्च

महीना बीत गई, लेकिन अब जून जुलाई मेला तैयार कर सकते हैं। संपियर शंकर ने पियर बीज ले नहीं बल्कि तना कटिंग और जड़ से लगाए जाते 75 सेंटीमीटर × 60 सेंटीमीटर की दूरी और कतार से कतार 75 सेंटीमीटर लेना चाहिए, पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 3500 से 4400 लगातार कटिंग इमें लेना चाहिए। 15 से 20 टन सड़ल गोबर कर खाद प्रति हेक्टेयर के रूप में लेना चाहिए। एनपीके एन अनुपात पी अनुपात के माने 120:60:40 कर किलो अनुपात में लेना चाहिए। माने नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास कर 120:60:40 किलोग्राम कर मात्रा लेना चाहिए। नाइट्रोजन ला 4 से 5 भाग में कटाई कर बाद देना लाभकारी रहते। गर्मी में 7 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई, सर्दी में 15 से 20 दिन में सिंचाई और जल भराव नहीं होने देना चाहिए। प्रारंभिक 40 से 45 दिन में निराई अवश्य करना चाहिए और प्रत्येक कटाई कर बाद गुड़ाई जरूर करना चाहिए। पहला कटाई रोपण से 60 से 75 दिन बाद और दूसरा कटाई कर बाद 40 से 45 दिन में ले सकते हैं और 5 से 7 कटाई प्रतिवर्ष में संभव हो सकता है। तो किसान भैया बहनियों, देखिए बढ़िया प्रोटीन का उत्पादन होते में पशु मन पर बहुत अच्छा है, दूध उत्पादन बढ़ते और साइलेज बनाए में भी यह उपयुक्त होते। तो जरूर जो हमारे पशुपालक मन है ये नेपियर घास ला लगा के और बढ़िया चारा पा सकते हैं। अब आज सफलता कर कहानी में जो हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एन के मिश्रा, किस्नो भैया जब गोट बात हुई से है गर्मी में कद्दू वर्गी सब्जी कर प्रबंधन कैसे करना, ये भी समय गोट हुई से ले गेला सुनल जाए।

0: आज यदि देखी मैं भेंट पा रहे हूँ डॉक्टर एन के मिश्रा जी ले ता देखी भेंट पा रहे नहीं तो मैं कहन कि रे लिखे गर्मी भी आएगी। अभी तो गर्मी कर मौसम में नहीं चटिक सब्जी मन में रोग और कीड़वा मन ढेरे लग जाते हैं तो मैं कहन तकर बारे में वेट करते हैं। और यदि हमारे डॉक्टर एन के मिश्रा जी जो हैं नहीं सहायक प्राध्यापक कहाँ हैं पौध रोग विज्ञान स्वर्गीय रामचंद्र सिंह देव कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र कोरिया कर ता मैं गोइट ला शुरू करता हूँ। सबले पहले यदि डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूँ।
1: धन्यवाद।
0: अब देखिए भाई तो गर्मी है शुरू होगी हमारे किसान भाई मन चटिक फिक्र आ जाते हैं यदि गर्मी कर दिन में सब्जी मन में रोग लग जाए था तो पहले तो मैं जानक चाहता हूँ नहीं कि यदि गर्मी कर यदि मौसम में हमारे काय सब्जी लगाए सकत ही अब तकर में रोग और कीड़वा मन लग जाते हैं
1: जी।
0: तो कैसे हम उनका प्रबंधन करिए।
1: रोग ग्रीष्मकालीन में ज़्यादातर जो सब्जी लगाई है कुकुरबिटेसी फैमिली के जो लता वाली सब्जी होती है उसमें लौकी करेला ककड़ी खीरा और भिंडी नेनुआ ये सब लगाते हैं तो उसमें ज़्यादातर कीड़े और बीमारी का प्रकोप रहता है और उसमें भी कीड़े ज़्यादा लगते हैं बीमारी कम लगते हैं। बीमारी जो भी लगते हैं वो मृदा में जो जीवित रहते हैं उन्हीं के द्वारा लगता है क्योंकि बाहर का जो वातावरण होता है गर्म होता है तो हवा के द्वारा बीमारी आने का चांसेस कम रहता है। और उसमें बीमारी जो लगती है उसमें एक सफ़ेद चूड़ील आस्ता रोग लगता है जिसको पाउडरी मिल्ड अंग्रेजी में बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: उसके बाद एक एंथ्राक्नोज बोलते हैं। उसके बाद लगता है राटिंग लगता है व्यक्ति जीवाणुओं से होता है तो जीवाणु द्वारा राटिंग जो होता है वो फलों में लगता है और जड़ में भी लगता है।
0: अच्छा।
1: और एक होता है उसमें नर्सरी की बीमारी लगता है छोटे पौधे में जहाँ नमी ज़्यादा रहती है तो वो डैम्पिंग ऑफ लगता है छोटे पौधे मतलब ज़्यादा जहाँ नमी रहता है उसके कारण से वो मर जाते हैं। तो ये जो जितने भी फफूद हैं चाहे जीवाणु हैं ये सब मिट्टी में ही रहते हैं।
0: अच्छा।
1: लता वाली फसल रहती है तो ज़मीन पर फैलती है तो ज़मीन पर धूप तो डायरेक्ट पहुँच नहीं पाता है और ज़मीन के नीचे नमी बनी रहती है तो वहीं पर वो सर्वाइव करते हैं वहीं पर जिंदा रहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर जो किसान भाई हैं हमारे जानकारी के अभाव में वो लता वाली सब्जी को ऐसे ही बिना मल्चिंग का लगा देते हैं डायरेक्ट जमीन पर तो पौधे जो होते हैं फल होते हैं।

0: हैं वो जमीन के टच में आते हैं, जब सिंचाई करते हैं तो सिंचाई का पानी के माध्यम से वो जो जमीन के जीवाणु होते हैं, फफूंद होते हैं, वो पौधे के पत्ती से फल से संपर्क में आ जाते हैं, जिसके कारण से मिट्टी से जो मिट्टी जनित बीमारी होती है वो पौधों और फलों पर चली जाती है, जिसके कारण से ये पाउडी मिल्डी हुआ, उसके बाद फल सड़न रोग हो गया, ये डैम्पिंग ऑफ हो गया, जो नर्सरी पौधे छोटे मर जाते हैं, एंथ्राक्नोज हुआ, तो ये सब बीमारी फैलती हैं।
1: अच्छा,
0: तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि गर्मी की जो सब्जी लगाएं तो उसमें मल्चिंग जरूर करें, हम जमीन से डायरेक्ट टच में नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: और बराबर क्या करें फिर?
0: तो उसके लिए घास फूस का अपना नीचे बिछा करके और उसके ऊपर पौधे को ये करें, नहीं तो स्टेकिंग करें, डंडा या बांस का कुछ डंडा लगा करके उसको खड़ा रखें, तो उसमें क्या होता, बीमारी कीड़े कम आते हैं,
1: जो बेल वाले सब,
0: हाँ, और पौधा सीधा रहता है तो पूरे पौधे को धूप हवा पानी बराबर मिलते रहता है, जिसके कारण से कीड़े मकोड़े और जो फफूंद होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो पनप नहीं पाते हैं, उनको जगह नहीं मिलता, आश्रय नहीं मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लाइन से लगाना चाहिए और दूसरा चीज मल्चिंग का और स्टेकिंग का व्यवस्था रखना चाहिए।
1: अच्छा,
0: हाँ, और सिंचाई जो और जो पौधे लगाएं वो नाली में लगाएं, मेड़ पे बीच में नाली रखें, तो और सिंचाई जो करें वो नाली में करें।
1: ऊपर से क्या होगी?
0: तो उससे क्या होगा कि पानी का संपर्क जो होगा डायरेक्ट जड़ तक नहीं रहेगा।
1: अच्छा,
0: जड़ के आसपास में ज्यादा नमी नहीं रहेगी और नाली से पानी अपना धीरे धीरे नमी खींचते रहेगा, तो ज्यादा नमी भी नहीं रहेगी और जो फफूंद रहेंगे चाहे बैक्टीरिया जो रहेगा वो नाली के पानी में ही रह जाएगा और पौधे के संपर्क में नहीं आएगा, तो इससे पानी भी कम लगेगा और जो बीमारी है वो वहाँ पौधे तक के संपर्क में नहीं आ पाएगी, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और लाइन से जब हम लगाएंगे तो उसमें क्या है कि स्पेसिंग जो रहता है पौधे से पौधे की दूरी वो मेंटेन रहती है, हर पौधे को बराबर मात्रा में पानी, भोजन, हवा, धूप मिलते रहता है, तो उसका ग्रोथ अच्छा रहता है, उसका रेजिस्टेंस पावर मेंटेन रहता है, जिसके कारण से कीड़े बीमारी भी कम लगते हैं। और कीड़े की बात हुई तो कीड़े में ज़्यादातर जो सफ़ेद मक्खी हुआ, उसके बाद ये फल छेदक हुआ और थ्रिप्स हुआ, माइट हुआ, तो ये सब ज़्यादा लगते हैं। और जितने भी प्रकार की सब्जियां होती हैं सब में लगभग एक ही प्रकार के कीट लगते हैं, तो कोई भी सब्जी रहेगी तो उसमें सभी प्रकार के कीट का प्रकोप रहता है। और गर्मी के सीजन में जो कीड़े होते हैं उनका जो जनसंख्या वृद्धि होता है वो थोड़ा तेज होता
1: है,
0: हाँ, तो वो सब ज़्यादा पनपते हैं। तो लेकिन जो हम बताएं कि लाइन से लगाएं, मेड़ पर लगाएं और स्टेकिंग या मल्चिंग के द्वारा लगाएं, तो उसमें क्या होगा, इस एक ही विधि से सभी समस्या का समाधान हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कुछ अलग अलग तरीके से नहीं करना पड़ेगा। और बीच बीच में जैसी बीमारी लगती है, और दूसरा चीज़ ये करें कि हम जो बीज उपचार पौधे लगाते हैं तो उसका बीज उपचार करके लगाएं।
1: अच्छा,
0: और नर्सरी लगाते हैं तो नर्सरी को भी हम बीज को उपचारित करके लगाएं, क्योंकि बीमारी जो आती है ज़्यादातर बीज और मिट्टी से ही आती है, तो हम बीज उपचारित करके लगाएंगे तो बीमारी का रोग वहीं पर हो जाएगा। और बीमारी आने का जो समय होता है वो नर्सरी अवस्था छोटे अवस्था में ही होता है, तो छोटे अवस्था में अगर हम पौधे को बचा लेते हैं तो जितनी भी खतरनाक बीमारी होती है सबको हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पौधा बड़ा हो जाएगा, उसमें बीमारी से लड़ने की क्षमता हो जाएगी, तो बीमारी का ज्यादा प्रकोप नहीं होगा। उसी तरीके से कीड़े का भी हमको करना चाहिए।
1: अच्छा,
0: जैसे हम बीमारी के लिए फफूंदनाशक का उपयोग करते हैं, उसी तरीके से हम कीटनाशक का भी फफूंदनाशक के साथ मिला करके उसको बीज को उपचारित कर लें और उसको फिर लगाएं। तो फफूंदनाशक में बीज उपचारित करने के लिए जो दवा आती है वो कार्बिंडाजिम आता है, कैप्टन आता है, प्रोपिकोनाजोल आता है, विटावैक्स आता है, प्लांटावैक्स आता है, जो भी जितने प्रकार की मतलब फफूंदनाशक हैं जो बीज उपचारित करने के प्रयोग होती हैं उसका उपयोग करके हमको बीज उपचारित करना चाहिए। और कीटनाशक के लिए हमको सिस्टमिक अंतर्वाहित कीटनाशक का उपयोग करके उसको बीज उपचार कर लेना चाहिए और हमको फिर लगाना चाहिए। और नर्सरी में जितना दिन तक हम पौधे को रखें तो हम उसमें बीच बीच में जो सिंचाई करते हैं तो वो फफूंदनाशक दवा का घोल बना करके उसी से हम उसको स्प्रे करें बढ़िया से। रोपाई से पहले हम उसको बढ़िया से उसको कीटनाशक और फफूंद नाशक दोनों दवा को मिला करके और हम इस पे करके और उसके बाद हम एक दो दिन बाद पौधे का रोपाई करें, तो हमारा पूरा उपचार जो टीकाकरण होता है वो

0: छोटे अवस्था में हम नर्सरी में अच्छे से करके लगाएंगे तो मेन फील्ड में रोपाई करने के बाद हमारे पास बीमारी और कीड़े की समस्या का कम रहेगा और कम खर्चे में हम अधिक लाभ ले सकते हैं।
1: बहुत अच्छा जानकारी देती है। बीज उपचार कर बात करें और जिसे फसल में कीड़वा लग जाते या रोग लग जाते ओकर में उपचार कर बात करें, ये जो हमन कीटनाशक दवाई बनकर छिड़काव करती या जो उपचार के समय जो भी दवाई उपयोग करती, कहीं एकर में सावधानी रखना चाहिए का?
0: सावधानी रखना चाहिए हर चीज में, क्योंकि किसान भाई क्या होते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं जो उनको पता नहीं चलता है और वही छोटी गलती का कारण क्या होता है कि रिजल्ट नहीं मिलता है, तो उसके कारण से वो ज्यादा दवा मात्रा का प्रयोग करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर सावधानी से करें तो कम मात्रा में एक ही बार में अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अगर गलती हो गई, वो छोटी सी गलती, तो वो दवा का रिजल्ट नहीं निकलेगा तो उसमें क्या करें, फिर दूसरी दवा डालेंगे, दूसरी नहीं काम करेगी तो फिर तीसरी डालेंगे, तो बार बार दवा छिड़कने से क्या होगा, पोल्यूशन बढ़ता है, हवा पोल्यूशन, जल का पोल्यूशन बढ़ता है, खर्चे बढ़ते हैं, फिर परिश्रम बढ़ता है, तो इससे सबकी हानि होती है।
1: सही तरीका
0: सही तरीका यह है कि हमको समय से पहले हमको, जैसे हम बोले बीज उपचार कर लेना चाहिए, तो बीज उपचार हम कर लेंगे तो कम से कम पौधे को 1 से 1.5 महीने तक किसी बीमारी के लिए दवा का डालना जरूरी नहीं होगा।
1: अच्छा।
0: तो बीज उपचार में हमको 1 किलो में कम से कम 2 ग्राम दवाई लगेगा। अगर वही हम रोपाई करने के बाद डालेंगे तो 1 टंकी में कम से कम 30 ग्राम दवा डालेंगे, वो भी जितना अच्छे तरीके से हम नर्सरी को पौधे को हम नहीं उपचार कर सकते हैं, उतना अच्छा से हम फील्ड में रोपाई करने के बाद हम नहीं कर पाएंगे। समय ज्यादा लगेगा, दवा ज्यादा लगेगा, परिश्रम ज्यादा लगेगा, और वहाँ हम एक बार डाल देंगे तो हम 2-3 बार के लिए काम करेगा, यहाँ बार बार डालना पड़ेगा, तो हमको दवा को समय से पहले हमको डाल देना चाहिए। मेन बीमारी आने का जो समय होता है, कीड़े लगने का जो समय होता है, एक नर्सरी अवस्था होता है और दूसरा जो होता है फल फूल अवस्था होता है। तो जब भी नर्सरी अवस्था है तो नर्सरी में हम उपचार कर लें, बीज उपचार से लेकर के नर्सरी को रोपाई करने से पहले तक। दूसरा, जब फल फूल आने का समय होता है उस समय हम बीमारी दिखे या ना दिखे या कीड़े दिखे या ना दिखे, हमको हल्की दवा कोई फफूंदनाशक और एक कीटनाशक को लेकर के हमको स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि उस समय भी जब फल फूल लगते हैं तो जो फल छेदक कीड़ा होता है या फल में लगने वाली जो बीमारी होती है, जब फूल से फल बनता है उसी समय वो उनका प्रकोप बढ़ता है, उसी समय उसमें एंट्री होती है, प्रवेश करते हैं, तो हम फल फूल आने के समय अगर हम दवाई का डाल दें, कम मात्रा में डालेंगे, हल्का सा डालेंगे, तो वो अच्छा से काम करें। जब फल बड़ा हो जाएगा तो उसमें फिर कोई कीड़ा और कोई फफूंद उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है, जो भी प्रवेश करता है जब फूल से फल बनने वाला अवस्था होता है, तो उसी समय हमको दवाई डाल देना चाहिए।
1: कई बार किसान भाई मन जब फल तोड़ाई करते हैं उसमें भी दवाई का छिड़काव कर देते हैं, तो दवाई का छिड़काव करने के कितना समय बाद फल का तोड़ाई करना चाहिए?
0: दवाई छिड़काव करने के कम से कम 5 से 7 दिन बाद तोड़ाई करना चाहिए, लेकिन सब्जी में क्या होता है कि गर्मी के सीजन में क्या होता है कि दवा का जो लाइफ होता है स्प्रे करने का वो बहुत कम होता है, उसमें भी टाइमिंग का बहुत मायने रखता है। हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि जब भी मन किया उठाए स्प्रेयर और स्प्रे कर देते हैं, तो दवा को हमेशा शाम के टाइम में डालना चाहिए। शाम में क्या होता है कि ठंडा मौसम रहता है, रात पूरा ठंडी मिल जाती है, तो शाम को हम डालेंगे तो जितने कीड़े मकोड़े होते हैं और फफूंद जो होते हैं वो ठंडी अवस्था में एक्टिव होते हैं, वो पौधे के ऊपर आते हैं, तो अगर हम शाम को डालेंगे तो उनका आने का टाइम ही रहेगा, तो डायरेक्ट टच में आएंगे, दवा का संपर्क में आएंगे, तुरंत वहीं पे कंट्रोल हो जाएगा, मार देंगे। उसके बाद दवा को काम करने के लिए पूरा रात भर टाइम मिल जाता है ठंडा मौसम, और फिर सुबह में भी 2-4 घंटे जब तक तेज धूप नहीं निकलती है तो कम से कम 15-16 घंटे का टाइमिंग मिल जाता है पौधे को ठंडा मौसम, तो उसमें अच्छा काम करता है। दिन में दवा नहीं डालना चाहिए, सुबह में नहीं डालना है, सुबह में डालेंगे दोपहर टेम्परेचर बढ़ेगा धीरे धीरे दिन में, तो दवा का इफेक्ट बहुत तेजी से खत्म हो जाता है तेज टेम्परेचर तापमान के कारण।
1: तो मतलब फल तोड़ाई के एकाध हफ्ता बाद ही वाला मंडी में ले जाना चाहिए। सुघर राउल से बातचीत हुई नहीं
0: जी,
1: और इतना बढ़िया जानकारी दें राउला, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ, तो भैया हम सुनत रहे अभी डॉक्टर एन के मिश्रा किस्नु भैया जगगोट हुई कैसे कैसे सब्जी मन कटती है।

करना है बात बतात रही हैं। अब देखिए मंडी भाव मौसम कर जानकारी कर कती चला था। आज कर मंडी कर भाव देख अब तो कोदो है 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, तिल है 6,000 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं है 2,428 रुपये प्रति क्विंटल। तापमान कर गोट कर अब तो आज कर जो अधिकतम तापमान है 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। कालीकर जो तापमान है, अनुमानित तापमान है अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहकर संभावना है। अब देखिए आज कर सवाल ले हूँ ओकर पाछू बीतीस बुध ते दिन कर सवाल ले आता हूँ। पाछू बीतीस बुध ते दिन हमन सवाल ले रहे कि कद्दू खीरा तरबूज में लगे वाला कद्दू बीटल का नियंत्रण कैसे करना है। जवाब है ये पत्ती लखात है अतः नियंत्रण खातिर ये पत्ती खाता है अतः नियंत्रण के लिए नीम का तेल 3 मिलीलीटर पानी में छिड़काव करना आवश्यक है। देखिए अब जो हमारा सवाल है आज हमार शंकर नेपियर घासकर गोट करे रहन तो शंकर नेपियर घासकर प्रमुख किस्म ला बताई। जवाब हमला चिट्ठी पत्री कर माध्यम से और चाहे तो मेल कर द्वारा भी भेज सकते हैं, जवाब ला शामिल कर बो। अब देखिए बेरा होगी सह कहते हैं तो भाई हमन जाति जवाति यही कहना है कि देखिए आज जो मधुमक्खी विश्व मधुमक्खी दिवस हमन मनाते ही तो किसान भैया बहनी मन ले यही अनुरोध जो हमारे पशुपालक किसान मन है, जो खेती वाती करवैया किसान मन है, मधुमक्खी पालन करके बहुत बगरा योजना चलता है सरकार कर को लाभ ले सकते हैं और प्राकृतिक कर जो जो चक्र बनी से पर्यावरण कर ओकर में संतुलित करे बर ओकर हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आज कर चौपाल में अतरे तीजई लभी दई स्वच्छ रहा स्वस्थ रहा फिर भेटब राम राम।

अभी आप सुन रहे थे हमारे किसान श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 8 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सोशल मीडिया की गूंज, इंस्टा फरमाइश।

सुरमई शाम की ढलती हुई रोशनी और रात की इस मखमली शुरुआत में मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो साथी रितिका और अपने साथ मैं लेकर आई हूं आप ही की फरमाइशों से सजा एकदम नया और अनोखा संगीत का सफर, जहां आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टा पेज पर इंस्टा फरमाइश के पोस्टर्स पर आपने अपनी फरमाइश लिखी थी। तो अब आप बस अपना दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब वक्त हो चुका है आपके नाम के साथ आपकी फरमाइशों को पूरा करने का, जिसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि पूरा अंबिकापुर सुनेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये सफर। सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में अभी आप सुन रहे थे हम आपके दिल में रहते हैं फिल्म का गीत, आवाज थी उदित नारायण एवं अलका याग्निक की, संगीत निर्देशन था अनु मलिक का और गीतकार थे समीर। इस गीत को सुनने के लिए हमें रिक्वेस्ट किया है बुरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह, सुखराम पैकरा, हीरामणि पैकरा, ऐश्वर्या पैकरा, देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यशी, हनी, पूजा, सीता एवं परिवार के सभी सदस्य, जोड़ा पीपल अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से स्वरूप आनंद एवं सरजा, ग्राम कुंजनगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेमलता देवांगन, अमिर तांजे, महिमा देवांगन एवं श्रेया देवांगन, गांव कबनूर कोल्हापुर महाराष्ट्र से रेवर भामबिस्टे, अनीता, राहुल एवं रविकांत, ग्राम पोस्ट केतका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से संजय सिंधराम, टेकराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह, अरविंद सिंह टेकाम, डिंपल सिंह टेकाम एवं सिंधराम एवं परिवार के सभी सदस्य, पुराना तालाब डुमराव से वली उल्ला अंसारी, अस्मा नाज अंसारी, जेल रोड बक्सर से शरीफुद्दीन अंसारी एवं मोहम्मद सुल्तान अंसारी, ग्राम कोटिया प्रतापपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से बिगन राम रजक, सीमा रजक, एन वी, आशमी एवं आरनाव, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू, उमा राज, दिव्या भारती एवं बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत 100 डेज फिल्म से, आवाज है एसपी बाला सुब्रमण्यम एवं लता मंगेशकर की, संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का और गीतकार हैं दिलीप ताहिर।

100 डेज फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता ग्राम कसकेला पोस्ट सलका जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से शेष कुमार सिंह, देवेंद्र राजवाड़े एवं सेजल सिंह, डतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा एवं रुद्र वर्मा, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर, आदेश कुमार काले एवं वसुधा वज्रसेन, मां मतीन क्लब पचरापोड़ी ऊपर रोड जिला कोरबा से ओम प्रकाश यादव, संतोष तारा, सरोज संध्या साक्षी एवं गया प्रसाद यादव, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान, अरार नानघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल एवं गोपी वर्मा, चनौर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता, राम, श्याम, रवि, आर्यन, रंजीत एवं रामानंद कुशवाहा एवं परिवार के सभी सदस्य, ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी एवं हसन सिक्का, भाटापारा से रोहित एवं जयलक्ष्मी, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेल साय मरकाम, नयन प्रकाश, शारदा, लक्की, सीताराम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, पांडे राम, हीरालाल प्रजापति, नूर साय राजवाड़े, कविता मरकाम एवं आरती मरकाम। चलिए अपने इंस्टा इनबॉक्स से निकालते हैं एक और खूबसूरत सी फरमाइश। सुनते हैं तेजाब फिल्म का ये गीत। आवाज है अमित कुमार एवं अनुराधा पौडवाल की, संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीतकार हैं जावेद अख्तर।

तेजा फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में। इस खूबसूरत से गीत की फरमाइश की थी हमारे श्रोता ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता प्रजापति, घनश्याम राम हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापुर से रामचंद्र गुप्ता एवं पांडे राम राजवाड़े, सुपरस्टार रेडियो श्रोता संघ सारस्ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़े, सुमार साय, मेर साय, भगत हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा, ग्राम सिद्धमा बाजार पारा जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोसे पैकरा, नरेश सिंह एवं परिवार के सभी सदस्य, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविन्द्र सिंह छाबड़ा, इंदरजीत कौर छाबड़ा एवं स्वीटी छाबड़ा, सत्यम क्लब फूलकोना प्रेमनगर से अरविंद कुमार यादव, रुस्तम हिमांशु, अनुष्का मनोज यादव, फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चुरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति एवं शिवांश वर्मा, दयानंद कॉलेज भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, रितिका वानी, आरव चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता आरोही एवं प्रियांशी सोनी, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह एवं अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल एवं बिट्टा बजाज, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना एवं राजेंद्र सिंह। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में लीजिए सुनिए अगला गीत दिलवाले फिल्म से। आवाज है अरिजीत सिंह एवं अंतरा मित्रा की, संगीत निर्देशन है प्रीतम का और गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य।

दिलवाले फिल्म का ये अभी गीत आप सुन रहे थे। कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश पर इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है हमारे श्रोता ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकीब अलमास बानू, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराडे, वनीता गंगराडे एवं मोहम्मद हसनैन पवार, सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया, पैराडाइज कॉलोनी से शाहिद असीफा, परवीन, अल्फिया सद्दाफ, सुफियान एवं फतिमा, बतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि एवं नोखेलाल वर्मा, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता कीर्ति एवं भूमिका अरोड़ा, परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रितेश संघई एवं परिवार के सभी सदस्य, बीर सिंह पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश, संतोष कुमार मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव, बेला सिंह, विकास सिंह एवं ओम प्रकाश सिंह, ग्राम चरौदाबार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका ठाकुर, दीपक, खुशबू एवं ज्योति ठाकुर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म से, आवाज लता मंगेशकर एवं अदनान सामी की, संगीत निर्देशन है अदनान सामी का और गीतकार हैं समीर।

0: कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश की अंतिम प्रस्तुति के रूप में अभी आप सुन रहे थे लकी नो टाइम फॉर लव फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता ग्राम टोरोवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी, प्रियंका प्रशांत, प्रियम थांदी एवं वामिका वाणी थांदी। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत एवं गुरशब्द सिंह। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू, बिट्टू, अर्चना, मुन्नी, चांदनी एवं नंदनी। मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। चूड़ीलाइन मुंगेली छत्तीसगढ़ से मोहम्मद इसहाक, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ एवं निलोफर फातिमा। इसी के साथ कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ते प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में अगले 2 से 3 दिन में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
2: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है।

0: इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं।
0: दोनों देशों के स्टार्टअप्स, रिसर्च सेंटर्स और उद्योगों को आपस में जोड़ने के लिए हम इंडिया इटली इनोवेशन सेंटर पर काम कर रहे हैं। हमारी सेनाओं के साथ साथ दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के बीच भी सहयोग बढ़ रहा है। मैरिटाइम पावर्स के रूप में भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग स्वाभाविक है। हम मिलकर शिपिंग, पोर्ट्स मॉडर्नाइजेशन, लॉजिस्टिक और ब्लू इकोनॉमी पर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
0: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
1: सुश्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया।
0: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। श्री सिंह ने रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: 12 वर्षों के अंदर ही हम 40,000 करोड़ से ज्यादा का इस समय हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो 2 साल के अंदर 50,000 करोड़ के एक्सपोर्ट, डिफेंस आइटम्स के एक्सपोर्ट की जानकारी आपको मिल जाएगी। और हमारी गवर्नमेंट के रहते डिफेंस सेक्टर में एक मेजर चेंज आया है। भारत की पॉलिसी आज रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। और मेरा भी यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के किसी कीमत पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। और इसी सोच के साथ भारत इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को तेजी के साथ बढ़ावा दे रहा है।
1: रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने

0: की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा, वहां से उन्हें देश से निकालने के लिए बीडीआर के साथ इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने इसे नए तरीके को पहचानो, हटाओ और देश से निकालो बताया। गुजरात सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बनी संयुक्त संसदीय समिति ने आज गुजरात के गांधीनगर में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि विधेयक को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए।
1: हमने आज जेपीसी को गुजरात सरकार की ओर से खास तौर पे ये नम्र निवेदन किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्द से पास हो, सभी राज्य के नागरिकों को एक समान हित मिले, सभी लोगों के काम जल्द हो पाए, मशीनरी सरकारी जो है उसका कम से कम समय बिगड़े, वही हित में आज हमने वन नेशन वन इलेक्शन को हमने हमारा सहयोग दिया है और हमने ये खास तौर पे विनती की है इसको जल्द से जल्द लागू किया जाए।
0: इस बीच कांग्रेस सहित अन्य राजनीतिक दलों ने एक राष्ट्र एक चुनाव का विरोध किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन के लिए कड़ी निगरानी और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री प्रधान ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सुरक्षा खुफिया एजेंसियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये बात कही। इस दौरान गुमनाम ऑनलाइन समूहों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित गलत सूचनाओं के बढ़ते प्रसार पर चिंता व्यक्त की गई। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 5 आरोपियों को 2 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अदालत ने एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत भी बढ़ा दी है। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने जम्मू कश्मीर में एक सशक्त नवाचार इकोसिस्टम के निर्माण के लिए 500 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। नई लैब अटल नवाचार मिशन के व्यापक सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। ईरान संघर्ष के कारण वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष भारत की विकास दर 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। इससे भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अर्थशास्त्री इंगो पिटले ने कहा कि भारत की मजबूत उपभोक्ता मांग, सार्वजनिक निवेश और सेवा निर्यात में वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था को सहारा दे रही है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 118 अंक बढ़कर 75,318 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 41 अंक की बढ़त के साथ 23,659 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 के मुकाबले 30 पैसे कमजोर होकर अपने सबसे निचले स्तर यानी ₹96.83 पर बंद हुआ।
1: और अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी कल तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कल राजधानी में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग के अनुसार कल दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पिछले 24 घंटों में राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 44.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि कल दिन के समय राष्ट्रीय राजधानी में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना है। सौम्य के साथ शिवांग।

0: मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: इस बीच विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरी कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भारी वर्षा का पूर्वानुमान लगाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनगणना 2027 के अंतर्गत जाति गणना कराने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा है कि ये मुद्दा सरकार के नीतिगत अधिकार क्षेत्र में आता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि पिछड़े वर्गों के लिए कल्याणकारी उपाय तैयार करने के लिए सरकार को उनकी संख्या जानना जरूरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि ये राष्ट्र को एकजुट करने का सशक्त माध्यम है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से हो रहा है। फिलहाल बारिश के कारण मैच रुका हुआ है। मैच रुकने तक मुंबई इंडियंस ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 57 रन बना लिए थे। उधर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन सुपर 500 में आज अश्मिता चलिहा, देविका सिहाग और मालविका बंसोड महिला सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। संस्कृति मंत्रालय ने वंदे मातरम फ्रेम्स राष्ट्रीय फिल्म निर्माण प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां जमा करने की अंतिम तिथि 7 मई से बढ़ाकर 31 मई कर दी है। प्रतियोगिता 3 श्रेणियों में आयोजित की जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और इटली अपने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमत। दोनों पक्षों ने महत्वपूर्ण खनिजों, रक्षा, कृषि सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 15 समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल दिया गया। उन्होंने ये पुरस्कार भारत के किसानों को समर्पित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को तत्काल वापस भेजने की कार्यवाही शुरू करने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत इस वर्ष 6.4% की वृद्धि के साथ विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वीसी प्रमोद विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। India and Italy agree to elevate ties to special strategic partnership. Both sides ink 15 agreements to boost bilateral cooperation in key areas including critical minerals, defense and agriculture. Prime Minister Narendra Modi receives FAO's highest honor, Agricola Medal, dedicates award to farmers of India. West Bengal government announces immediate start of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under Citizenship Amendment Act. India to remain world's first growing major economy with 6.4% growth this year despite West Asia conflict, says UN report. IMD issues red alert for severe heatwave conditions over Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Vidarbh for the next 2 to 3 days. And in IPL cricket, match between hosts Kolkata Knight Riders and Mumbai Indians underway at Eden Gardens. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said the two sides deliberated extensively on enhancing bilateral ties.
3: पिछले लगभग 3.5 वर्षों में मुझे कई बार प्राइम मिनिस्टर मेलोनी से मिलने का अवसर मिला है। यह भारत और इटली के बीच करीबी सहयोग और सामंजस्य को दर्शाता है। उनके नेतृत्व में हमारे संबंधों को नई गति, नई दिशा और नया आत्मविश्वास मिला है। मुझे खुशी है कि हम अपने संबंधों को अपग्रेड करते हुए स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा कर रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे इवनिंग न्यूज, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं रांझना फिल्म का ये गीत। आवाज है जावेद अली, कृति सगथिया एवं पूजा की। संगीत निर्देशन है AR रहमान का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

0: छैया।
1: आकाशवाणी के 90 वर्षों के गौरवशाली प्रसारण के जश्न में शामिल होने आइए 23 मई को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट पर। आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब मिलकर करेंगे वॉक।

0: चलिए बनाए एक मिसाल अपनी प्यारी संबंधों की। शामिल होइए आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ 23 मई 2026 को।
1: चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में।
0: आकाशवाणी अंबिकापुर के सदस्य और आप सब करेंगे वॉक और साथ चलते चलते ढेर सारी बातें भी 23 मई 2026 को सुबह 6 बजे आकाशवाणी अंबिकापुर के मेन गेट से शुरू करेंगे हम सब मिलकर वॉकथन। हमें रहेगा आपका इंतजार, आइएगा जरूर।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में लीजिए सुनिए अगला गीत दुश्मन फिल्म से। आवाज है कुमार सानू एवं लता मंगेशकर की। संगीत निर्देशन है उत्तम सिंह का और गीतकार हैं आनंद बख्शी।

0: फैल सकेगा आपका काम और होगा आपका नाम ही नाम।
1: दशकों से घर घर में गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
0: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
1: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
0: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07774230600।
2: कार्यक्रम चित्रपट संगीत की आज की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं राज 3 फिल्म का ये गीत।

0: राज थ्री फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इसी के साथ कार्यक्रम चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। रात्रि के 9:30 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा।
1: चर्चा का विषय है

0: बीते कुछ वर्षों में दुनिया ने एक बदलाव महसूस किया है, एक ऐसा बदलाव जहां भारत अब सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर एक निर्णायक आवाज बनकर उभरा है। कूटनीति के नए आयाम, विश्व मंच पर बढ़ती भागीदारी और हर बड़े वैश्विक मुद्दे पर भारत की स्पष्ट और सशक्त उपस्थिति, इन सब ने मिलकर रचा है एक नए भारत का आत्मविश्वास। और इसी बदलती तस्वीर का एक महत्वपूर्ण पहलू है दुनिया भर से मिल रहे वो सम्मान जो भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा की गवाही देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले ये वैश्विक अलंकरण सिर्फ एक नेता की उपलब्धि नहीं बल्कि भारत की साख, सामर्थ्य और विश्वसनीयता का प्रतीक हैं। स्वीडन और नॉर्वे से लेकर दुनिया के कई देशों तक हर सम्मान एक कहानी कहता है, भारत के बढ़ते कद की कहानी। चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है, मैं हूं आनंद श्रीवास्तव और आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैश्विक सम्मान, भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। शुरुआत करते हैं बिल्कुल हालिया और ऐतिहासिक लम्हे से। मई 2026 का महीना भारत के राजनयिक इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्डिक देशों की यात्रा पर थे, तारीख थी 17 मई 2026 और जगह थी स्वीडन का गोथेनबर्ग शहर। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च नागरिक सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से नवाजा गया। साल 1748 में स्थापित हुआ ये ऐतिहासिक सम्मान किसी विदेशी शासनाध्यक्ष को मिलना ये दर्शाता है कि आज यूरोप की नजरों में भारत का स्थान क्या है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था।
1: कुछ समय पहले मुझे स्वीडन के रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ये सिर्फ मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी

0: सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
1: कहानी यही नहीं रुकी, इसके ठीक अगले ही दिन यानी 18 मई 2026 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो का शाही महल एक और इतिहास का गवाह बना। नॉर्वे के राजा किंग हेराल्ड पंचम ने प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से विभूषित किया। दो नॉर्डिक देशों से मिले इन सम्मानों ने साबित कर दिया कि भारत और नॉर्डिक देशों के बीच की साझेदारी अब एक नई रणनीतिक ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। साल 2014 में शुरू हुआ ये कूटनीतिक सफर साल 2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल

2016 में सम्मानों की एक ऐसी श्रृंखला में बदल गया जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। साल 2016 में खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ा। सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज सैश से नवाजा। इसी साल पड़ोसी देश अफगानिस्तान ने उन्हें स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्ला खान प्रदान किया। वर्ष 2018 में भारत की पर्यावरण नीतियों को वैश्विक पहचान मिली जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र के सबसे बड़े पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ से सम्मानित किया। इसी साल फिलिस्तीन ने उन्हें ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया। दक्षिण कोरिया ने वैश्विक शांति और आर्थिक विकास के लिए सियोल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया। वर्ष 2019 तो जैसे वैश्विक पुरस्कारों का वर्ष बन गया। दुनिया के नक्शे पर भारत की दोस्ती का दायरा कितना बड़ा था ये इन पुरस्कारों की सूची देखकर समझ आता है। संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद, रूस का सबसे प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, मालदीव का ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इज्जुद्दीन और बहरीन का किंग हमद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा शामिल रहा। 2019 में ही बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया। जब साल 2020 में पूरी दुनिया सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से जूझ रही थी तब भारत की वैक्सीन मैत्री ने दुनिया का दिल जीता। इसी दौरान अमेरिका ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने बेहद प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। 2021 में हमारे पड़ोसी देश भूटान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रैगन किंग से भारत के प्रति अपनी अटूट निष्ठा व्यक्त की। साल 2023 में जब भारत G20 की मेजबानी कर रहा था और उसी वर्ष जब प्रधानमंत्री मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पैर छूकर उनका स्वागत किया और उन्हें ऑर्डर ऑफ लोगोहू से नवाजा। इसी तरह फिजी ने कमियान ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी और मिस्र ने अपना ऐतिहासिक ऑर्डर ऑफ द नाइल प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया। वर्ष 2023 में ही फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, जिसके बाद ग्रीस ने भी उन्हें ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया। साल 2024 और 25 में तो ये फहरिस्त और लंबी हो गई। नाइजीरिया का ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, गयाना का ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, डोमिनिका का सर्वोच्च सम्मान और कुवैत का ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर उन्हें प्रदान किया गया। इसके बाद साल 2025 में बारबाडोस श्रीलंका का मित्र विभूषण, मॉरिशस का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन उन्हें प्रदान किया गया। घाना ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस, नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशियंट वेलविचिया मिराबिलिस, ट्रिनिडाद और टोबैगो ने द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो और ब्राजील ने द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल अवार्ड ऑफ द सदर्न क्रॉस से भारत के बढ़ते कदमों का स्वागत किया। इसके अलावा ओमान की तरफ से फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान और इथियोपिया की तरफ से ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया भी प्रधानमंत्री मोदी को प्रदान किया गया। साल 2026 की शुरुआत में ही इसराइल ने भी उन्हें मेडल ऑफ द नेसेट से सम्मानित किया। इन 32 अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों की फहरिस्त सिर्फ कागजी आंकड़े नहीं है, ये इस बात का सीधा प्रमाण है कि आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा बल्कि दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है का संदेश दे रहा है। चाहे वो पर्यावरण संकट हो, वैश्विक शांति की बात हो या आपदा के समय मदद का हाथ बढ़ाना हो, दुनिया आज भारत के नेतृत्व की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष दर वर्ष मिले ये सम्मान असल में भारत की 140 करोड़ जनता के कड़े परिश्रम, हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारे बढ़ते आर्थिक और सामरिक सामर्थ्य का वैश्विक उत्सव है।
विदेशी कूटनीति में क्या

0: 2014 के बाद भारत ने विशेष हासिल किया है, जिसे भारत अब दुनिया के मानचित्र में अब एक मजबूत स्तंभ बन गया है। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हैं दो बेहद खास मेहमान, पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और वरिष्ठ पत्रकार मदन जेड़ा। कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत
1: जी। धन्यवाद।
2: धन्यवाद आनंद जी।
0: अशोक जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो यात्रा चल रही है, इसमें वो यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देशों की यात्रा पर हैं। नॉर्वे में हुए तीसरे इंडिया नॉर्डिक समिट में भारत और नॉर्डिक देशों के बीच ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर सहमति बनी है। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के चलते जो वैश्विक परिदृश्य है और वैश्विक परिदृश्य में भारत की जो नॉर्थवर्ड टर्न है, यानी उत्तर की ओर जो रुख है, उस लिहाज से कितना अहम मानते हैं इस यात्रा को आप?
3: हम अभी देख रहे हैं जो ये जो यात्रा है वो उनकी नॉर्डिक देशों में है, तो इसमें कहा जाए जो ये नॉर्थवर्ड हम टर्न देख रहे हैं, परंतु ये तो हम जानते ही हैं जो भारत तो एक जिसे कहा जाए वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ है। हमने वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट्स किए हैं जब भारत G20 की चेयर हमने संभाली थी 2023 में। परंतु इसको छोड़ते हुए मैं कहूंगा जो भारत की जो की कूटनीति है, अगर हम 2014 के बाद से देखें तो हमारी कूटनीति पूरे विश्व के साथ अपने संबंधों को आगे ले जाने में लगी है और हम इसमें बहुत ही तीव्र गति से काम कर रहे हैं। परंतु जहां तक ये नॉर्डिक देशों का संबंध है, आपने ठीक कहा है, इसको अभी करीब 8 साल हुए हैं। 2018 में जैसे कहा जाए पहला नॉर्डिक समिट हुआ था स्वीडन में, दूसरा डेनमार्क का हुआ 2022 में कोपेनहेगन में, और अब तीसरा पिछले साल होने वाला था परंतु पहलगाम के इंसिडेंट के होते हुए तो ये नहीं हुआ और अब हो रहा है। तो अभी जो हालात हैं पूरे विश्व में, विश्व की जो चुनौतियां हैं, जो चाहे हम जियोपॉलिटिकल स्तर पर देखें, रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पश्चिम एशिया का युद्ध चल रहा है, तो उसमें रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को आगे कैसे ले जाया जाए, और जो ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन ट्रांजिशन है, इनोवेशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, इन सभी जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, इनके साथ कैसे संबंध बनाया जाए और देशों के साथ मिलकर सहयोग किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण इशू थे और इस पर बातचीत हुई। और जो बताता है जो प्रधानमंत्री मोदी की और भारत की विश्वसनीयता कितनी बढ़ रही है पूरे विश्व में।
0: चर्चा कर रहे हैं 2014 से लेकर अब तक भारत की विदेशी कूटनीति के आइकॉनिक मोमेंट्स की, और उसमें जो सबसे बड़ा मोमेंट्स था मदन जी, वो G20 का जो हमने मेजबानी की। साल 2023 में भारत की अध्यक्षता में हुआ G20 समिट नई दिल्ली डिक्लेरेशन की वजह से दुनिया भर में सराहा गया। आपको क्या लगता है कि भारत ने जिस तरह विकसित और विकासशील देशों के बीच एक पुल का काम किया, उसने वैश्विक कूटनीति में भारत का कद किस तरह बढ़ाया?
1: अगर हम G20 की बात करें, एक तो ये बहुत बड़ा सफल आयोजन था, ये तो निश्चित रूप से था। दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें हुई कि ग्लोबल साउथ की आवाज को भारत ने मजबूती के साथ बुलंद किया, और जो अफ्रीका यूनियन है, अफ्रीकी देश हैं, उनको G20 की सदस्यता दिलाने में सफलता हासिल की। भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। दुनिया में एकमात्र देश है जो भारत ग्लोबल साउथ की आवाज को उठा रहा था। इसमें करीब 100 से भी ज्यादा देश आ जाते हैं, पूरा अफ्रीका रीजन इसमें आ जाता है, नॉर्थ अमेरिकी जो कंट्री हैं वो आ जाते हैं, इसके अलावा और भी कई छोटे छोटे कंट्री हैं जो ग्लोबल साउथ में आते हैं, जो न तो किसी समूह के हिस्से नहीं है, लेकिन उनकी आवाज कहीं नहीं सुनी जा रही थी। अगर मैं G20 के आयोजन की बात करूं, भारत की कूटनीति की बात करें, तो ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाना, तो मुझे लगता है कि भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, और इससे भारत की जो कूटनीति है उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया, और पूरी दुनिया ने स्वीकार किया कि जो भारत एक ऐसे देशों की आवाज उठा रहा है जिसकी आवाज बहुत पहले उठाए जाने की जरूरत थी। और ये पहल कायदे से देखा जाए तो जो विकसित कंट्री है उनको इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, लेकिन भारत ने, एक बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, उसने इन देशों की आवाज को उठाकर पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जो वसुधैव कुटुंबकम, और इस G20 सम्मेलन की थीम भी यही थी, तो वसुधैव कुटुंबकम का जो संदेश दिया उसको पूरी दुनिया ने स्वीकार किया और एक भारत के नेतृत्व में विश्वास जताया।
4: Dr. Nkrumah had said, and I quote, I am not African because I was born in Africa, but because Africa was born in me. In the same way, India carries Africa in its heart. India and Africa share a dream where every child gets opportunities. Where every voice is heard, where nations rise together, not apart. Let us build a partnership, not only for today, but for generations to come.
0: अशोक जी, अगर इस चर्चा

0: को आगे बढ़ाएं तो भारतीय विदेशी कूटनीति का एक और अहम पड़ाव है आपदा और संकट में कूटनीति, चाहे वो ऑपरेशन संकट मोचन हो, ऑपरेशन गंगा हो, या फिर युद्ध और संकट के क्षेत्रों से अपने नागरिकों को वापस बुलाना, उसमें भी भारत ने एक अहम भूमिका निभाई। लेकिन एक और ऑपरेशन हुआ जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, जिसमें भारत ने पूरी दुनिया को ये बताया कि अगर भारत की तरफ कोई आंखें दिखाएगा तो भारत युद्ध का जवाब और प्रबल युद्ध से देना जानता है। आतंकवाद को सिरे से ना करना और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि को भेजकर ये बताना कि भारत की मंशा क्या है, कैसे देखते हैं, क्या वो भारतीय की विदेश कूटनीति का एक मील का पत्थर था ऑपरेशन सिंदूर?
1: भारत ने पूरे विश्व को संदेश दिया, वो यही था जो हम अपनी संप्रभुता के लिए, अपने जो नागरिक हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए हम पूरी तरह से उनकी रक्षा करेंगे और जो भी हद हो वो हम वहां तक जाएंगे। और यही बात हुई जो हम युद्ध को पूरा युद्ध में नहीं वैसे परिवर्तित करना चाहते, हमें जब अपना लक्ष्य मिल जाता है तो फिर हमने युद्ध उसी समय रोक दिया। परंतु पाकिस्तान ने अपनी बेवकूफी में उन्होंने सोचा जो वो भारत को ऊपर भी कुछ ऐसा नुकसान कर सकते हैं, परंतु 10 तारीख सुबह को तो उनके केवल बहुत सारे हवाई अड्डे थे, बहुत सारे ऐसे ठिकाने थे जिनको एकदम मिट्टी में मिला दिया गया, तो पाकिस्तान को अपने घुटने पर आना पड़ा। तो हमने तो उनको ये सिद्ध करके, और फिर उसके बाद हमने जब पाकिस्तान ने याचिका की जो ये युद्ध रोक दिया जाए तो हम मान गए, क्योंकि हमने ये देखा है, भारत ने ये पूरे विश्व को बताया जो हम युद्ध शुरू कर सकते हैं अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए, और जब हमारे अपने ऑब्जेक्टिव्स लक्ष्य हम प्राप्त हो जाते हैं तो हम उसको बंद भी कर देंगे। तो हमने वहां पर से हमेशा से पाकिस्तान ये कहता रहा था जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है तो आप हमारे ऊपर हमला कन्वेंशनल वॉरफेयर से नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये बता दिया जो ये उनका जो ब्लैकमेल है ये हमारे विरुद्ध नहीं चलेगा।
0: और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा है कि बुद्ध की धरती युद्ध करना भी जानती है और ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा था।
2: आज पाकिस्तान भी भली भांति जान गया है कि भारत का हर जवाब पहले से ज्यादा तगड़ा होता है। उसे ये भी पता है कि अगर भविष्य में नौबत आई तो भारत आगे कुछ भी कर सकता है। और इसलिए मैं फिर से लोकतंत्र के इस मंदिर में दोहराना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान ने दुस्साहस की अगर कल्पना की तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।
0: अशोक जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का विचार भारत की तरफ से दिया गया, क्या आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल वार्मिंग जैसी वैश्विक समस्याओं के समाधानकर्ता के रूप में दुनिया में देखा जा रहा है?
1: 2015 में जब ये कॉप हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हुआ था पेरिस में, तो तब भारत ने और फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उस समय के, तो उन्होंने इसको लॉन्च किया था। और अब जैसे उन्होंने बताया 100 से ज्यादा देश इसमें मिल गए हैं। देखिए, आजकल एनर्जी सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे बनकर उभर गए हैं पूरे विश्व के सामने। और हम देख रहे हैं जब से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा सामने आया है तब तो ऊर्जा, एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स बहुत देशों के लिए मुश्किल हो गई है, क्योंकि वहां से 20% एनर्जी पूरे विश्व में आती है वो मिल नहीं रही है। तो इसलिए ये जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है जिसकी भारत ने शुरुआत की है और भारत ने दिल्ली के निकटतम ही यहां पर इसका हेडक्वार्टर्स भी खोला है, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहा है। उसके अलावा अगर आप देखें बायोफ्यूल्स अलायंस है, जो कि जब हम G20 की बात कर रहे थे तो G20 के साइडलाइंस पर दो बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे। एक तो था इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके अलावा एक CDRI है, दैट इज कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैसे जो विश्व में पर्यावरण का बदलाव हो रहा है उसके साथ कैसे जूझा जाए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उनको कैसे जो आपदा आती है उनसे बचाया जाए। तो भारत ने विश्व पटल पर बहुत से ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं और बहुत से वैश्विक देशों ने भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, तो इसी से भारत का कद विश्व में और भी इससे ऊंचा हुआ है।
2: दिस इज द इनॉग्रल डे ऑफ ए डिफाइनिंग ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। वी वॉन्ट टू ब्रिंग सोलर एनर्जी इन टू आवर लाइव, वी विल शेयर नॉलेज एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस, वी विल कोऑपरेट ऑन ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस

0: We will discuss regulatory issues and promote common standards. We will attract investment in the solar sector, encourage joint ventures, and develop innovative financing mechanisms. We will partner with other international initiatives on renewable energy. There is already a revolution in solar energy. Technology is evolving. Costs are coming down and grid connectivity is improving. It is making the dream of universal access to clean energy become more real.
1: मदन जी, अब बात थोड़ी वैक्सीन डिप्लोमेसी की भी कर लेते हैं। कोविड 19 और वैक्सीन मैत्री की भी चर्चा काफी रही। जब कोविड 19 महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के 100 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन पहुंचाई, वो भी दौर था जब दुनिया के कई देश अपनी वैक्सीन जमा कर रहे थे, तब भारत की इस मानवतावादी कूटनीति ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रति जो विश्वास पैदा किया, उसका लॉन्ग टर्म लाभ आप कैसे देखते हैं?
2: जब कोविड काल चल रहा था तो 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी और उस समय वैक्सीन की हमारे पास भी कमी थी। हम दूसरे कंट्री से कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव है उनसे हम वैक्सीन ले भी रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हम वैक्सीन दूसरे कंट्री को भी दे रहे थे और 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन की सप्लाई की थी और उसमें से ज्यादातर देश या तो हमारे पड़ोसी देश थे या फिर वो ग्लोबल साउथ के देश थे जिनको हमने वैक्सीन की आपूर्ति की थी। तो इस इनिशिएटिव से भारत का, जैसे मैंने माना कि एक डिप्लोमेसी है, ये भी एक डिप्लोमेसी है कि अगर आप अपने सहयोगी देशों को, अपने मित्र देशों को किसी प्रकार की मदद करते हैं तो ये भी एक डिप्लोमेसी का ही मैं इसे एक पार्ट कहूँगा। और इससे एक जो लॉन्ग टर्म में भारत पर भरोसा बढ़ा है, चाहे वो छोटा कंट्री हो, चाहे वो एक अफ्रीका का कोई देश हो, भारत पर उन लोगों का भरोसा लगातार बढ़ा है। और लॉन्ग टर्म में अगर इसकी बात करें, जब एक बार भरोसा बढ़ता है और लगातार भारत उनके किसी न किसी रूप में मदद करता है या उनकी आवाज़ को बुलंद करता है, या जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल साउथ की आवाज़ भारत ने उठाई, उसके बाद यूएन सुधारों में भारत लगातार बोल रहा है, तो इसका भी फायदा दूसरे देशों को होने वाला है। भारत को उतना फायदा नहीं होने वाला है, दूसरे देशों को ज़्यादा होगा अगर यूएन में सुधार होते हैं। ऐसे में जो भारत पर दूसरे देशों का भरोसा है वो लगातार बढ़ रहा है, और जब ये भरोसा बढ़ता है, और जैसे हम कह रहे हैं कि जो दुनिया धीरे धीरे बढ़ रही है वो मल्टीपोलर दुनिया हो रही है, बहुध्रुवीय दुनिया हो रही है, तो भारत उसमें एक मजबूत ध्रुव के रूप में उभर रहा है, एक मजबूत पक्ष के रूप में उभर रहा है।
1: अशोक जी, एक और इम्पॉर्टेंट पहलू है, काफी अहम पक्ष रहा है 2014 के बाद भारत की विदेश कूटनीति का, वो है मुक्त व्यापार समझौते। भारत ने हाल में यूएई, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन देशों के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते किए, जिसे हम सब एफटीए के नाम से जानते हैं। आपको क्या लगता है कि ये समझौते भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड हब बनाने में मददगार साबित हो रहे हैं?
3: जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने बहुत ही ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट या मुक्त व्यापार समझौते जो हैं वो किए हैं, और अपने महत्वपूर्ण जो साझेदार हैं, जो व्यापारिक साझेदार हैं जिनके साथ हमारे व्यापारिक सहयोग, आर्थिक सहयोग बड़ा अच्छा है, उनके साथ किए हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का देखा जाए तो वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा ऐसा डेस्टिनेशन है जहां हमारे एक्सपोर्ट्स जाते हैं, जहां हमारे निर्यात जाते हैं। वो तीसरे नंबर पर है जो कि सबसे बड़ा हमारा आर्थिक साझेदार है, सहयोगी है। और इसके अलावा हमने यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया है, वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवस्था है और आर्थिक सहयोग उनके साथ हमारा बहुत बड़ा है। यूरोपियन यूनियन, तो जिनके साथ 2007 में ये बातचीत शुरू हुई थी, मुझे याद है जब मैं ब्रसल्स में था तब हमने ये बातचीत शुरू की थी, नेगोशिएशन शुरू किए थे, और ये 17-18 साल के बाद हम देख रहे हैं, जो इस साल के शुरू में फरवरी में हमने देखा, 19 साल के बाद ये वाला समझौता हुआ है। और इसको वहां की जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डर लेन, उन्होंने इसको मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया था, इसका इतना व्यापक रूप है। ऐसे ही हमने एफ्टा के साथ जो चार देश हैं यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आइसलैंड और नॉर्वे तो उसके सदस्य नहीं है और ये एफ्टा के सदस्य हैं, और उसके अलावा स्विट्जरलैंड और लिख्टेनस्टाइन, उनके साथ भी बहुत महत्वपूर्ण ये एक सहयोग किया है, जिसमें $100 बिलियन भारत में वो निवेश करेंगे अगले 15 साल में, जिससे 10 लाख जॉब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। इसके अलावा हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ओमान के साथ, ये सब हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स किए हैं जो कि मेरे विचार से विन विन अग्रीमेंट्स होंगे, ये इन सभी देशों के लिए भी और भारत के लिए भी।
0: आज भारत ने अपने इतिहास का, अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। यह एक

0: ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है।
1: अशोक जी, फॉरेन डिप्लोमेसी के क्षेत्र में रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड भी काफी चर्चा में रहा। रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान कि ये युद्ध का युग नहीं है, पूरी दुनिया में ये गूंजा। बिना किसी दबाव में आए भारत का अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर टिके रहना और दोनों पक्षों से बातचीत की वकालत करना भारत की परिपक्व होती कूटनीति का कितना बड़ा प्रमाण रहा।
2: डिप्लोमेटिक पार्लेंस में कहें तो इसको हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं, जो जिससे कि हम अपने हितों की रक्षा स्वयं करेंगे और हम किसी और को दखल अंदाजी नहीं करने देंगे। जो वो हमें बताए, भारत को बताए, जो आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या ठीक है, आप इसमें क्या करिए। तो इसीलिए जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो बहुत दबाव पड़ा पहले भारत के ऊपर, जो आप तेल मत खरीदिए रूस से, परंतु भारत ने ये बता दिया, भारत करीब अपने जो जरूरतों का 80-85% तेल है वो आयात करता है, तो इसको हम जहां से भी हमारी कंपनियों को सभी ठीक दाम में तेल मिलेगा हम वहां से वो लेंगे। तो हमने अपने संबंध भी बनाए रखे और ये भी बनाए रखा, परंतु ऐसा नहीं किया जो हमने अपने संबंध और जो पश्चिमी देश हैं उनके साथ खराब कर दिए। और उन देशों को भी फिर बाद में समझ आ गया, जो अगर रूस का तेल वैश्विक बाजार में नहीं आता तो तेल के दाम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते, जो कि सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता था। तो इसीलिए भारत ने यह बता दिया है, भारत वैश्विक फायदे के लिए, ग्लोबल गुड के लिए काम करेगा सबके साथ, परंतु अपने हितों को वो सैक्रिफाइस नहीं करेगा। और हमारा जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो केवल वो ट्रांजैक्शनल नहीं है, जो केवल अपने हितों की हम रक्षा करें, हम और देशों के हितों के लिए भी हम उनके साथ बराबर परस्पर सहयोग बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे।
0: विद यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, वॉर हैज रिटर्न टू यूरोप, इट इज कॉजिंग ग्रेट पेन इन द रीजन, सिंस इट इन्वॉल्व्स मेजर पावर्स, द आउटकम्स are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter. Peaceful resolution of disputes and respect for sovereignty and territorial integrity. As I have said directly and publicly, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering.
1: अशोक जी, कार्यक्रम के अंत में एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि 2047 तक भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनने का, हमारी विदेश नीति और विदेश कूटनीति इस लक्ष्य को हासिल करने में किस तरह की भूमिका निभा रही है, कैसे देखते हैं आप?
2: भारत की जो कूटनीति है बहुत ही एक महत्वपूर्ण इसमें योगदान कर रही है, भारत को अपने लक्ष्य की तरफ पहुंचाने में, विकसित भारत 2047 तक पहुंचाने में, क्योंकि सामने हमारे चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हमको देखना है जो किन देशों के साथ हमको अपना परस्पर सहयोग बढ़ाना है, हमारे अपने संबंधों को और तेज करना है, और वही हम कर रहे हैं। चाहे पहले हमारे अमेरिका के साथ, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, परंतु अब हम देखते हैं जो अमेरिका का रवैया काफी ट्रांजैक्शनल हो गया है, परंतु फिर भी हमारे संबंध चाहे रक्षा क्षेत्र में हो, व्यापार क्षेत्र में हो, उनके साथ बड़े अच्छे रहेंगे, परंतु फिर भी हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तो हर तरीके से लेकर अपनी आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए और अपने सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, जिससे कि अपनी संप्रभुता की हम रक्षा कर सके, इस मार्ग पर अग्रसर होते हुए भारत की कूटनीति उसमें एक बहुत ही अहम योगदान करेगी।
0: एक तो हमारा लक्ष्य है 2047, हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज। आजादी के 100 साल हम ऐसे ही नहीं बिताएंगे, आजादी के 100 साल ऐसे मनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि दुनिया में विकसित भारत का झंडा फहरता होगा।
1: कभी दुनिया के मंच पर भारत को

0: सिर्फ एक बड़ा देश माना जाता था, लेकिन आज भारत एक बड़ी सोच बन चुका है। चाहे G20 की मेज हो या संकट में फंसे देशों तक मदद पहुंचाने का संकल्प, भारत ने हर बार ये साबित किया है कि नई सदी की कूटनीति केवल ताकत से नहीं, विश्वास से चलती है। आज जब दुनिया नए संतुलन की तलाश में है, तो उसकी निगाहें हिंद महासागर के उस किनारे पर टिकती हैं जहां एक लोकतंत्र 140 करोड़ सपनों के साथ विश्व मंच पर आत्मविश्वास से कह रहा है, ये नया भारत है जो मित्रता भी निभाना जानता है और नेतृत्व करना भी जानता है। इसी विश्वास, इसी बढ़ते वैश्विक सम्मान और इसी नई कूटनीतिक यात्रा के साथ मदन जी आपका और अशोक जी आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आभार।
1: बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए।
2: थैंक यू सर।
0: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चर्चा का विषय है, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जा रहा था। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10 बज रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में मैं रितिका आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करती हूं। दोस्तों, सोशल मीडिया के इस दौर में भी जब आप हमें ईमेल भेजते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे आपने अपने दिल का एक खत बड़े ही चाव से हमारे नाम लिखा हो। तो चलिए, जिस चाव से आपने हमें ईमेल भेजे हैं उन इनबॉक्स को खोलते हैं और आपका नाम पढ़ते हैं और पूरी करते हैं आपके पसंदीदा गीतों की फरमाइश। कार्यक्रम में पहला गीत शामिल किया है गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म से। आवाज है अरिजीत सिंह की, संगीत निर्देशन है संजय लीला भंसाली का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अभी आपने सुना गोलियों की रासलीला रामलीला फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया था हमारे श्रोता गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता एवं गीता, पुणे से अजय सोनवड़े, करिश्मा अविका एवं विशाखा सोनवड़े, सतरंग श्रोता परिवार कुम्भार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश एवं जीविका दले, जोड़ा पीपल अंबिकापुर से स्वरूप आनंद, सरोज, स्वप्ना, अमन एवं आयुष, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढेंगिया एवं नमन ढेंगिया, भाटापारा शिकारी केसली से रोहित जयलक्ष्मी एवं रामलाल जयलक्ष्मी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से जयमंत्री केवट, अंजलि रुद्राणी एवं कृष्णा केवट, आदर्शनगर मलौट पंजाब से मीना शर्मा, योगेश निवान, सौरभ साइना एवं मैंडी शर्मा, सावरगांव महाराष्ट्र से रघुनाथ पाटिल नारे, ग्राम धुर्राबांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन एवं युवराज साहू।

शमीमल की गूंज में आइए सुनते हैं अगला गीत, जब तक है जान फिल्म से। आवाज है श्रेया घोषाल एवं मोहित चौहान की, संगीत निर्देशन है ए आर रहमान का एवं गीतकार हैं गुलजार।

जब तक है जान फिल्म का ये गीत सुनने की फरमाइश की थी हमारे श्रोता मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे एवं आशीष मुरहेकर, नलेश्वर नगर नरेवल महाराष्ट्र से पीएस नावरकर, निर्मला एवं विशाल, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान एवं मोहम्मद इसरार, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र एवं रौनक सेन, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन एवं माहिरा नूर, सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार एवं सोनम वर्मा, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद एवं लखनलाल देवांगन, लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज एवं तिरुपति साहू, धाड़ी नांदोरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप एवं अमूल्य बाठे, रानीगांव नगरी जिला धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम एवं सेजल साहू। कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आइए सुनते हैं अगला गीत प्रेम रतन धन पायो फिल्म से। आवाज है हर्षदीप कौर एवं सबाब सबरी की। संगीत निर्देशन है हिमेश रेशमिया का और गीतकार है इरशाद कामिल।

प्रेम रतन धन पायो फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया है हमारे श्रोता ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, देवरी भाटापारा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल, रजक एवं मुरली, अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा सोमनी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतनी देवी साहू, दिवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू एवं रुद्रांश प्रताप, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, सहानुभूति चक्रधर एवं आदेश कुमार काले, गांव हीरावाली फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला, इंदु, पार्वती, हिमांशु, रसेड़ा छत्तीसगढ़ से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति एवं डिकेश साहू, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति एवं ओजस्वी यादव। कार्यक्रम में अगला गीत शामिल किया है कभी हाँ कभी ना फिल्म से। आवाज है कुमार सानू की, संगीत निर्देशन है जतिन ललित का और गीतकार हैं मजरूह।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अभी आप सुन रहे थे कभी हाँ कभी ना फिल्म का ये गीत। इस गीत को सुनने के लिए हमें मेल किया है हमारे श्रोता बीरडी मध्य प्रदेश से हुकुम कमरकर, सुनीता, हार्दिक, प्राची, तनु एवं तनु कमरकर, बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा एवं बाबा एवं बाला साहेब करवा, देरपाटन गुजरात से धीरज वी रबारी, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी एवं निमित आहूजा, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत जीत एवं पुष्पांजलि वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा एवं रिमझिम गुप्ता, ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि एवं निखिल वर्मा, पानीपत हरियाणा से अनिल कटरिया, मंजू, नरेश मल्होत्रा एवं ज्ञान भूषण शर्मा,

कार्यक्रम ईमेल की गूंज बस यहीं तक। आज रात हमसे जुड़ने के लिए अपने खूबसूरत जज्बात ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाने के लिए आप सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया। आप कार्यक्रम से मुझे यानी रितिका को दीजिए इजाजत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हो रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन।

कार्यक्रम मन भावन में मैं रितिका इस वक्त रेडियो सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं। दोस्तों, डिजिटल दुनिया के इस दौर में भी जब डाकिया बाबू के पैर हमारे दरवाजे पर पड़ते हैं और वो पीले वाले पोस्टकार्ड हमारे स्टूडियो की टेबल पर सजते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इन कागजों पर सिर्फ स्याही नहीं होती बल्कि आपके हाथों का स्पर्श, आपके दिल की धड़कनें और रेडियो के प्रति आपका ढेर सारा प्यार छुपा होता है। तो चलिए, आज की डाक खुल चुकी है, चिट्ठियां मेरे हाथ में हैं। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं इस सुरीला सफर।

कार्यक्रम मन भावन में अभी आप सुन रहे थे पाप फिल्म का गीत। आवाज थी राहत फतेह अली खां की, संगीत निर्देशन था शहजाद हसन का और गीतकार थे अमजद इस्लाम अमजद। इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश भेजी है कटघोरा चिरमिरी रोड जिला कोरबा छत्तीसगढ़ से नैनदास दीवान शीला ओम प्रकाश रूपमणि जयप्रकाश प्रीति सिद्धांत एवं परिवार के सभी सदस्य, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर सुमन रियांश गुड़िया एवं परिवार के सभी सदस्य, वसुंधरा विहार गोधनपुर से जयेश प्रसाद शुक्ल और परिवार के सभी सदस्य, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा किशोर कुमार दीपक कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य, फुटानी चौक नरहन स्टेट से फुलेश्वरी देवी उदयकांत ठाकुर अमन परासर आराध्या एवं ललन मिश्रा, मिसर मोहल्ला नारायण बाजार से बीके मिश्रा लल्लू पंडित एवं विनय सुर गनैया। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस फिल्म से। आवाज है सोनू निगम जुबेन गर्ग एवं नीरज श्रीधर की, संगीत निर्देशन है राजू सिंह का और गीतकार हैं कुमार।

राज द मिस्ट्री कंटिन्यूस फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता कासम कॉलोनी सनावद मध्य प्रदेश से यूनस खत्री, शफी, इंद्रिस, नूर मोहम्मद, कासिफ हासिम, इरफान, मीना एवं परिवार के सभी सदस्य। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबिता, निखिल, अंकित, मोनी एवं परिवार के सभी सदस्य। अंबिकापुर से राखी श्रीवास्तव, महिमा, नितिन, सोनू, वंदना एवं परिवार के सभी सदस्य। अंबिकापुर से ही राजकुमार ने भवानी, संगीता, आकाश, पप्पू, हेमलता, पूजा, सीता, प्रभा, सविता, सागर, आयुषी एवं परिवार के सभी सदस्य। कार्यक्रम मन भावन में आइए सुनते हैं अगला गीत जब वी मेट फिल्म से। आवाज है उस्ताद राशिद खां की, संगीत निर्देशन है संदेश शांडिल्य का और गीतकार हैं इरशाद कामिल।

कार्यक्रम मन भावन में अभी आप सुन रहे थे जब वी मेट का ये गीत। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है हमारे श्रोता जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से परमानंद नागदेव, मालती कुमारी, सोनाली, मयंक, अनिमेश एवं अंसल नागदेव। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, करण, गीतू, निहारिका, वंश एवं परिवार के सभी सदस्य। सलामापुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश गौड़ एवं मोहम्मद शादाब खत्री।

बेलरगांव सिहावा से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु, अंकित एवं परिवार के सभी सदस्य, बेरड़ी से हुकुम कमरकर, सुनीता, हार्दिक एवं तनु कमरकर। कार्यक्रम मन भवन में आइए सुनते हैं अगला गीत, आजा नचले फिल्म से। आवाज है राहत फतेह अली खां की, संगीत निर्देशन है सलीम सुलेमान का और गीतकार हैं पीयूष मिश्रा।

अजय नचले फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति के रूप में आइए सुनते हैं वेकअप सेठ फिल्म का ये गीत। आवाज है कविता सेठ की, संगीत निर्देशन है अमित त्रिवेदी का और गीतकार हैं जावेद अख्तर। इन दोनों ही गीतों की मिली जुली फरमाइश हमें प्राप्त हुई है। फरमाइशकर्ता के नाम है ग्राम पंजौनिया जिला जलौन से सत्येंद्र चंचौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक एवं आराध्या। नवागढ़ कटई छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांता, सीमा, शारदा एवं दामिनी वर्मा। शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी एवं लवी श्रीवास्तव। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सत्या साहू, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, धर्मेंद्र प्रजापति एवं मानस साहू। ग्राम मुथली पोस्ट थाना चांदनीपुर बिहार, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से लक्ष्मण, गोलू, दीपू, ललित, सतीश, संदीप, प्रदीप, राम सेवक, श्याम, कार्तिक, सुरेश, अरविंद, रेणु, चंदा, रीना, हिना एवं परिवार के सभी सदस्य।

कर चुमन भवन बस यहीं तक। खतों के जरिए हमसे जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद। अब मुझे यानी अपनी रेडियो साथी रितिका को दीजिए कार्यक्रम से इजाजत।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर यह आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी एवं अंग्रेजी समाचार, जिसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। भारत और इटली ने आज कृषि, दुर्लभ खनिजों, आयुर्वेद, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, समुद्री परिवहन और बंदरगाह के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने के लिए 15 महत्वपूर्ण समझौते किए। इन समझौतों पर आज रोम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने भारतीय नर्सों के इटली आने जाने को आसान बनाने के लिए भी एक समझौता किया। एक अन्य समझौता लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास पर केंद्रित है। दोनों देशों ने कर से जुड़े अपराधों, धन शोधन और आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खिलाफ तालमेल को मजबूत करने पर भी सहमति व्यक्त की है। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने घोषणा की कि भारत और इटली ने संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश भारत इटली नवाचार केंद्र स्थापित करने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दोनों देश जहाजरानी, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स और समुद्री अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में भी मिलकर काम करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए गंभीर खतरा मानते हैं।
1: भारत और इटली एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ हमारी साझा पहल ने पूरे विश्व के सामने एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूक्रेन, पश्चिम एशिया तथा अन्य तनावों को लेकर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए।
0: इटली की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच की दोस्ती सम्मान और आपसी विश्वास पर आधारित है। इसके बाद रोम में प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन का सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया। उन्होंने इस सम्मान को भारत के लाखों किसानों, पशुपालकों, मछली पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और श्रमिकों को समर्पित किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एग्रीकोला पदक से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान

0: भारत के किसानों, मछुआरों, वैज्ञानिकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े अन्य कर्मियों के योगदान की पहचान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि मोदी सरकार ने कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के एक मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र में परिवर्तन का प्रमाण बताया है। दक्षिण कोरिया में प्रवासी भारतीयों से बातचीत में रक्षा मंत्री ने कहा कि ये ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि भारत किसी भी रूप में आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रक्षा मंत्री ने सोल में भारत दक्षिण कोरिया रक्षा उद्योग व्यापार गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता भी की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की घोषणा की है। सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने के एक समारोह के दौरान नाबन्ना में उन्होंने कहा कि अब घुसपैठियों को सीधे सीमा सुरक्षा बल के हवाले कर दिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में असम में 4000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव कार्यों की समीक्षा की। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। कोलकाता ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Aparajita Nair. India and Italy today finalized 15 outcomes across diverse sectors. The agreements were signed following delegation-level talks between Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni in Rome today. The outcomes mark the elevation of bilateral relations to a special strategic partnership. Both sides also inked several memorandums of understanding to deepen cooperation in key areas including critical minerals, defense, agriculture, Ayurveda, science and technology, maritime transport and ports. India and Italy also agreed to strengthen coordination against tax crimes, money laundering and terror financing. In a press statement after the talks, Prime Minister Modi said, India-Italy Joint Strategic Action Plan 2025-2029 will provide a practical and futuristic framework for bilateral ties. He said both sides are working towards establishing an India-Italy Innovation Centre and noted that the India-Italy Defence Industrial Roadmap has opened new avenues for co-development and co-production in the defence sector. Later in the day, Prime Minister Modi was conferred the prestigious Agricola Medal by the Food and Agriculture Organisation at its headquarters in Rome. The medal was presented by FAO Director General Ki Dong-gyu. Speaking on the occasion, the Prime Minister said the award reflects India's unwavering commitment to food security, sustainable development and human welfare.
2: ये भारत के करोड़ों किसानों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों, कृषि वैज्ञानिकों और हमारे श्रमिकों का सम्मान है। यह भारत की उस अटूट प्रतिबद्धता का भी सम्मान है जिसके केंद्र में मानव कल्याण, खाद्य सुरक्षा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ स्वीकार करते हुए भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूँ।
1: Union Minister for Commerce and Industry Piyush Goyal has congratulated Prime Minister Narendra Modi for being honoured with the Food and Agriculture Organization's Agricola Medal. In a social media post, Mr. Goyal said, "This is an acknowledgement of the immense contributions of India's farmers, fisherfolk, scientists and other workers in the agriculture sector." Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has also expressed happiness over the conferment of FAO's honour to Prime Minister Modi. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced immediate initiation of deportation proceedings against illegal Bangladeshi infiltrators under the Citizenship Amendment Act or CAA. The Chief Minister made the announcement at State Secretariat, Nabanna, during a handover ceremony to the Border Security Force for border fencing. He said infiltrators identified in the state would now be directly handed over to the BSF for further action and coordination with the Border Guards, Bangladesh. Mr. Adhikari clarified that